मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 7 जून 2026। इस समय सुबह के 5:58 हो रहे हैं। अब हमारी प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: Collaborate closely to maintain security along and uniquely open border.
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।

0: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम के आरंभ में सुनिए समूह स्वर में गाया देशभक्ति गीत।

आज की वंदना अब संपन्न होती है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे खेती किसानी। विषय होगा नाडेप विधि से कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं। 6:40 पर होगा श्री रामचरित मानस गान, इसकी 14वीं कड़ी। गायक स्वर उत्तरा केलकर का और संगीत संयोजन होगा सतीश भाटिया का। 6:50 पर आप सुनेंगे चिंतन। 7:20 पर हिंदी महक में सुनिए वार्ता, बुंदेली कहावतों में लोक जीवन। वार्ताकार होंगे रविशंकर पाठक। फिल्म संगीत होगा 7:30 पर। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे धारावाहिक गीत गीता का 12वां भाग, शीर्षक होगा भक्ति योग। 42 पर आप पुनः सुनेंगे फिल्म संगीत। 9 सुनिए लोक रंग कार्यक्रम, इसमें कलाकार हैं किशोरी लाल अहिरवार। इनके साथ ढोलक पर हैं महेश कमलेश कुमार और झीका पर होंगे प्रेम कुमार सोनी। 9:30 पर सुनिए फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश, प्रस्तुति होगी रविंद्र कुमार प्रजापति की। 10:30 पर होगा पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय।

आकाशवाणी के मध्य प्रदेश से दिन में 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम। फोन करें, गीत सुने, 12 बजे आपकी फरमाइश, 12:30 पर संग्रहालय से। दिन में 1 बजे होगा महिला कार्यक्रम, महिला सभा। प्रस्तुति आकाशवाणी शिवपुरी की होगी। 1:30 पर लोक संगीत,

0: 2 बजे फिल्म संगीत, 2:30 पर आपको सुनवाएंगे बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। इसमें आप सुनेंगे उमा देवी पाराशर से काव्य पाठ और साथ ही होगी रोचक जानकारी एनिमल म्यूजियम के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शाम की सभा में 5:02 पर भोपाल से होगा युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी। 5:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। 6 बजे भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकार होंगी लता मंगेशकर। 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा लोकधारा, इसमें कलाकार हैं धन सिंह आदिवासी। 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम होगा ग्राम सभा, इसमें होगा धारावाहिक अटकन चटकन का 10वां भाग। साथ ही सुनिए बंधु सिंह लोधी से काव्य पाठ और आज की सीख में सुनिए जो सुख चाहो देह को चीजें तज दो चार, चोर चुगली जमीन और पुराई नार। रात 8 बजे भोपाल से आप सुनेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। 8:35 पर होगा फिल्म संगीत। दिल्ली से होगा 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे अखिल भारतीय रविवारीय संगीत सभा। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त होता है। मीडियम वेव और प्रसार भारती के मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। किसान भाई सुने खेती किसानी।
1: पंचो, आज हम जानकारी दे रहे हैं कि अपन नाडेप से कंपोस्ट खाद कैसे बनाएं। हम बताएं भैया कि अपन सबसे पहला तैयार करने आए हैं नाडेप टांका। इकी लाने अपन खा 12 फीट लंबो, 5 फीट चौड़ो और 3 फुट ऊंचो एक ईंटन से टांका बनाने पड़े, जो आयताकार और छेद युक्त होते भैया लगभग 180 घन मीटर आकार की जैसी संरचना अपन खा बना लेने हैं। इके बनावे के लाने अपन खा अच्छे ईंटें लेने हैं और उखा एक के बाद एक क्रम में चारों दीवारण में उनमें छेद बनाऊ भय वेदी वाले खड़ी कर देने। इके लाने लगभग अपन खा 1000 ईंटें और 2 बोरी सीमेंट लगे भैया, कछु बालू की व्यवस्था भी करनी है। अगर कहूँ अपन कम लागत में टटिया और बांस की जो टटिया होती उनसे भी अपन जो है टांका बना सकते हैं। उके चारों कोनन पे अपन खा मोटी बल्ली आकार की लकड़ी लगा के चारों कोदाई ये टटिया खड़ी कर देने। इके लाने अपन खा 15 क्विंटल घूरे को कचरा, जैसे घास फूस है, खरपतवार है, प्यार है, लिंजता है, मटर अवे आई अपन की इके लिंजता डरे, जो अपन लगभग 15 क्विंटल करीब ले लेने हैं और 15 क्विंटल अपने ते की तला की ऊपर की माटी जो कारी माटी होती बले लेने, 100 किलो गोबर और भैया पानी तो अपने ते है ही। इन चीजन खा अपने सामने रख के फिर अपन ई नाडेप टाका में भरने हैं। अब वो कैसे भरने, अपन का करने के टाके के भीतर की जो दीवारें हैं भीतर भीतर की उमे गोबर से गोबरा कर देने, मतलब उको जोन गोबर को घोल है उसे उखा पोत देने में और जोन इको फर से नीचे को भाग वो भी अपन पूरा अच्छी तरह से गीलो कर देने। अब जोन अपन ने खरपतवार घास कचरा जे सब इकट्ठे करे थे उनका अपन जो है एक 6 इंच मोटी परत जो है नाडेप टांका के भीतर सबसे नीचे बिछा देने। उके बाद का करने, फिर जोन अपना गोबर है तो गोबर को घोल बना लेने। ये गोबर को घोल कैसे बनाने कि 4 किलो गोबर और 100 लीटर पानी ये अनुपात में अपन जो है ये परत में जो अपन ने 6 इंच मोटी बिछाई उके ऊपर उखा छिड़क देने। फिर भैया अपन है इसके बाद का करने कि जब तीसरी परत बनाए तो उके ऊपर 6 इंच मोटी माटी भर देने। ठीक है, पहला अपन ने कचरा डालो, फिर गोबर, फिर 6 इंच मोटी मिट्टी, फिर घोल खा फिर से गोबर के घोल खा जो है फेरू के ऊपर डाल देने। इस प्रकार से 3 गोबर की थे और 3 मिट्टी, मिट्टी गोबर को घोल और कचरा, इस प्रकार से अपन तीन तीन कचरा और मिट्टी से ई की तह लगा के भर देने। फिर भैया अपन उखा झोपड़ी नुमा आकार दे देने टपरिया जैसो और फिर उखा माटी लेके ऊपर से छाप देने। ऊपर ऊपर छापने भैया जिसे के अपने जो छेद है जहाँ अपन बे बने रहे और छाप के उखा बंद कर दे।

0: फीट ऊंचाई तक ना भर जावे। और फिर से जैसो पहला अपन ने झोपड़ी के आकार को बना के छाप के बंद कर देने। इमें अपन का करें कि जो अपनो खाद है वो देखें कि लगभग 90 से 100 दिन में अपनी खाद तैयार हो जाए। और जब खाद जन होते भैया जब लगभग 30 से 32 क्विंटल तक अपनी तैयार हो जाते। जब 30-32 क्विंटल खाद अपनी एक एकड़ खेती के लाने पर्याप्त मानी गई है। जो भैया टांको बहुत अच्छो है, इमें नत्रजन 0.5% से लेके 1.5% तक पाओ जाते है। इमें सुपर फास्फेट भी होते भैया, जो भी 0.5% से लेके 0.9% तक इमें पाओ जाते है। पोटास 1.2% और भी जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी मात्रा भी इनमें भैया पर्याप्त रात है और वह 1.4% तक वैज्ञानिक भैया ने बताई है कि बावसुई रात है। तो अपन का इस प्रकार से नाडेप टांका तैयार करके अपनी जो है कंपोस्ट खाद जरूर बनाने हैं। भैया देखो कही भी गई कि बिना खाद की खेती चेती या न चेती, तो अपन का चेतने हैं और अपनी खाद नाडेप टांका से कंपोस्ट खाद बना के अपने खेतन में डाल के अच्छी पैदावार लेने हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती किसानी मीडियम वेव और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है उत्तरा केलकर का, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का।

श्री रामचरित मानस की रचना के क्रम में तुलसीदास ने अपने सभी गुण दोषों का वर्णन करके जो भी पूज्य तथा वंदनीय हैं, उनके सामने बार बार सिर नवाया है। ऐसा करने के बाद ही श्री राम के निर्मल चरित्र का वर्णन आरंभ किया है। भक्त कवि को विश्वास है कि जिन उदार प्रभु ने पत्थरों को जहाज की भांति तिरने वाला तथा बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना दिया, वो तुलसी जैसे अज्ञानी सेवक का मान अवश्य रखेंगे। आराध्य के प्रति उनकी आस्था की पराकाष्ठा के दर्शन उन चौपाइयों में होते हैं जहां वे कहते हैं कि प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की भूल चूक याद नहीं रहती, जबकि उनकी थोड़ी सी अच्छाई को प्रभु सौ सौ बार याद रखते हैं। बाली, सुग्रीव, विभीषण इन सब के साथ ऐसा ही तो हुआ। कहां राम के रूप में परम ब्रह्म और कहां पेड़ों की शाखाओं पर उछल कूद करने वाले बंदर। परंतु उन बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर था उत्तरा केलकर का और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं चिंतन।
1: आज जिधर देखो उधर स्वच्छता का बोलबाला है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी द्वारा 2 अक्टूबर 2015 को गांधी जयंती पर स्वच्छता अभियान पूरे देश में लागू कर दिया गया था एवं लोगों में बाहरी साफ सफाई का महत्व का भी प्रतिपादन किया। साथ ही लोगों में जागरूकता का जागरण भी हुआ। आज प्रायः रेलों, सड़कों, बस स्टैंडों पर भी स्वच्छता दिखाई देने लगी है। ग्रामीण इलाकों में भी स्वच्छता दिखाई देने लगी है। ये सामूहिक समाज के प्रयास का परिणाम देखने को मिलता है। साफ सफाई का जीवन में विशेष महत्व है। सफाई का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। चाहे सफाई मन की हो या तन की हो या समाज की हो या राष्ट्र की हो, सफाई तो सफाई है और सफाई आवश्यक है। बिना सफाई के वातावरण में दुर्गंध आने लगती है। जब हम घर की सफाई रोज करते हैं और कूड़ा कचरा आम रास्ते में डाल देते हैं तो ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है और सुबह अनपढ़ व्यक्ति रास्ते को साफ करता है। ये है आज की शिक्षा प्रणाली। वर्तमान में शिक्षा में नैतिकता का अभाव है। हम एक दूसरे की ओर देखते हैं, ना कि अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। आज चारों ओर सफाई का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। क्या आपने अपने अंतःकरण की सफाई की है? इसमें काम रूपी गंदगी दिन रात एकत्र हो रही है और हमें स्वार्थी बनाने का कार्य कर रही है। जब तक इच्छाओं को शांत नहीं किया जाएगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता है। क्रोध रूपी कचरे को साफ नहीं किया गया तो अपने शरीर को स्वच्छ नहीं बना सकते। जब क्रोध शांत रहता है तो शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, साथ ही शरीर क्रियाशील रहता है। अगर अभिमान रूपी कचरे को साफ नहीं किया गया तो मनुष्यता या मानवीयता प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक अभिमान को स्वाभिमान न बनाया गया तो मनुष्य का मनुष्य बनना मुश्किल है। मनुष्य दिन प्रतिदिन लोभ का आदि होता जा रहा है और धन रूपी पत्थर कंकड़ उसने जरूर इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वास्तविक जीवन का आनंद वो अभी नहीं ले पाया है। क्या लोभ ही जीवन है? लोभ जीवन के असली आनंद को छीन लेता है। माखी गुड़ में गड़ रही पख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बनाए। आज ईर्ष्या का प्रभाव चारों ओर दिखाई दे रहा है। मनुष्य अपनी श्रेष्ठ प्राणी की पहचान खोता जा रहा है, साथ ही वो स्वार्थी भी होता जा रहा है। वो परोपकार, सहृदयता, सहयोग आदि प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों का सही प्रयोग न कर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहा है। दंभ का झूठा आडंबर मनुष्य मरता जा रहा है और अपनी झूठी शान के लिए हजारों बार वो झूठा आडंबर का चोला पहनकर आम मनुष्य को गुमराह कर रहा है, जबकि वो अपने आप को ज्यादा धोखे में रखे जा रहा है और वास्तविक जीवन के आनंद को खोता जा रहा है। अहंकार में मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान खोता जा रहा है। थोड़ा प्राप्त कर लेने पर मनुष्य स्वयं को बहुत बड़ा बलशाली समझता जा रहा है। अज्ञानतावश वो अपने आप को महाभारत का श्री कृष्ण भगवान को हे समझकर स्वयं को असली कृष्ण एवं शक्तिशाली बता रहा है। आज मनुष्य की यही दशा है। अपने अंतःकरण में जमी हुई गंदगी को साफ न कर, जिसमें काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष आदि कचरे को साफ न कर बाहरी वातावरण में भी असली सफाई का आनंद महसूस नहीं कर पा रहा है। जब तक

0: मन की सफाई नहीं होगी तब तक तन की सफाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। रहीम जी ने कहा है कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, सदा मीनी जल में रहे तो भी बास न जाए, इस तरह की स्वच्छता का क्या महत्व रह जाता है। महत्व आध्यात्मिक सफाई का है। आत्मा को साफ बनाकर ही असली सफाई का आनंद ले सकते हैं। फिर सफाई तो सफाई है, अपना प्रभाव तो अवश्य दिखाएगी। इसलिए आज आवश्यकता है, सबसे पहली आवश्यकता है मन की सफाई करने की, इसके बाद परिवेश को साफ सुथरा रखने की।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। श्रोताओं, आपको बता दें 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत आप सुनेंगे वार्ता बुंदेली कहावतों में लोक जीवन। वार्ताकार होंगे रविशंकर पाठक। फिल्म संगीत का आनंद लीजिए 7:30 पर। 8:30 पर आपको सुनवाएंगे धारावाहिक गीत गीता का 12वां भाग, शीर्षक होगा भक्ति योग। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। संस्कृत में समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होंगे।

0: अदनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तुविज्ञानविभागेन अनुमितं यत् अद्य तटीय कर्णाटक माहे केरलेषु मूसलाधारवृष्टिः भविष्यति। पूर्वोत्तरराज्यानाम् अधिकतरभागेषु आभ्यन्तरीण कर्णाटके, गोवायां, तमिलनाडौ, पुदुच्चेर्याम्, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूहे च श्वः पर्यन्तं प्रबलवृष्टेः सम्भावना अस्ति। सम्प्रति क्रीडावार्तासु जापाने भारतस्य अन्तरष्टादशवयोवर्गीय पुरुषदलेन एशिया चषक हॉकी स्पर्धा मालिका जिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन जापानं 4-1 इति अंकान्तरालेन पराजितम्। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च उत्तम प्रदर्शनपरकम् एतं विजयम् अभिलक्ष्य भारतीय हॉकीदलं वर्धापितवन्तौ। गोवायां भारतेन सैफ महिला पादकन्दुकनायक स्पर्धा श्रृंखला विजिता। निर्णायके द्वन्द्वे भारतेन बांग्लादेशः 3-0 इति अंकान्तरालेन पराजितः। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् भारतेन षष्ठवारं एषा श्रृंखला जिता। अपरतः नव चण्डीगढे भारताफगानिस्तानयोः एकमात्र क्रिकेट निकषस्पर्धायाः प्रथमदिनस्य क्रीडासमाप्तिपर्यन्तं भारतेन क्रीडकत्रयस्य हानिपूर्वकं 68-300 धावनांकाः अर्जिताः। अद्य भारतं इतः अग्रे क्रीडिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 के पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
2: कोलैबोरेट क्लोजली टू मेंटेन सिक्योरिटी,
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन

0: की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:10 हुए हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधियों से प्रदेश में निवेश की अपील की। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी की। समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश तेजी से भारत के नए वैश्विक निवेश एवं निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कल इंदौर में भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 में प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में निवेश, उत्पादन और नवाचार के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि हम आपके साथ एक ठोस और दीर्घकालिक साझेदारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश देश के मध्य में होने के कारण व्यापार और व्यवसाय के लिए सबसे अनुकूल स्थान है। यहां औद्योगिक कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी होने वाला है और इस तरह के सम्मेलन प्रदेश के विकास में अहम योगदान देंगे।
2: ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके अगर वो ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं।
1: स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। सामान्य प्रशासन विभाग की तबादला नीति के बाद विभाग ने अपनी अलग स्थानांतरण पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत ऑनलाइन आवेदन होंगे। विभागीय आदेश के अनुसार प्रशासनिक स्थानांतरण प्रस्तावों का पंजीयन 8 जून से शुरू होगा। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए 8 से 15 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। जिला

0: कैडर संभाग और राज्य कैडर स्थानांतरण के लिए 8 से 17 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंकों की जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि छात्र अब रविवार आधी रात तक अपने आवेदन जमा कर सकते हैं। सीबीएसई ने कहा कि ये फैसला छात्रों के हित में लिया गया है ताकि उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। आवेदन जमा करने की पहले की अंतिम तिथि इस महीने की 6 तारीख थी। भोपाल में जनजाति संग्रहालय की स्थापना के 13वें वर्षगांठ समारोह के अवसर पर कल 5 दिवसीय महुआ महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। 10 जून तक आयोजित इस महोत्सव की शुरुआत में संस्कृति मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी ने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश की संस्कृति और उनकी कलाओं को लोकव्यापी बनाने के प्रयत्न निरंतर किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रही नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा के प्रश्नपत्र के कथित रूप से लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री से संबंधित अफवाहों का खंडन किया है। एजेंसी ने कहा कि एक छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने जोर देकर कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह से बनी हुई है। उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय किए गए हैं। एजेंसी ने कहा कि सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म और साइबर अपराध अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के लिए सूचना उपलब्ध करा रही है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है, जिसके तहत ताड़ का तेल, पामोलिन, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी तेल, सरसों का तेल, मूंगफली तेल और चावल की भूसी के तेल तथा कपास के बीज के तेल और मक्का के तेल सहित प्रमुख खाद्य तेलों के लिए मानक पैक आकार निर्धारित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलोग्राम, 15 किलोग्राम और 20 किलोग्राम रखे गए हैं। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के अध्ययन के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति की जन परामर्श बैठक आज झाबुआ में आयोजित की जाएगी। समिति की सदस्य एवं शिक्षाविद डॉक्टर शोभा पैठणकर विभिन्न वर्गों से सुझाव लेंगी। यह खुला मंच होगा जिसमें जन प्रतिनिधि, राजनीतिक दल, सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि, अधिवक्ता, पत्रकार और आम नागरिक भाग ले सकते हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से बैठक में आकर अपने सुझाव देने की अपील की है। वहीं मंदसौर में भी समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन कल किया गया। भोपाल में आज तंदुरुस्ती के लिए साइकिल चलाने का संदेश देते हुए संडे ऑन साइकिल अभियान के तहत लोगों ने साइकिल चलाई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए इस आयोजन में खेल मंत्री कैलाश विश्वास सारंग भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे देश को हिट करने के लिए लोगों का फिट रहना काफी जरूरी है, जिसके तहत इस अभियान का आयोजन प्रत्येक संडे को किया जाता है। जापान के काकामेगाहारा में भारत के अंडर 18 लड़कों की टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपूर्ति ने 3 गोल किए और कप्तान केतन कुशवाहा ने भी 1 गोल किया। इस ऐतिहासिक सफलता में मध्य प्रदेश पुरुष हॉकी अकादमी के 6 खिलाड़ियों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। वहीं शतरंज में ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद ने ओस्लो में नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रज्ञानंद ने अपने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया। ये खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय बन गए हैं। तीसरे स्थान से दिन की शुरुआत करने के बाद प्रज्ञानंद ने महत्वपूर्ण क्लासिकल जीत से 3 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों के साथ खिताब अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडर 18 एशिया कप हॉकी में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि पुरुष टीम ने चैंपियनशिप का खिताब जीता है, जबकि महिला टीम ने कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि यह परिणाम देश के युवा खिलाड़ियों के समर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। वहीं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नॉर्वे शतरंज 2026 का खिताब जीतने पर आर प्रज्ञानंद को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि

शानदार उपलब्धि उनकी निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाती है। वहीं मुख्यमंत्री ने भी सभी भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का शैक्षणिक रिकॉर्ड डिजिटल रूप से सुरक्षित और एक ही जगह पर उपलब्ध हो, इस उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में अपार आईडी निर्माण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश के सभी स्कूलों में प्रत्येक शनिवार को मेगा अपार दिवस का 30 जून तक आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में कल स्कूलों में पहले अपार दिवस का आयोजन किया गया। अपार आईडी का निर्माण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग 1,39,38,000 स्कूली विद्यार्थियों की आईडी बनाई जानी है, जिसके तहत अब तक 93,97,000 विद्यार्थियों की अपार आईडी का निर्माण हो चुका है। अब रुख करते हैं मौसम का। पूरे प्रदेश में मानसून की दस्तक से पहले ही प्री मानसून गतिविधियां जोर पकड़ चुकी हैं। पिछले 24 घंटे में 20 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जहां पर तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और सागर संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार में 2 दिवसीय गृह उद्योग व्यापार एक्सपो एवं मेले का शुभारंभ क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सावित्री ठाकुर के द्वारा किया गया। भोपाल के गोविंदपुरा इंद्रपुरी की लेबर कॉलोनी में सड़क किनारे के अतिक्रमण को हटाकर दुकानों और झुग्गियों को हटाया गया और शासकीय भूमि को मुक्त कराया गया। आईटीआई इंदौर में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। आगरमालवा में स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान के तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। डिंडौरी कलेक्टर ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग की बैठक में पशु चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय होकर कार्य करने के निर्देश दिए। और राजगढ़ में विश्व पर्यावरण दिवस पर कलेक्ट्रेट परिसर में एक पेड़ मां के नव अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता बुंदेली कहावतों में लोक जीवन। वार्ताकार हैं रविशंकर पाठक।
1: पूर्व काल में बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध न होने से अधिकांश ग्रामीण अशिक्षित हुआ करते थे। मात्र उच्च घरानों के कुछ लोग ही अपने बच्चों के लिए हिसाबी किताबी ज्ञान अर्जित करने के लिए घरेलू शिक्षा की व्यवस्था कर लेते थे, किंतु स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने गांव-गांव में शिक्षा के विकास के लिए शिक्षा केंद्रों की स्थापना की। इससे प्रदेश और जिलों में ग्रामीण स्तर तक विकास तो हुआ, परंतु हमारी युवा पीढ़ी अपने देश की मूल आचारिक वैचारिक सांस्कृतिक धार्मिक तथा वंशानुगत नैतिक विरासत से पूर्णतः विमुख हो रही है। समाज के सयाने लोगों के चिंतन में चिंता का घुन लगने लगा है। उनका कथन है कि बुंदेलखंड में जो लोक मान्यताएं लोक रीतियां लोक नीतियां लोक विश्वास लोक परंपराएं लोक गाथाएं और लोकोक्तियां अर्थात कहावतें कानोतें या कैबतें हमारे लोक मानस में पीढ़ी दर पीढ़ी लोकाचरण में मौखिक ज्ञान परंपरा के रूप में चली आई है, अब उनका क्या होगा। बुंदेली लोक जीवन में प्रचलित यही प्रवृत्तियां हमारी पीढ़ियों को लोकाचरण का संस्कार देने का काम करती थी। कौन व्यक्ति भाग्यशाली है कौन अभागा किसके लक्षण अच्छे हैं किसके बुरे कैसे आचरण हमें जीवन में उतारना है किन दुराचरणों से नई पीढ़ी को बचाना है इन सभी लोकाचरणों की शिक्षा कहावतों के माध्यम से सभी को दी जाती थी। कहावतें लोक संस्कार डालने के लिए जीवन घुट्टी का काम करती थी। पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को लोक जीवन में लोकाचरण की सही शिक्षा कहावतों के माध्यम से सहज रूप में प्रदान की जाती थी, परंतु आज नई पीढ़ी यह भूल गई है कि ज्ञान के मूल आधार तो यही बुजुर्ग विभूतियां हैं जो बातों ही बातों में जीवन के प्रत्येक पहलू के संबंध में सारगर्भित शिक्षा प्रदान करती हैं। उनसे हमने सीखा है मिलजुल कर कार्य करने से कठिन कार्य भी आसानी से पूरा हो जाता है। जैसे 7-5 की लाठी एक जने को बोझ, अवसर चूक जाने पर व्यक्ति बड़ी कठिनाई से स्थिरता को प्राप्त होता है। डार को चूको बंदरा असाड़ को चूको किसान, साल भर ठिकाने नहीं लगत। हमारी पूर्वजों ने जीविकोपार्जन हेतु कृषि कार्य को ही श्रेष्ठ माना है। इसके बाद भी जीवन निर्वाह न हो तो अन्य साधन अपनाए जाएं। इस संबंध में कहावत है उत्तम खेती मध्यम बान अधम चाकरी भीख निदान।

भ्रष्टाचार और अनीति से अर्जित धन पाप का मूल होता है। ईश्वर द्वारा पाप कर्म का दंड किसी न किसी रूप में अवश्य दिया जाता है, जिसे पापी को भोगना ही पड़ता है। जैसे कोने के खाई मजोटे हों करती, प्रायः देखा जाता है कि अनुभवहीन अल्पज्ञ लोगों द्वारा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक अनुभव रखने वाले बुजुर्गों के सिद्धांतों को सारहीन मानकर उन्हें उपदेश दिया जाने लगता है, जो उचित नहीं है। इस बारे में कहावत है, अषाढ़ को बयानो लड़िया, कात जेठ में बहुत दोंगड़े परे। कुछ लोग समाज में दो पक्षों में किसी न किसी बहाने लड़ाई कराने में ही आनंद लेते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि ऐसा करके वे मानव समाज और स्वयं के लिए कितने घातक हैं। एक कहावत है, दो कोद से दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल, अथवा भूसा में लूगर लगा जमालो दूर भई। अपने कार्य में मगन रहने वाले तथा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कर्तव्यरत उत्तम प्रकृति के लोग जीवन और कार्य में आने वाली बाधाओं से भयभीत न होकर कार्य पूरा करके ही दम लेते हैं। बैरा खोदे कांदी, बैर गिने न आंधी। मनुष्य की प्रकृति पर छिद्रान्वेषी होती है। वह स्वयं के चरित्र व स्वभाव में समाहित बड़े बड़े दोषों की ओर ध्यान नहीं देता है, किंतु पराये चरित्र की छोटी छोटी कमियों को निकालने में लगा रहता है। बाद में समाज में स्वयं घृणा व निंदा का पात्र बनता है। एक कहावत स्पष्ट करती है, कानी अपनो टेंट न देखे, पराई फूली हां पर देखे। एक दोहा है, माँ की गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लपटाए, हाथ मले अरु सिर धोने, लालच बुरी बलाए। अर्थात लालची व्यक्ति बार बार उसी वस्तु को पाने का प्रयास करता है जिसका लाभ वह एक बार ले चुका होता है, भले ही वह वस्तु उसकी मृत्यु का कारण ही क्यों ना हो। रोके जाने पर भी वह नहीं मानता। जैसे लपकी गाय गुलेंदो खाए, दौड़ दौड़ मगुआ लो जाए। बुंदेलखंड में आड़ मर्यादा आदिकाल से स्त्री पुरुषों में सामाजिक और पारिवारिक पद और स्तर के अनुरूप व्यवहार में समाहित है, जिसका पालन करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को हर पल सजग रहना आवश्यक है। किंतु बात तभी बढ़ जाती है जब समीपता या उपलब्धता अधिक हो जाती है। एक कहावत बताती है, उतई बहू को पीसनो उतई ससुर की खाट। आज भी घर परिवारों में जहां दादा दादियों को विशेष सम्मान दिया जाता है, वहां वे अपने नाती पंतियों को इन्हीं कहावतों के माध्यम से शिक्षा देते रहते हैं। जैसे सीखो बेटा आप हां, माई हां ना बाप हां। अर्थात यदि बच्चे उत्तम शिक्षा पाकर गुण ज्ञान अर्जित करें तो यह उनके जीवन के लिए लाभप्रद है। प्रत्येक बुजुर्ग छोटों के प्रति असीम स्नेह व शुभ संकल्पों का बृहद कोष संचित करके रखता है और उनकी शुभ वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, कल्याण ही करती है। जैसे दिन दूने रात चौगने, बढ़ो दूधन नहाओ पूतन फरो। किंतु जो लोग उनकी उत्तम शिक्षाओं का अनुसरण नहीं करते हैं, उन्हें जीवन भर घोर विपत्तियों को झेलना पड़ता है। एक कहावत है, जो न माने जेठन की सीख, ले खपरिया मांगे भीख। मनुष्य को जीवन में अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करके रहना पड़ता है। एक कहावत में शिक्षा दी गई है कि इस संसार में बुद्धिमान वही है जो देश काल परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करने और जीवन जीने की कला जानता है। जैसे जैसी चले बयार उसी दे तिवारो। माता पिता के गुणों चरित्र आचरण व संस्कारों का प्रभाव संतानों के व्यवहार से परखा जा सकता है। एक सुंदर कहावत है, जी के जैसे बाप मताई उसी उनके लड़का, जैसे जाके नदियां नारे उसी उनके भर का। दूसरी ओर भ्रष्ट और अमर्यादित आचरण करने वाले माता पिता का पूरा नहीं तो आधा अधूरा प्रभाव बच्चों के चरित्र पर अवश्य होता है। इस कथन को सिद्ध करती एक कहावत है, बिंदुलिया के टिकुलिया तो होते ही। प्रायः देखते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को जीवन में पग पग पर नाना विपत्तियों का सामना करना पड़ता है और असत मार्ग का अनुसरण करने वाले फलीभूत होते दिखाई देते हैं। परंतु सत्यता यह है कि सन्मार्गी का अंततः ईश्वर परम कल्याण करते हैं और कुमार्गी का सर्वस्व नाश। एक कहावत स्पष्ट करती है, सांसे हां फांके परे लावर लड्डू खाएं। पाप अथवा पुण्य से अर्जित धन से उपलब्ध भोजन का दुष्प्रभाव सद्प्रभाव क्रमशः व्यक्ति की मनोवृत्ति पर अवश्य पड़ता है, यथा जैसो खेहो अन्न उसी रहे मन। हमारे पूर्वजों ने कृषि, स्वास्थ्य, शुभ अशुभ, शकुन अपशकुन, ज्योतिष, मौसम, वर्षा, चिकित्सा तथा लोक जीवन के विभिन्न पक्षों के ज्ञान, शिक्षा व दर्शन को अपने व्यावहारिक अनुभव के रूप में बुंदेली कहावतों में इस प्रकार प्रकट किया है। जेठ के महीने में जितने दिन पुरवाई हवा चले उतने दिन सावन में धूल उड़ेगी। वर्षा ऋतु में जब मोर पंख के रंग के बादल उठें तो मूसलाधार वर्षा हो। यदि द्वितीया का चंद्रमा आर्द्रा, भद्रा, कृतिका, अश्लेषा या मघा नक्षत्र में उदय हो तो मनुष्य सुख से तृप्त

0: हो जाएंगे। स्वर विचार के अनुसार प्रस्थान के समय बायां स्वर चले तो बायां पैर तथा दायां चले तो दायां पग आगे रखना चाहिए। शुक्रवार, सोमवार और बुधवार को बायें स्वर में कार्य प्रारंभ करने से सिद्ध होता है। यात्रा हेतु दिशा व समय विधान के अनुसार पूर्व दिशा की यात्रा गोधूली में, पश्चिम की प्रातःकाल, उत्तर की दोपहर में तथा दक्षिण की रात में करने से समस्त दिशाशूल नष्ट हो जाते हैं। वर्षा ऋतु में यदि धूप तेज बढ़ जाए, चीटियां अंडे लेकर चलें, गौरैयां धूल में नहाएं, कांसी का रंग मंद पड़ जाए, सांप वृक्ष पर चढ़कर बैठे, गूंह और मोर जोर से बोले तो मानो अच्छी वर्षा होगी। अगस्त तारीख का उदय होना, कांस फूलना और भंभीर पतंगों का प्रकट होना वर्षा के अंत का संकेत देते हैं। ग्रामीण अंचलों में हमारे पूर्वजों ने अपने ठोस ज्ञान व अनुभव के आधार पर स्वास्थ्य रक्षक बुंदेली कहावतों का सृजन कर लोक जीवन को स्वस्थ रहने की विधियां बताई, किंतु आधुनिक समाज इन दुर्लभ लुप्त प्राय स्वास्थ्य परक जीवन सूत्रों को भूलता जा रहा है। जैसे भोजन करते समय आसन बैठे पालथी मार, चपड़ चपड़ बोले नहीं चबा चबा कर खाएं, नहाने व सोने के पूर्व तथा भोजन और सोने के बाद लघु शंका अवश्य करें, निन्ने पानी जे पिए हर भूंज के खाएं, दूध बियारी जे करें उन घर वैद न जाएं, कुत्ता काटे घाव पे चूना देव लगाए, पाद कसौंदी बिसहरे जर से सांप डराए, बीज खाएं ते बाव मिटे फूल रतौंदी जाए। आरोग्य की दृष्टि से महीनों के अनुसार कुछ वस्तुओं का सेवन वर्जित है। जैसे चैते गुर बैसाखे तेल, जेठे मऊआ असाढ़े बेल, सावन भाजी, भादो दही, क्वार करेला कार्तिक दही, मरहो ना तो परहो सही, कौरी पत्ती नीम की भुंसारे जो खाए, बड़े याद शक्ति तेई रकत विकार नशाए, हर बहेरो आवरो घी शक्कर सो खाए, हाथी राखे कांख में 60 कोस लो जाए, 100 दवाई एक पारेज। इनके अतिरिक्त लोक जीवन से जुड़ी शिक्षाप्रद असंख्य बुंदेली कहावतें हमारे लिए हर पल पथ प्रदर्शक, बुजुर्गों के स्मृति कोष में समाहित तथा नई पीढ़ी में लोक संस्कार डालने वाली उत्कृष्ट बुंदेली साहित्य की इस अमूल्य धरोहर को संकलित कर संरक्षित करना हमारा प्रथम कर्तव्य है, अन्यथा एक न एक दिन हम बहुत बड़ी लोक धरोहर से वंचित हो जाएंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी महक के अंतर्गत वार्ता बुंदेली कहावतों में लोक जीवन। वार्ताकार थे रविशंकर पाठक। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत।

0: लता मंगेशकर और साथियों के स्वर में अभी आप सुन रहे थे शैलेंद्र के लिखे बोल। संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था छोटी बहन।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है अंधा कानून।

0: दीदी नौकरी लग गई।
1: अरे वाह बधाई हो, तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
0: हाँ दी नया मोबाइल।
1: अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे।
2: इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है।
1: पहले बजट बनाना सीखो फिर खर्च करो।
0: पर दी
1: देखो कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम।
0: हाँ दी पार्टी मेरी बजट तुम्हारा।
1: अच्छा
3: आरबीआई कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आइए आप सुनते हैं ज्योति फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में, बोल आनंद बख्शी की है, संगीत बप्पी लहरी का।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। फिल्म का नाम है दोस्ती दुश्मनी।

संगीत में आइए अब सुनते हैं सुरेश वाडकर और सुलक्षणा पंडित की आवाज में एसएस बिहारी का लिखा गीत। संगीत है चित्रगुप्त का, फिल्म का नाम है अपना भी कोई होता।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। समाचार प्रभात कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
3: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम

0: बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
1: Collaborate closely to maintain security.
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: फुल पोटेंशियल ऑफ आवर टाइम।
0: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। जेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
0: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट। गोवा के

0: मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड छठी बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झागसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतविदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
2: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक की बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर-18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
3: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं के भी साथ। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है

0: killer on our plates. WHO links unsafe food to 1.5 million deaths worldwide. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for sharper vigil on financial transactions, construction of buildings and sale and purchase of properties along international borders. National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026 re-exam paper leak as false, warns of strict action against those spreading such content. West Bengal government to undertake major development initiatives to upgrade facilities at key religious sites across the state. India hands over 72 health facilities and 12 cultural heritage projects to Nepal. IATA says India will be a significant player to air traffic boom in Asia-Pacific region by 2044. And in football, India beat defending champions Bangladesh 3-1 to win SAF Women's Championship for record 6th time. And with that, we end the morning news. Have a great day.
2: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनिए धारावाहिक गीत गीता का 12वां भाग, शीर्षक है भक्ति योग।
3: विराट स्वरूप दर्शन के बाद अर्जुन द्वारा सगुण और निर्गुण की भक्ति में श्रेष्ठ कौन? ऐसा प्रश्न पूछे जाने पर भगवान द्वारा सगुण की भक्ति को अधिक सुगम और श्रेयस्कर बताया गया है तथा उसके स्वरूप की विवेचना की गई है भक्ति योग नाम के 12वें

अभी आप सुन रहे थे धारावाहिक गीत गीता का 12वां भाग, शीर्षक था भक्ति योग। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे मजरूह की लिखी गीत रचना। संगीत दिया था राहुल देव वर्मन ने। फिल्म का नाम था हम किसी से कम नहीं।

आइए फिल्म संगीत में अब सुनते हैं रवि के संगीत निर्देशन में साहिर का लिखा हुआ गीत। आवाज है महेंद्र कपूर की, फिल्म का नाम है गुमराह।

अभी आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का गीत। आवाज थी महेंद्र कपूर की। गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया था रवि ने। फिल्म संगीत में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा गीत। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव और न्यूज ऑन AIR ऐप पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक रंग। इसमें आज कलाकार हैं किशोरी लाल अहिरवार, इनके साथ ढोलक पर हैं कमलेश कुमार और झिंका पर हैं प्रेम कुमार सोनी। आइए इनके स्वर में सबसे पहले सुनते हैं नशा मुक्ति गीत।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: किशोरी लाल अहिरवार के स्वर में आइए अब सुनते हैं लोक शैलीबद्ध गीत।

0: पोलियो के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड AI बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, गोला।
2: किशोरीलाल अहिरवार के स्वर में आइए अब सुनते हैं गारी। आपको बता दें, इनके साथ ढोलक पर हैं कमलेश कुमार और झींका पर हैं प्रेम कुमार सोनी।

0: आइए अब सुनते हैं किशोरी लाल अहिरवार के स्वर में गारी।
1: की गोरिया।

आइए अब सुनते हैं किशोरीलाल अहिरवार का गाया ये बारहमासी गीत।

लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। इसमें आज कलाकार थे किशोरी लाल अहिरवार, इनके साथ ढोलक पर थे कमलेश कुमार और झींका पर थे प्रेम कुमार सोनी। मीडिया वेव पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की है।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को रविंद्र प्रजापति का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, हम कार्यक्रम को शुरू करें इससे पहले हम आपको बता देते हैं इस कार्यक्रम के फोन नंबर। हमारा पहला फोन नंबर है 298029 यानी 2980 29 और हमारा दूसरा फोन नंबर है 2415888 यानी 241588। छतरपुर शहर के बाहर के श्रोताओं के लिए हमारा STD कोड है 07682। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 11 बजे से 11:30 के मध्य की जाती है। इसी बीच हमारे श्रोता लाइन पर हैं, आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश। जी हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी सर।
0: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: सर ब्रजेश नाम है।
0: ब्रजेश
1: जी सर।
0: अच्छा ब्रजेश जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर जी मैं बांदली जिला सागर से बोल रहा हूँ।
0: बांदली सागर?
1: हाँ जिला सागर।
0: अच्छा अच्छा, तो बांदली का कुछ ना कुछ फेमस है क्योंकि बांदली का नाम सुना है काफी, क्या फेमस है आपके बांदली में?
1: बांदली में फेमस है अपना ये पार्क बोलते हैं अपना, और इंडोरियम पार्क है।
0: अच्छा,
1: बहुत सी चीजें अपने बांदली में।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये सागर से किस डायरेक्शन में है बांदली?
1: ये ललितपुर बाईपास।
0: अच्छा अच्छा, इस तरफ खुरई तरफ एरिया में है ना?
1: जी सर। हाँ खुरई तरफ।
0: अच्छा, क्या करते हैं ब्रजेश जी आप?
1: सर जी मैं खेती किसानी करता हूँ।
0: खेती किसानी करते हैं?
1: जी सर।
0: कितनी जमीन है अपने यहाँ पे?
1: सर 5 एकड़।
0: 5 एकड़ है, तो क्या क्या फसलें बो लेते हैं आप?
1: सर जी जैसे अपना क्या की अभी ये सीजन आ रहा था, इसमें क्या सोयाबीन हुआ, मूंगफली थी और भी थोड़ा थोड़ा।
0: जी जी जी, गाने सुनने के शौकीन है?
1: जी सर।
0: किस तरह के गाने पसंद आते हैं आपको?
1: सर जी मौसम के हिसाब से, जैसे अभी तो क्या कि एक गाना सुनना था अभी न्यू फिल्म का था, रफ्तार मूवी का, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, और ये गाना रानी गुप्ता जी के लिए डेडिकेट है।
0: अच्छा अच्छा, मैं तेरा बॉयफ्रेंड, इस तरह का ये गाना है, बढ़िया है, इसको गुनगुना के बता दो ये गाने को।
1: मैं तेरा बॉयफ्रेंड, तू मेरी गर्लफ्रेंड, और इसके
0: ना ना ना ना ऐसा कुछ गाना है।
1: हाँ
0: बढ़िया बढ़िया, तो ब्रजेश जी सुनवा दो फिर आपको आपके फरमाइश का गाना।
1: जी सर।
0: नमस्कार जी।

0: नमस्ते सर
1: जी। नमस्कार, क्या नाम है?
0: रश्मि तिवारी।
1: अच्छा, रश्मि तिवारी जी का फोन है, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: सागर से।
1: सागर से, क्या करते हैं आप?
0: कुछ नहीं, घर का काम करते हैं, मोड़ देख रहे, खाना पीना सब साफ सफाई।
1: ये भी एक अपने आप में बड़ा काम है। खाना पीना में क्या बना लेते हैं? बहुत अच्छा,
0: सब कुछ बना लेते हैं।
1: सब कुछ बना लेते हैं। कभी हमारे रेडियो से बातें बताई जाती हैं खाना पीना बनाने की, तो सुनते हैं कभी? ट्राई किया है?
0: सुनते हैं, टाइम मिलता है तो सुन लेते हैं, टाइम मिल जाता है अगर ध्यान मिल रहा है तो फिर नहीं कर पाते हैं जो भी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम आप सुन लेते हैं?
0: लोग भी ज्यादा सुनाते हैं।
1: लोग
0: भी
1: सुन लेते हैं,
0: कौन करे लोग गीत।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आज कौन सा गीत सुनवा दें आपको?
0: मुस्कान मूवी का।
1: मुस्कान फिल्म का कौन सा गाना?
0: जाने मन चुपके चुपके।
1: जाने मन चुपके चुपके, बढ़िया है। नए गाने आपको ये पसंद आते हैं?
0: हाँ जी।
1: बढ़िया, ठीक है रश्मि जी, आपको सुनवाते हैं फिर आपको आपकी फरमाइश का मुस्कान फिल्म का ही गाना।
0: नमस्ते सर।
1: नमस्कार जी, नमस्कार।

0: सुरनपाल से गुर्जर बोल रहा हूँ, ग्राम बाहूपुरा तहसील को जिला जालौन से।
1: क्या बात है, हेलो फरमाइश, इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: थैंक यू सर।
1: क्या हाल है आपके पहुँच के?
0: बढ़िया है सर, खेती का काम चल रहा है।
1: इस समय खेती का काम चल रहा है
0: जी, क्या तैयारी हो रही है?
1: जुताई होती है इस समय तो वैसे
0: जी?
1: कौन सी फसलें बोई जाती है इस समय आपके यहाँ पे?
0: पहले धान बोते हैं, इसके बाद किसी कर लेते हैं।
1: अच्छा, धान बोई जाती है इस समय पे आपके? बढ़िया है। कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: मुझे नाम फिल्म का गाना सुनना है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी वतन से चिट्ठी आई है।
1: चिट्ठी आई है, क्या करते हैं सुरनपाल जी? और
0: मैं शिक्षक हूँ सर।
1: शिक्षक हैं
0: जी?
1: तो कौन सी क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं आप?
0: हम नाइन्थ से इंटर तक के बच्चों को पढ़ाते हैं।
1: तो कोई विषय मिला हुआ है आपको?
0: हिंदी पढ़ाते हैं।
1: हिंदी पढ़ाते हैं
0: जी।
1: बढ़िया, तो अभी छुट्टियां चल रही होंगी आपकी?
0: हाँ, इसलिए तो।
1: और रेडियो आप सुनते हैं?
0: जी सुनते हैं, मैं बहुत पुराना श्रोता हूँ, सन 80 से सुन रहा हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है। बढ़िया है, सुरनपाल जी सुनवाते हैं आपके रेडियो सेट पर नाम फिल्म का ये गाना।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हेलो फरमाइश में स्वागत है आपका, नाम बताएं
0: जी। सर मैं दाम परसेंटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
1: बेटा जी क्या हाल है आपके?
0: जी सर बहुत अच्छा है, समय जो भी है गर्म पड़ रही है तो ये घर पे ही आनंद ले रहे हैं।
1: यमुना के किनारे आपके यहाँ केले की खेती बहुत होती है?
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर।
1: तो इस समय केले लगे हैं कि नहीं?
0: नहीं बिल्कुल केले भी लगे हैं सर, जो भी है तरबूज भी लगाते हैं लोग जो भी है। ये फसलें थोड़ा ज्यादा हो जाती है।
1: जी जी जी जी।
0: और अभी धान की भी तैयारी चल रही है सर जो भी है। तो ये महीने बाद धान भी लगने लगेंगे।
1: बढ़िया बढ़िया। कौन सा गीत सुनवा दें आज आपको?
0: जी दिलवाले फिल्म का सर, जो तुम्हें चाहे उसको सताना अच्छी बात नहीं।
1: बेटा जी सुनवाते हैं आपको आपके फरमाइश का दिलवाले फिल्म का ही गाना।
0: जी जी ओके साहब, नमस्ते।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
0: मद्दी के बगीचा हटा से बोल रहे हैं, दिनेश प्रसाद।
1: क्या करते हैं आप?
0: जी जॉब करते हैं नगर परिषद में।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, हमें लगता है आपकी और हमारी पहले बात हुई है
0: 3 महीना पहले भाई, जनवरी।
1: हाँ, याद आया।
0: जनवरी में आपसे बात हुई थी, फिर हमने लगाव रंजा गुस्सा हो गए थे, हमने की यार सर उठाते रंजा।
1: देखिए हम किसी से गुस्सा नहीं होते,
0: दुखन लगी थी हाथ।
1: कई बार फोन लगाते लगाते नहीं भी लगता है।
0: ये हमारे टेलर साहब हैं, भी कहने आज ट्राई करके देखो, लोहारी के एक टेलर हैं हटा के पास है लोहारी, उनने बोला कहने आज ट्राई करके देखो, सब कुआर है शायद लग जाए, ट्राई कर रहे थे वो लग गया सर। आप
1: तो आज क्या कहेंगे, आपको फोन लग गया, अब तो नहीं है गुस्सा आपसे?
0: नहीं, अब गुस्सा शांत हो गई है सर, 3 महीने बाद एक महीना बाद फिर आप जिस समय की बोले उस समय लगाएंगे।
1: जी जी जी, कौन सा गाना सुनना है
0: हमें सर? एक गाना सुनना है क्रांति फिल्म का।
1: हाँ,
0: अब के बरस तो धरती के रानी कह रही,
1: अब के बरस। बढ़िया बढ़िया, सुनवा दे आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: सर आपने नाम तो बताया नहीं अभी तक।
1: रविंद्र प्रजापति
0: जी सर, नमस्ते।
1: नमस्कार
0: जी, है आपके साथ में नहीं है कोई और?
1: नहीं, हम अकेले ही हैं आज
0: जी सर, तो हमने की कोई और आपके साथ में हो।
1: जी जी जी, सुनवाए फिर आपका गाना
0: जी सर।
1: नमस्कार।
0: नमस्ते।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। हाँ
0: जी, मैं ग्राम सेवड़ी जिला छतरपुर से बारेलाल प्रजापति बात कर रहा हूँ सर।
1: बारेलाल जी का फोन है सेवड़ी जिला छतरपुर से।
0: जी सर,
1: बड़े दिनों बाद बात हो रही है आपसे।
0: जी सर, लगभग एक साल हो गया।
1: जी हाँ, एक साल हो गया, सही बात है। तो कहाँ थे इस समय?
0: जी सर, थोड़ा काम में व्यस्त थे।
1: यही मतलब अपने सेवड़ी में ही थे?
0: हाँ सर, यही थे।
1: हाँ, क्योंकि आप तो सरकारी पद पे हैं, रोजगार सहायक।
0: जी जी जी सर।
1: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
0: गाना सर सुनना है, फिल्म का नाम है हम दोनों, और आवाज है उदित नारायण और रविंद्र साठी जी की, और गीत के बोल है कभी दुश्मन थे कभी यार हैं हम दोनों, ऐसा कुछ गाना है।
1: हम दोनों, अच्छा, हम दोनों का शीर्षक गीत हो गया,
0: ऐसा गाना है सर।
1: बढ़िया बढ़िया, ठीक है बारेला जी। और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप?
0: जी सर, कार्यक्रम तो सुनते रहते हैं, लेकिन सर फोन लगाने का समय
1: सहभागिता नहीं हो पाई है। कोई बात नहीं, अब आज देखिए आपने एक साल के अंतराल के बाद सहभागिता निभाई है और लगातार आप आते रहेंगे।
0: जी सर, वो तो लगाते ही रहते हैं हम, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के चलते नहीं लगा पाए।
1: जी जी, सुनवाते हैं आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: जी सर,
1: नमस्कार।

0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार,
0: मैं बद्री प्रसाद कुशवाहा जिला कटनी मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: बद्री प्रसाद कुशवाहा कटनी से बोल रहे हैं
0: जी?
1: क्या बात है, क्या करते हैं बद्री जी?
0: सर मैं तो मिस्त्री हूँ।
1: मिस्त्री हैं
0: जी, ब्रिज का पुल बनाते हैं सर, ब्रिज का।
1: अच्छा, ब्रिज बनाते हैं आप
0: जी,
1: कंक्रीट भवन निर्माण का कार्य भी रहता होगा?
0: जी जी।
1: बढ़िया है, तो इस समय कहाँ का ब्रिज बन रहा है?
0: सर बिलासपुर छत्तीसगढ़।
1: तो हमेशा ब्रिज ही का ही काम लेते हैं ना?
0: जी जी,
1: ब्रिज एक्सपर्ट हैं। तो ब्रिज बनाना और ये घर मकान बनाना तो कैसे, क्या अलग है?
0: अलग है सर,
1: अलग है,
0: बहुत तकनीकी से ब्रिज बनाते हैं सर।
1: बढ़िया है, तो रेडियो सुन लेते हैं ब्रिज बनाते समय?
0: जी सर, शाम सुबह थोड़ा सा समय मिलता है तो सुनते हैं, और बाकी जब घर में रहते हैं तो सुनते हैं सर।
1: बढ़िया है, घर में कौन है आपके?
0: माँ है, पत्नी है, बच्चे हैं सर।
1: सभी लोग सुनते हैं
0: जी।
1: बढ़िया, तो आज कौन सा गाना सुनना है?
0: सर सुना दीजिए चांदनी फिल्म का
1: मित मितवा, ऐसा कुछ गाना है ना?
0: जी जी,
1: सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश का बद्री जी।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार जी।

0: हेलो
1: जी। हेलो फरमाइश।
0: नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: ये अम्बेडकर चौक टेगरवाड़ खुरई से आपका दोस्त राम सखी परमानंद।
1: राम सखी परमानंद जी का फोन है खुरई से। राम सखी जी कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है भाई, आप लोग कैसे हैं?
1: जी जी जी जी, लगता है अभी रेडियो सुन भी रहे थे आप।
0: नहीं, रेडियो नहीं सुन रहा है अभी हम।
1: अच्छा, आवाज आ रही है कोई?
0: मतलब संडे को सुनते हो आप कार्यक्रम? सुनते हैं ऑनलाइन।
1: संडे को सुनते हैं
0: जी।
1: हेलो फरमाइश, सुनते हैं
0: जी।
1: कौन सा गाना सुनना है आज आपको?
0: जी, राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग।
1: राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग
0: जी।
1: बढ़िया है, सुनवाते हैं आपको आपके फरमाइश का ये गाना।
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: लाल भी हो जाती है और वे सफेद वाली भी हो जाती है।
1: सफेद वाली भी हो जाती है, छोटे दाने वाली है।
0: जी जी जी।
1: अच्छा, तो कितनी जमीन है अपने यहाँ पे?
0: छह बीघा। छह बीघा है।
1: बढ़िया बढ़िया, तो आप अकेले ही करते हैं, संभालते हैं ना?
0: जी, और घर में परिवार में है, माता पिता है, सभी है।
1: जी, और रेडियो कब से सुन रहे हैं?
0: रेडियो तो हम बहुत साल से जुड़े हैं छतरपुर आकाशवाणी से।
1: अच्छा, कौन कौन से कार्यक्रम सुनते हैं?
0: ये लोकगीत फोन करें सुनते हैं, हेलो फरमाइश सुनते हैं, किसान वाणी आती है, समाचार है, यही सुनते रहते हैं।
1: बढ़िया बढ़िया, तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: आज वो है साजन का, देखा है पहली बार।
1: देखा है पहली बार।
0: हाँ, साजन की आंखों में प्यार।
1: बढ़िया बढ़िया बढ़िया, सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश का ये गाना।
0: धन्यवाद सर।
1: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो नमस्कार सर
0: जी। नमस्कार।
1: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं चरण सिंह।
0: चरण सिंह जी क्या करते हैं?
1: किसान हूँ सर, हम खेती बाड़ी का काम करते हैं। अब तो सोयाबीन बोएंगे, मूंगफली है, उड़द है।
0: अच्छा अच्छा, तो कौन सी वाली मूंगफली होती है आपकी तरफ?
1: देसी वाली हो जाती है।
0: देसी वाली में कौन सी? लाल रंग वाली।

0: मनीष कुमार पारा सर।
1: मनीष पारा सर कहाँ से?
0: खोई तिगद्दा ग्राम कल्याणपुर वीर तहसील रातगढ़ जिला सागर मध्य प्रदेश।
1: जी जी, क्या करते मनीष जी आप?
0: जी सर, टीचर है, पढ़ाते हैं स्कूल में, शिक्षक है।
1: क्या बात है, कौन सा विषय पढ़ाते?
0: इंग्लिश मीडियम में मैथ पढ़ाते हैं और इंग्लिश के सब्जेक्ट पढ़ाते हैं सर।
1: बढ़िया बढ़िया, तो अभी तो छुट्टियाँ चल रही है बच्चों की ना?
0: अभी तो सर एक महीने मतलब 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे स्कूल। अभी स्कूल में
1: बढ़िया। तो आकाशवाणी छतरपुर को कैसे याद किया, सुनते रहते हैं?
0: सर आकाशवाणी छतरपुर तो हम सुनते ही डेली सुनते हैं, सुबह से लेके शाम तक। मतलब जो रात में प्रोग्राम थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती रात में सुनने में, तो 6 बजे तक ही अच्छा प्रसारण मिलता है।
1: कई लोगों के यहाँ रात में अच्छा मिलता है, आप कह रहे हैं शाम तक ही मिलता है?
0: जी सर, क्योंकि रात का सागर दूर है वहाँ छतरपुर से, तो मीडियम बीट पे सुनते हैं, वो रेडियो पे सुनते हैं सर। अभी अपन ने टच मोबाइल भी लिया नहीं है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
0: की पेड चलाते हैं इसलिए थोड़ी, क्योंकि घर में एक छोटी सी बच्ची पड़ती है हमारी खुद की आकांक्षा पारा सर।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसलिए टच मोबाइल नहीं ले रहा, के बच्चे खेलते हैं और वो बिना वो के खाना भी नहीं खाते सर।
1: देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि आजकल के देखिए बच्चे बिना मोबाइल के खाना भी नहीं खाते हैं और मोबाइल टच वाला हो तो चलाते ही रहते
0: हैं। कि मोबाइल अभी 2 या 3 साल नहीं लेंगे, जब वो समझदार हो जाएगी, 4th या 5th में आ जाएगी तभी लेंगे।
1: चलिए आपका देखिए अच्छा विचार है, क्योंकि बच्चों को अगर सुधारना है तो पहले माता पिता को सुधारना पड़ेगा। और आपका अच्छा
0: कोई गांधी जी वाली बात सर जी, के पहले खुद ने मीठा छोड़ा, अभी तो दूसरे को बोला कि आप भी मीठा मत खाओ।
1: सही बात,
0: इससे दिक्कत हो जाती है।
1: कौन सा गाना सुनवा दे मनीष जी आज?
0: सर हमें आप सुनवा दीजिए दिल है की मानता का नहीं का टाइटल सॉन्ग।
1: दिल है की मानता नहीं,
0: आकाशवाणी के 90 वर्ष होने वाले हैं 8 जून को।
1: जी हाँ,
0: आकाशवाणी यू ही सुनते रहे।
1: बिल्कुल आपने सही बात कही कि कल है 8 जून और 8 जून को हो रहे हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष।
0: जी,
1: और आगामी 7 अगस्त को हो जाएंगे हमारे आकाशवाणी छतरपुर के 50 वर्ष।
0: आकाशवाणी छतरपुर के भी सर बहुत अच्छा कार्यक्रम मिलता है आपके यहाँ से।
1: चलिए सुनवा दे मनीष जी आपको आपके फरमाइश का ये गाना।
0: जी
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन कार्यक्रम हेलो फरमाइश। प्रस्तुति थी रविंद्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग है राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति रविंद्र कुमार प्रजापति की।

0: बहुदी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार है और आज के बहुदी कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं आपका रविंद्र प्रजापति और मेरे साथ हमारे मित्र हैं।
1: मैं आपका दोस्त हूँ राजेंद्र हरदा।
0: स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार और आप एक कार्यक्रम सुनते हैं प्रत्येक रविवार को सुबह 10:30 पर जिसमें होती है हमारे दोस्तों की श्रोताओं की समीक्षाएं और कुछ सुझाव, तो इनको लेकर हाजिर होते हैं। लेकिन इनके लिए देखिए हमारे दोस्तों को भेजना पड़ेगा, तो कहाँ हमारे मित्र ईमेल भेजें या डाक से पत्र भेजें, तो उसके लिए पता बता दीजिए।
1: श्रोताओं आप नोट करें, हमारा ईमेल आईडी bhavdichhatarpur@gmail.com bhavdichhatarpur@gmail.com और हमारे श्रोता

0: विभाग से भी अपने संदेश, अपने विचार, कार्यक्रमों के संबंध में अपनी समीक्षाएं और सुझाव हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर भवदीय कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001।
1: बिल्कुल, तो श्रोता हमें बढ़ चढ़ कर पत्र भेजेंगे क्योंकि आज भी पत्रों की संख्या पर्याप्त नहीं है, जितने हैं उतने पढ़ते हैं। तो देखिए राजेंद्र जी, हमारे पास आज के लिए पहला पत्र किन का है?
0: पहला पत्र हमें सर मिला है ग्राम मम्मा सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियर और दिव्यांश विश्वकर्मा का
1: जी।
0: आप लिखते हैं 22 मई 2026 को वंदना, चिंतन, लोक रंग और आपकी पसंद सभी कार्यक्रम अच्छे लगे। प्रस्तुतकर्ता जी को बहुत बहुत बधाई हो और ग्राम सभा में मानस प्रवचन बहुत अच्छा लगा, मन भाव विभोर हो गया। 23 मई 2026 को गीत गुंजन, लोक रंग और जब आप गुनगुना उठी एवं आपकी पसंद बेहतरीन अंदाज में पेश करने के लिए राजेंद्र अहिरवार जी को बहुत बहुत बधाई। 24 मई 2026 को हेलो फरमाइश की सफल प्रस्तुतिकरण के लिए भूपेंद्र वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई। 25 मई 2026 को ग्राम सभा के अंतर्गत हेलो रंगतूला सुना जिसमें सभी मित्रों की बुंदेली में वार्तालाप पुष्पेंद्र वर्मा जी से हुई और लोक कलाकारों द्वारा बहुत ही अच्छी गारी सुनने को मिली, सभी कलाकारों को हार्दिक बधाई। 26 मई 2026 को सुबह की सभा में जिन महोदय जी की ड्यूटी थी नाम मालूम नहीं है, आपकी पसंद कार्यक्रम में बहुत ही कम पत्र शामिल किए और ऐसा लग रहा था मानो महोदय जी अपनी सिर्फ ड्यूटी पूरी करने आए हों और इस समय हम गीत गाता का रसा स्वादन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। 30 मई 2026 को जब आप गुनगुना उठी में सभी मित्रों के पत्र और बेहतर अंदाज में राजेंद्र अहिरवार जी ने पेश किया गया, आपको हमारी ओर से बधाई, आकाशवाणी छतरपुर का बहुत बहुत आभार अच्छे कार्यक्रम पेश करने के लिए। शेष अगले पत्र में इसी के साथ हमारे राम शरण विश्वकर्मा जी अपने इस पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: जी, हमारे राम शरण विश्वकर्मा जी देखिए नियमित श्रोता है और इनके समय पर देखिए हर कार्यक्रम में लगभग विस्तृत रूप से
0: जी
1: सभी कार्यक्रमों की समीक्षा लिए हुए पत्र प्राप्त हो ही जाता है। आपने हमारे यहाँ के ग्राम सभा से लेकर गीत गुंजन हेलो फरमाइश से लेकर सभी फरमाइशी कार्यक्रम आपने सुने, गुने और पसंद किए हैं। 26 मई को प्रसारण संबंधी देखिए आपने एक सुझाव भी दिया है, श्रोताओं की प्रतिक्रिया और सुझाव देखिए हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं और आपके सुझावों पर जरूर ध्यान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: और सर अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है ग्राम पोस्ट गौना कुशमार थाना सोचना तहसील महरौनी जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश से कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव, द्रौपदी रामदेवी, ब्रजेश, अखिलेश कुमारी, लखनलाल चाहना, आकाश, सूरबी, रानी परी और पायल नामदेव का
1: जी स्वागत है पत्र का।
0: आप आगे लिखते हैं 28 मई गुरुवार को सुबह आपकी पसंद सुना, कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, प्रस्तुतकर्ता दर्शना गोस्वामी जी को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर इसी दिन शाम की सभा में फोन कॉल्स पर आधारित फरमाइशी हेलो फ्रेंड्स सुना युवाणी में, हमें बहुत अच्छा लगा। रात्रि की सभा में मन भावन सुनकर आनंद आ गया, कितना अच्छा कार्यक्रम फेसबुक पेज एवं ईमेल व पत्रों पर आ रहा था, बहुत अच्छा लगा। भैया राजेंद्र कुमार जी को बार बार दिल से धन्यवाद। 30 मई शनिवार को शाम 7:20 पर बुंदेली सुगंध के अंतर्गत वार्ता सुनी देशभक्त घासी राम व्यास
1: जी,
0: वार्ता सुनकर बहुत अच्छा लगा। द्वारका प्रसाद शुक्ला जी को कोटि कोटि धन्यवाद। फिर इसके बाद 8:30 पर गीत गुंजन कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर 9 बजे से सुमन दुबे के स्वर में लोक गीतों का आनंद लिया लोक रंग में। 9:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित जब आप गुनगुना उठी बहुत सुंदर लगा, वाचनकर्ता भैया राजेंद्र कुमार अहिरवार को बारंबार बधाई। 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर शाम को शाम 6:30 पर रूपा तिवारी एवं नंदराम तिवारी जी से भरपूर लोक गीतों का आनंद उठाया और शाम 7:20 पर ग्राम सभा में हेलो लोक रंजन सुना, बहुत अच्छा लगा। 31 मई 2026 रविवार को सुबह 6:35 पर खेती किसानी सुना, इसके बाद 7:30 पर फिल्म संगीत में गीतों का आनंद लिया। 8:30 पर धारावाहिक गीत गाता का भाग 9 सुना जिसमें राज विद्या राजयोग सुना, बहुत ही सुंदर लगा। 9 बजे बुंदेली लोक गीतों में लोक रंग में रूपा तिवारी एवं नंदराम तिवारी के स्वर में फिर से लोक गीतों को सुनकर आनंद उठाया। 9:30 पर हेलो फरमाइश सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर 10:30 पर श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित कार्यक्रम भवदीय सुनकर बहुत आनंद आ गया। दोपहर में 2:30 पर बाल सभा का आनंद लिया। फिर 7:20 पर धारावाहिक कार्यक्रम ग्राम सभा के अंतर्गत अटकन चटकन सुना। रात्रि में 9:15 पर स्पोर्ट लाइट का आनंद उठाया। 1 जून सोमवार को सुबह 7:20 पर बुंदेली महक के अंतर्गत

0: प्रभु दयाल श्रीवास्तव से ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार ये वार्ता सुनी बहुत अच्छी लगी। 9 बजे से ज्योति राय से लोक रंग में लोकगीत सुने बहुत अच्छी लगी। 10:30 पर आपकी पसंद सुना। शाम को 5 बजे युवाणी में सवाल हमारे जवाब आपके सुना बहुत अच्छा लगा। साथ ही नदियों की स्वच्छता पर रोहन सिंह यादव से एक वार्ता सुनी बहुत पसंद आई। शाम 7:20 पर रमतुला कार्यक्रम का आनंद लिया। प्रस्तुतकर्ता पुष्पेंद्र कुमार वर्मा को कोटि कोटि धन्यवाद। रात्रि में मन भावन का आनंद उठाया। भूपेंद्र वर्मा जी की आवाज में हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। 2 जून मंगलवार को 6:35 पर खेती किसानी में गोबर गैस संयंत्र से लाभ, खेती किसानी सुनी बहुत अच्छी लगी। 7:20 पर गंगाधर व्यास जी के विषय में हमने एक वार्ता सुनी बहुत अच्छी लगी। 9 बजे परमेश्वरी दयाल अहिरवार से तमूरा कीर्तन पर हमने बुंदेली भजन सुनी बहुत अच्छी लगी। 10:05 पर समय साक्षी सुना बहुत अच्छा लगा। 10:35 से श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल एवं फेसबुक पेज पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद में बहुत सारे नाम शामिल हुए। प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र अहिरवार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर ग्राम सभा घरनी कार्यक्रम के अंतर्गत हमने लोकगीतों का आनंद उठाया। इसमें देवी सिंह जी से चेतावनी लोकगीत सुना। प्रस्तुतकर्ता बहन खुशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 तारीख बुधवार को 7:20 पर बुंदेली महक के अंतर्गत काव्य पाठ सुना बहुत अच्छा लगा। इसके बाद 8 बजे गीत गाता का तीसरा भाग ये हमने सुना बहुत अच्छा लगा। 9 बजे संगीता चौधरी जी से लोकगीतों का आनंद लिया, हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। 9:30 पर एक ही फिल्म के अंतर्गत जानवर फिल्म से गीतों को सुनकर मजा आ गया। 10:05 पर स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम सुना बहुत अच्छा लगा। 10:30 पर आपकी पसंद का आनंद उठाया। आपकी पसंद में प्रस्तुतकर्ता राजेंद्र अहिरवार जी को बारम्बार बधाई। दोपहर में आपकी फरमाइश सुना बहुत अच्छा लगा। 7:20 पर शाम की सभा में ग्राम सभा में अटकन चटकन का 9वां भाग सुना बहुत अच्छा लगा। 10 बजे से मन भावन कार्यक्रम का आनंद उठाया। बस इतनी ही समीक्षा है इस पत्र में, शेष अगले रविवार के पत्र में होगा। तब तक के लिए नमस्कार।
1: देखिए बहुत ही विस्तार पूर्वक पत्र इनका प्राप्त होता है
0: जी।
1: कैलाश नारायण नामदेव, दीपक कुमार नामदेव और समस्त नामदेव परिवार ये पत्र भेजते हैं। हमें जानकर प्रसन्नता होती है कि आप हमारे यहाँ के सभी कार्यक्रम सुनते हैं, चाहे वो आपकी पसंद हो, हेलो फ्रेंड्स, मन भावन, बुंदेली सुगंध, गीत गुंजन और अभी गीत गीता एक धारावाहिक चल रहा है, हेलो लोकरंजन, रमतुला, यहाँ तक की प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन भी आता है प्रत्येक बुधवार को 10:05 पर, जो इस समय देखिए डायबिटीज से संबंधित जो जानकारी है उसके बारे में दी जाती है और 5 मिनट के इस कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक जानकारी बताई जाती है। आपने देखिए उद्घोषकों के नाम भी लिखे हैं, उन सभी तक देखिए आपकी बधाई, कंपियर साथ में नाम है, कलाकार के भी नाम है, सब तक बधाई आपकी पहुंचती है रेडियो के माध्यम से। हमें प्रसन्नता होती है कि आप नियमित रूप से देखिए कार्यक्रम सुनते हैं और समय निकालकर हमारे लिए बहुमूल्य प्रतिक्रियाएं लिखकर भेजते हैं और विश्व पर्यावरण दिवस पर देखिए आपकी जो शुभकामनाएं कहें, संदेश कहें, वो हम तक पहुंच गया और हमारे श्रोताओं तक भी पहुंच गया रेडियो के माध्यम से। ऐसा ही प्रेम विश्वास आकाशवाणी छतरपुर के प्रति बनाए रखें और पत्र भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
0: अगला ये ईमेल सर हमें प्राप्त हुआ है। श्री गणेशाय नमो के साथ अपना पत्र लिखते हैं। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु, राम शंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मोरिया और उनके परिवार वाले। आप आगे अपने इस पत्र में लिखते हैं, 4 जून को सुबह एक ही कलाकार के अंतर्गत उदित नारायण के गाने हमने सुने, सुपरहिट थे। 30 मई को जब आप गुनगुना उठी बहुत ही अच्छा लगा। जब आप गुनगुना उठी में ईमेल भेजना चाहता हूँ, ईमेल आईडी बता दीजिए। आपके कार्यक्रम सभी सुनता हूँ, थोड़ा ही लिखूंगा, दूसरे के ईमेल पढ़ने हैं। हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। इसी के साथ ही ये अपने पत्र की समाप्ति करते हैं हमारे रामराज राजू भानु जी।
1: देखिए राजू जी, इन्होंने ईमेल का पता पूछा है कि जो हमें बहुदी कार्यक्रम या जवाब गुनगुना उठे के लिए, जवाब गुनगुना उठे के लिए पूछा है इन्होंने, तो जवाब गुनगुना उठे हो या बहुदी कार्यक्रम हो, हमारा मेल एक ही है, तो मेल आप फिर से नोट कर लीजिए।
0: मेल नोट कर सकते हैं, bhavdiyachhatarpur@gmail.com, bhavdiyachhatarpur@gmail.com। आप हमें अपना ईमेल भेजिए और इसको जरूर स्थान मिलेगा।
1: अच्छा, और कई लोग ईमेल भेजने में थोड़ी सी गलती करते हैं कि जहां उनको विस्तार से समीक्षा लिखनी है वो कई बार सब्जेक्ट में कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो सब्जेक्ट में देखिए आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले आता है फ्रॉम, फ्रॉम में देखिए आपकी ईमेल लिखी होती है, फिर आता है टू, जहां पर आपको कहां भेजना है, वहां देखिए आपको छतरपुर वाला मेल ये जो आपने अभी बताया हुआ है वो आपको लिखना है, फिर सब्जेक्ट में सिर्फ

0: लिखना है भौदी कार्यक्रम या जवाब गुनगुना उठे का है तो जवाब गुनगुना उठे कार्यक्रम या जो भी कार्यक्रम है उसका नाम शीर्षक लिखना है। फिर उसके बाद आता है कंपोज ईमेल, यहाँ पर आपको अपने विस्तार से समीक्षा लिखनी है तो पूरा पत्र आपका हम तक पहुंचेगा।
1: जी बिल्कुल,
0: बहुत बहुत धन्यवाद इस ईमेल के लिए।
1: और सर ये अगला ईमेल हमें प्राप्त हुआ है, लिखते हैं बाबू यादव, श्रीमती मंशा यादव, दुर्गेश यादव, सीमा यादव, अनु यादव और अरुणेश यादव, देवकी विहार कॉलोनी सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश से।
0: जी
1: आगे आप लिखते हैं, बेश

0: कवि निराला जी की एक कविता की लाइनें हैं, पृथ्वी का नियम अटल है, जो जैसा उसको वैसा फल। और इसी आधार पर पृथ्वी भी अपना संतुलन बनाए रखती है, और इसी संतुलन के कारण ही कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कभी सूखा, कभी बाढ़, और यही सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। इसी क्रम में आपके केंद्र से दिनांक 29 मई 2026 को हिंदी महक के अंतर्गत एक वार्ता सुनी थी, पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव, और वार्ताकार थे नंद किशोर अहिरवार जी। आज इस पृथ्वी के बढ़ते तापमान का दंश सारी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा महसूस कर रही है। हिमालय का ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, जिससे अक्सर तूफान आते हैं और जन धन को हानि पहुंचाते हैं। बहुत ही सराहनीय वार्ता के लिए वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। दिनांक 31 मई 2026 को सुबह धारावाहिक गीत गाता की 9वीं कड़ी सुनी, शीर्षक था राज विद्या राज गुरु योग। बहुत ही मधुर वाणी से शास्त्रों के सूत्र को सुना, अच्छा लगा और ज्ञान अर्जन भी हुआ। इसी दिन सुबह 10:30 से भव्य कार्यक्रम को सुना, सुंदर प्रस्तुति के लिए कार्यक्रम प्रमुख आदरणीय रविंद्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी राजेंद्र अहिरवार जी को दिल से धन्यवाद। इसी शाम ग्राम सभा में धारावाहिक अटकन चटकन की 8वीं कड़ी सुनी, अंधविश्वास पर आधारित ये नाटक बहुत ही अच्छा लगा। इसमें लिंग परीक्षण निषेध पर बताया गया, अच्छा लगा। सभी कलाकारों को दिल से धन्यवाद और प्रस्तुतकर्ता जी को भी धन्यवाद। दिनांक 1 जून 2026 को गीत गाता का 10वां भाग सुना, शीर्षक था विभूति योग। सुबह सुबह शास्त्रों का संगीतमय सूत्र सुनकर आनंद आ गया। इस खूबसूरत धारावाहिक की प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। दिनांक 2 जून 2026 को सुबह बुंदेली सुगंध के अंतर्गत बुंदेली वार्ता, बुंदेली कवि गंगाधर व्यास और वार्ताकार थे बाबूलाल द्विवेदी जी, सुनी, बहुत अच्छी लगी। आपने कवि के जीवन पर अच्छा प्रकाश डाला और उनकी रचनाओं में फाग, ख्याल, चौकैया की भी वानगी प्रस्तुत की, बहुत ही अच्छा लगा। वार्ताकार को दिल से धन्यवाद। दिनांक 3 जून 2026 को सुबह 7:20 पर हिंदी महक के अंतर्गत अयूब खान जी से उनकी रचनाएं सुनी, बहुत ही अच्छी लगी। आपकी एक रचना तो दिल को छू गई, जिसे कमजोर समझा था यहां सारे जमाने में, उसी ने आज अपने दम पे ये दुनिया हिला दी है। और गजब है तू मेरी जानम, अजब इंसाफ तेरा है, गुनाह आंखों का था, तुमने इस दिल को सजा दी है। आपकी खूबसूरत रचनाओं के लिए आपको दिल से धन्यवाद और सभी कार्यक्रमों की सुंदर सी प्रस्तुति के लिए आकाशवाणी की पूरी टीम को दिल से धन्यवाद। और यादें भी आप लिखते हैं akashwani@90 के तहत, याद है जरा जरा। इस क्रम में आकाशवाणी के सफर की गुजरते समय के साथ रेडियो सेट में भी परिवर्तन हुआ, और बिजली की जगह बैटरी ने ली और लकड़ी के कैबिनेट की जगह प्लास्टिक ने ले ली। अब हल्के रेडियो सेट आ जाने से उसे कहीं साथ ले जाया जाने लगा, और लोग बहुत ही शौक से अपने साथ रेडियो ले जाते थे। मेरे यहाँ भी एक 4 बैटरी वाला मर्फी कंपनी का रेडियो सेट आया और उसे खूब पसंद करते और उसे आवश्यकता अनुसार नीचे ऊपर ले जाकर सुनने में आसानी हो गई, और वो लकड़ी वाला सेट ड्राइंग रूम की शोभा हो गई। और आकाशवाणी वाराणसी ने भी अपने में परिवर्तन किया और रविवार को आकाशवाणी इलाहाबाद को रिले करने लगा, और वहां से कार्यक्रम आता था बाल संघ, उसमें पत्र भेजना मेरा शौक हो गया। नियमित पत्र भेजता और जब आकाशवाणी पर अपना नाम सुनता तो जो आनंद की अनुभूति होती उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। और हमने अपने लिए एक पॉकेट वाला भी रेडियो ले लिया था, वो हमेशा साथ रहता था। आज इतना ही शेष अगले पत्र में, और इसी के साथ हमारे बाबू यादव जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
1: देखिए, आपका आत्मीय संवेदनशील या साहित्यिक सरोकारों से परिपूर्ण पत्र देखिए प्राप्त होता है। आकाशवाणी छतरपुर के कार्यक्रमों के प्रति आपका जो लगाव, गहन श्रवण वास्तव में प्रशंसनीय है। पृथ्वी के बढ़ते तापमान, पर्यावरण संतुलन और ग्लोबल वार्मिंग जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर देखिए आपने सार्थक बात कही है। आपने हिंदी महक के अंतर्गत एक प्रसारित वार्ता भी थी पृथ्वी का बढ़ता तापमान और प्रभाव, इस संबंध में जो आपने प्रतिक्रिया भेजी है वह वार्ताकार तक देखिए अवश्य पहुंची गई होगी। गीत गीता हो, भौदी हो, ग्राम सभा, अटकन चटकन, बुंदेली सुगंध, हिंदी महक, सभी कार्यक्रमों के प्रति आपका जो स्नेह है, साहित्य, ज्ञान और सामाजिक संदेशों का आपने जिस गंभीरता से उल्लेख किया है इन कार्यक्रमों के प्रति, वह एक सजग श्रोता ही देखिए लिख सकता है। प्रस्तुतकर्ताओं, कलाकारों, वार्ताकारों तक आपके शब्द हमारे इस बहुत ही कार्यक्रम के माध्यम से देखिए पहुंच ही रहे हैं। आकाशवाणी के स्वर्णिम दिनों की भी देखिए आपने बात कही, रेडियो के साथ जुड़ा हुआ आपका जो सफर है, मर्फी रेडियो से लेकर पॉकेट रेडियो तक का जी वो आपने बात कही है, और वो केवल अनुभव नहीं आपके जीवन की एक कहानी बन गई और आपके जीवन का एक हिस्सा बन गई। ऐसे ही आपने देखिए एक बाल संघ की भी बात कही, आकाशवाणी वाराणसी के माध्यम से आपने जब पहली बार पत्र आपने सुना तो जो खुशी आपको मिली वो आज भी जहन में आपको याद है। ऐसे ही कार्यक्रम

0: प्रति अपना लगाव प्रेम बनाए रखें और भविष्य में हमें लगातार पत्र भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: और सर अगला ये पत्र हमें ईमेल पर मिला है, लिख भेजा है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता
0: जी।
1: आप लिखते हैं नमस्कार, और आगे कार्यक्रमों के बारे में आपने ये समीक्षा लिखी है। जुबानी कार्यक्रम का सोमवार को प्रसारित होने वाला साप्ताहिक कार्यक्रम सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम हमारा अत्यंत प्रिय कार्यक्रम है। लगभग प्रत्येक अंक के प्रश्नों के उत्तर हम भेजते हैं और इसमें अपनी सहभागिता बनाए रखते हैं। 25 मई को इसके अंक 121 के उत्तर और अगले अंक यानी अंक 122 के प्रश्नों को प्रसारित करने का शेड्यूल था। उस दिन आपने शाम 5 बजे से विशेष कार्यक्रम पद्म अवार्ड 2026 वितरण समारोह भाग एक को अनुप्रसारित किया। ये अनुप्रसारण लगभग 45 मिनट तक चलता रहा। 25 मई के युववाणी का पूरा समय विशेष प्रसारण के लिए अर्पित कर दिया गया, जो कि जनहित के लिए अति महत्वपूर्ण प्रसारण था। हमने भी इसका पूरा लाभ उठाया। हमारे मन में ये जिज्ञासा है कि युववाणी में अंक 121 के उत्तर और अंक 122 के प्रश्नों का प्रसारण किस दिन और किस समय किया गया, क्योंकि 1 जून सोमवार को युववाणी में अंक 122 के उत्तर बताए गए और अंक 123 के प्रश्नों को बताया गया। हमें इस बात का अफसोस रहेगा कि हम अंक 122 के प्रश्नों को सुनने से वंचित रह गए। सवाल हमारे जवाब आपके कार्यक्रम के लिए कम से कम 15 मिनट का प्रसारण समय लगता ही है और 25 मई को युववाणी के लिए इतना समय शेष बचा ही न था। बहरहाल आप हमारी जिज्ञासा को शांत जरूर कर दीजिए। 3 जून 2026 को विश्व साइकिल दिवस पर युववाणी में जो चर्चा की गई वो हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाने के महत्व को उजागर करने वाली लगी। हमें इस बात पर नाज है कि हम पर्यावरण के अनुकूल और अपने स्वास्थ्य लाभ हेतु इस सबसे सस्ते सरल और टिकाऊ यातायात के साधन का प्रतिदिन उपयोग कर रहे हैं। आगे आप लिखते हैं 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एक रेडियो रिपोर्ट सुनने का अवसर मिला। पूरी रेडियो रिपोर्ट सुनकर हमने यह निष्कर्ष निकाला कि आकाशवाणी छतरपुर जन जागरूकता और नशा छोड़ने के लिए जो भी प्रेरक और मार्गदर्शक कार्यक्रम श्रोताओं के हित में होते हैं उन्हें सुनवाकर एक जानकारी प्रहरी की तरह अपनी भूमिका निभा रही है। रेडियो रिपोर्ट में RB कुरेल जी की तंबाकू छोड़ो जीवन जोड़ो और ब्रजलाल जी की छोड़ो छोड़ो नशा के काम, रोग को नाहक में भाई तुम ना पालो बुंदेली कविता नशा के प्रति आगाह करने वाली रही। इस रेडियो रिपोर्ट का यूं कहें एक समयानुकूल कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता श्री रविंद्र कुमार प्रजापति जी और सहयोगी को हमारा दिल से धन्यवाद। AIR छतरपुर को आभार। हम व्यक्तिगत रूप से किसी धार्मिक आयोजन या प्रवचन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, लेकिन आजकल आकाशवाणी छतरपुर से गीत गाथा का जो काव्यात्मक गान सुनकर सुमधुर चौपाई शैली में प्रसारित किया जा रहा है उसे सुनकर हमें ये अनुभव होता है मानो हम किसी धार्मिक आयोजन में जीवन मौजूद हो गए हो। 31 मई को राज विद्या राज गुरु योग का 9वां भाग, 1 जून को शीर्षक विभूति योग विषय पर भाग 10 में सुन सके और 3 जून को गीत गाता के भाग 11 में विश्व रूप दर्शन योग विषय पर आनंददायक और विलक्षण बातों की जानकारी प्राप्त हुई। AIR छतरपुर को फेसबुक पर उपलब्ध करवाने के लिए आपको धन्यवाद। मनभावन और आपकी पसंद में हमारे मैसेज अभी भी नजरअंदाज किए जा रहे हैं। हम समय से मैसेज भेजते हैं, सप्ताह में 2 दिन ही मैसेज शामिल हो पाते हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ ही अपने पत्र की समाप्ति करते हैं सर।
0: देखिए सप्ताह में 2 दिन अगर संदेश शामिल हो रहे हैं तो बढ़िया है, क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि हमारे संदेश पहुंचते नहीं है या शामिल नहीं होते हैं। आपने 25 मई की बात की है राजन जी, इस पत्र में 121 के उत्तर बताए जाने थे सवाल हमारे के और 122 के प्रश्न बताए जाने थे। तो देखिए इसका हमें भी खेद है कि हमारे कुछ ही श्रोता इस कार्यक्रम को सुन पाए थे, क्योंकि 25 मई को पद्म अवार्ड का प्रसारण विशेष रूप से शाम को 5 बजे दिल्ली से किया गया, लेकिन उसी दिन जो हमारा युवाणी कार्यक्रम है वो शाम को 4:30 से 5 बजे के मध्य किया गया था। तो जिन श्रोताओं ने सुना होगा
1: जी,
0: तो उनके पास तो इनके प्रश्न और उत्तर दोनों ही थे, और हमें खेद है कि हम इसको बहुत पहले से अनाउंस नहीं करवा पाए कि आज का ये कार्यक्रम थोड़ा पहले जाएगा। और आपने देखिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर देखिए विशेष कार्यक्रम की सराहना की है, साइकिल दिवस पर जो प्रसारित हमारी युवाणी कार्यक्रम में चर्चा थी उसका भी देखिए आपने आनंद लिया, रेडियो रिपेयरिंग और साइकिल चलाने के स्वास्थ्य लाभों का विशेष रूप से आपने उल्लेख किया है, गीत गीता धारावाहिक का आपने प्रशंसा की है कि हमें गीत गीता के माध्यम से गायन के माध्यम से गीता का ज्ञान मिल रहा है, और आकाशवाणी छतरपुर के सभी कलाकारों प्रस्तुतकर्ताओं तक आपने बधाई पहुंचाई है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए।
1: और सर अगला ये ईमेल

0: में प्राप्त हुआ है। अस्पताल रोड केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से श्रीमती वंदना गौहर और चंद्रेश गौहर जी का
1: जी स्वागत है।
0: आप लिखते हैं महोदय जी, सर्वप्रथम संदेश वाचन करने वाले हमारे राजेंद्र हरवार जी एवं उत्तरदाता आदरणीय रविन्द्र कुमार प्रजापति जी को हमारा स्नेहिल अभिवादन स्वीकार हो। स्वच्छ नदियाँ शुद्ध पेयजल का मुख्य स्रोत है, जिससे जल जनित बीमारियों का खतरा कम होता है। नदियाँ अनगिनत जल जीवों और वनस्पतियों का घर है। प्रदूषण इन्हें विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा करता है। स्वच्छ जल पर कृषि, सिंचाई, मत्स्य पालन और कई उद्योगों की निर्भरता टिकी हुई है। नदियों को स्वच्छ रखने का और इनका संरक्षण सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आपके केंद्र से हमने दिनांक 1 जून को कार्यक्रम युगवाणी में रोहन सिंह यादव की वार्ता नदियों की स्वच्छता सुनी। प्रस्तुत वार्ता बहुत ही प्रेरणास्पद, ज्ञानवर्धक और जन उपयोगी लगी। इसी दिन हमने कार्यक्रम हिंदी महक में एक वार्ता सुनी, ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार, बहुत ही ज्ञान से परिपूर्ण थी। दिनांक 30 मई को बुंदेली सुगंध में हमने हिंदी वार्ता देशभक्त घासीराम व्यास सुनी, बहुत अच्छी लगी। इसी दिन का गीत गुंजन, जो कि अयाज खान जी ने पेश किया था, बहुत ही अच्छा लगा। इसके बाद हमने कार्यक्रम जवाब गुनगुना उठे में राजेंद्र जी की प्रस्तुति को सुना। कार्यक्रम में पत्रों का चयन एवं पत्रों का वाचन को भाग गया। दिनांक 31 मई को कार्यक्रम हिंदी महक में शकील खान जी का हिंदी काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। इसी दिन का हेलो फरमाइश भविदीय बाल सभा में गुलदस्ता के तहत काव्य पाठ मन को भाग गया। दिनांक 2 जून को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में बुंदेली वार्ता सुनी, बेहद ही पसंद आई। इसी दिन कार्यक्रम रसावतरण में आयोजित कवि गोष्ठी में आमंत्रित कवियों की रचनाएं मन को भाग गई। इसी दिन हमने कार्यक्रम पत्रिका के अंतर्गत समय साक्षी में एक वार्ता सुनी, बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्ध आश्रम, बहुत ही मार्मिक और चिंतनीय लगी। माता पिता हमारे संस्कार और परिवार की नींव होती है, उन्हें वृद्ध आश्रम जाने से रोकने के लिए आपसी समझ, धैर्य और सही समाधान खोजना बेहद ही आवश्यक है। कई बार गलतफहमियों या पीढ़ियों के अंतर के कारण विवाद होते हैं। परिवार के सभी सदस्य बैठकर शांति से बात करें और बुजुर्गों की दिनचर्या व प्राथमिकता को समझें। इसी दिन हमने युववाणी कार्यक्रम में बुंदेलखंड का इतिहास विषय पर बेहद ही महत्वपूर्ण वार्ता सुनी, बहुत अच्छी लगी, जो हमारे ज्ञान कोष में बढ़ोतरी कर गई। दिनांक 3 जून को हमने कार्यक्रम हिंदी महक में काव्य पाठ सुना, अच्छा लगा। इसी दिन हमने कार्यक्रम युववाणी के अंतर्गत जय कुमार प्रजापति की वार्ता महिला सुरक्षा में युवाओं की सोच, बहुत ही अच्छी लगी। महिला सुरक्षा को लेकर आज के युवाओं की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। वे इसे केवल कानून और व्यवस्था या मुद्दा मानने के बजाय लैंगिक समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और पारस्परिक सम्मान से जोड़कर देखते हैं। युवा पीढ़ी दकियानूसी सोच को नकारते हुए महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को समाज की प्रगति के लिए अनिवार्य मानती है। दिनांक 4 जून को कार्यक्रम बुंदेली सुगंध में नारायण दास सोनी का बुंदेली किस्सा कंडेल साहब सुना, बहुत ही हास्यप्रद लगा। सभी कार्यक्रमों के प्रस्तुतकर्ता, संकलनकर्ता, उद्घोषकों, वार्ताकारों, कवियों को हमारा दिल से आभार और साधुवाद। शेष अगले पत्र में एक नई बात और नई समीक्षा के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा अभिवादन स्वीकार करें। इसी के साथ हमारे चंद्रेश जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर
2: बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपका स्नेह पूर्वक, आत्मीयता और सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण पत्र है, नियमित रूप से लगभग हर बहुधी कार्यक्रम के लिए हमें प्राप्त हो ही जाता है। आपने युवाणी में प्रसारित नदियों की स्वच्छता विषय पर देखे एक वार्ता सुनी है और हिंदी महक में ईश्वरी के काव्य में श्रृंगार और बुंदेली सुगंध में देशभक्त घासीराम और गीत गुंजन जैसे कार्यक्रम आपको ज्ञानवर्धक को प्रेरणादायी लगे। कार्यक्रमों के विषय में आपने जो गहन चिंतन और सारगर्भित विचार आपने पहुंचाए हैं, आपके देखे सजग श्रोता होने की पहचान दिलाते हैं। विशेष रूप से देखे बुजुर्गों को मत जाने दो वृद्धाश्रम विषय पर आपने जो संवेदनशील विचार व्यक्त किए हैं, वे अत्यंत प्रेरक हैं। वास्तव में माता पिता परिवार की नींव होते हैं और उनके अनुभव हो, संस्कार हो, स्नेह हो, हमारे जीवन की अमूल्य धरोहर होते हैं। परिवार में संवाद, सम्मान और आपसी समझ पीढ़ियों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है। ये सब देखिए आपने सीख अब इस वार्ता के माध्यम से ली है। महिला सुरक्षा में युवाओं की भूमिका, इस पर भी देखिए आपने विचार सुने हैं इस वार्ता के माध्यम से। हमें प्रसन्नता है कि आप हमारे यहाँ के सभी कार्यक्रम, विशेष रूप से सुबह के कार्यक्रम और फरमाइशी कार्यक्रम आप सुनते ही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह अपनी समीक्षा से हमें अवगत कराते रहें, धन्यवाद।
0: और सर अगला पत्र मिला है ग्राम परसमा जिला मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर, दीपू, अमित, अंकित और डॉली तोमर का। आप लिखते हैं पत्रवाचक व उत्तरदाता दोनों श्रीमान को हमारा सप्रेम अभिवादन, नमस्कार। आगे अब लिखते हैं दिनांक 14 मई 2026 को खेती किसानी में चूहा नियंत्रण की अद्भुत

0: जानकारी दी गई। संसार में मानव से चूहों की संख्या 6 गुनी बताई गई है। ये हमें किस तरह व कितना नुकसान पहुंचाते हैं ये भी समझाया गया। निदान के उपाय भी बताए गए। प्रस्तुतकर्ता को साधुवाद। चिंतन में शुद्ध मन व अशुद्ध मन की व्याख्या की गई। बुंदेली सुगंध में कहानी पसंद आई, नेकी का फल। कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो अच्छा करे उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। प्रातःकालीन फिल्म संगीत मनोहारी एवं सदाबहार लगा। आपको दिल से धन्यवाद। 18 मई को रमतुला में रामनाथ अहिरवार के स्वर में लोक शैलीबद्ध गीत बा जयंत विश्वकर्मा के स्वर में बाल गीत मनमोहक लगे। 21 मई को युवाड़ी में चाय दिवस की व्याख्या विस्तार से की गई। चाय की उत्पत्ति कैसे हुई ये भी बताया गया। चाय किसानों के प्रति आभार व्यक्त करने की बात कही गई, जो बहुत ही सराहनीय लगी। इसके बाद आतंक विरोधी दिवस की चर्चा की गई। कंपियर्स महोदय को दिल से धन्यवाद। 23 मई को जब आप गुनगुना उठी पसंद आया, इसमें बड़ी विशेषता ये रही कि कार्यक्रम में अधिक से अधिक पत्रों को शामिल किया गया। हर तरह के श्रोताओं के पत्रों को सम्मान देना आकाशवाणी छतरपुर की अद्भुत विशेषता है। प्रस्तुतकर्ता व सहयोगी को बार बार धन्यवाद। कोई भी श्रोता ये शिकायत नहीं कर सकता कि मेरा पत्र शामिल नहीं हुआ। ऐसी बेमिसाल प्रस्तुति के लिए मैं सलाम करता हूँ। 26 मई की वंदना में हनुमान जी की आरती पसंद आई। खेती किसानी में केंचुआ खाद बनाने की विधि समझाई गई। चिंतन में स्वयं के दोष खोजना व दूसरों के कर्मों को ग्रहण करने की बात कही गई। लोक मंजरी में अच्छे व सामयिक लोकगीत सुनवाने के लिए कंपेयर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे हरविलास तोमर जी अपने पत्र की समाप्ति करते हैं। सर,
1: हमारे हरविलास सिंह तोमर जी ने देखिए पत्र लिखा है और लगभग सभी कार्यक्रम जो बहुत ही हमारे जाते हैं उसमें पत्र प्राप्त हो ही जाता है। इस पत्र में आपने 14 मई से लेकर 26 मई तक के कार्यक्रमों का जिक्र किया है और देखिए मुरैना में रहते हैं लेकिन बुंदेली कार्यक्रमों को विशेष रूप से पसंद करते हैं। इन्होंने ग्राम सभा हो, लोकरंग लोकधारा हो या सुबह का बुंदेली सुगंध हो, इनमें आपने देखिए रुचि दिखाते हैं और इससे जुड़ी हुई जो जानकारी होती है, खेती किसानी से जुड़ी हुई जानकारी होती है, उसको अपने दैनिक जीवन में भी उपयोग करते हैं, लोगों को सुझाव भी देते हैं। ऐसे ही कार्यक्रम आप सुनते रहे, नियमित रूप से हमें पत्र भेजते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए। तो राजन जी, ये तो थे हमारे पास आज के लिए प्राप्त हुए पत्र। और जाने से पहले जैसा कि हम बताते हैं भवदीय कार्यक्रम में डाक का पता और ईमेल का पता।
0: डाक का पता है कार्यक्रम भवदीय द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी छतरपुर मध्य प्रदेश पिन 471001 और ईमेल का पता है bhavdiychatarpur@gmail.com bhavdiychatarpur@gmail.com।
1: तो सुनते रहे कार्यक्रम
0: भवदीय
1: आकाशवाणी
0: छतरपुर।

अभी आप सुन रहे थे पत्रोत्तर का साप्ताहिक कार्यक्रम भवदीय। सहयोग था राजेंद्र कुमार अहिरवार का और प्रस्तुति थी रविन्द्र कुमार प्रजापति की। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज और प्रसार भारती के ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

0: सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करे गीत सुने।
1: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मैं हूँ रक्षा तंवर, आपकी रेडियो दोस्त। हम आपको कार्यक्रम शुरू होने से पहले बता दें कि इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड करते हैं रोज सुबह 10:30 से, जिसका प्रसारण होता है अगले दिन सुबह 11 बजे से। हमारे फोन नंबर है 2660902 और एसटीडी कोड है 0755। आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है और चलिए बात करते हैं हमारे पहले श्रोता से।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार। फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेलखेड़ा, जिला दमोह, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम
1: कैसे हैं आप?

0: बहुत अच्छे हैं।
1: और मौसम कैसा है? अब तो बारिश थोड़ी हो गई होगी।
0: हाँ, बारिश हो जाती है, शाम को या सुबह हो जाती है।
1: चलिए तो बताइए, कार्यक्रम में कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं आप?
0: आज हम सुनना चाहते हैं मुस्कान फिल्म का गीत के बोल है, जिस दिन तेरी मेरी बात नहीं होती।
1: चलिए आपका जो गीत है हम खोज लेते हैं और आपको सुनवा देते हैं उदित नारायण की आवाज में ये गीत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार, कार्यक्रम में आपने फोन किया
0: के लिए डेडिकेट रहेगा मैडम, ये आपके लिए भी रहेगा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते, नाम बताएं अपना।
1: मैं कोलारस से हरिशंकर खेमरिया बोल रहा हूँ, जिला शिवपुरी से।
0: हरिशंकर खेमरिया जी,
1: हाँ,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या करते हैं हरिशंकर जी आप?
1: मैं अब रिटायर हो चुका हूँ, पहले शिक्षक था।
0: अरे वाह, क्या पढ़ाते थे आप?
1: प्राइमरी सेक्शन 1 से 5 तक।
0: अच्छा,
1: छोटे बच्चों को पढ़ाता था मैं।
0: अच्छा जी, कार्यक्रम में आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: करिश्मा कुदरत का फिल्म का नाम है और गीत के बोल है, एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, कैसी है दुनिया की रीत रे।
0: जी, गीत उपलब्ध है हमारे पास, आपको सुनवाई देते हैं हरिशंकर जी। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार।

0: आकाशवाणी के कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद दीदी। ग्राम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: भगवान सिंह परमार जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं दीदी, स्वस्थ हैं, आप कैसे हो?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और बताइए क्या चल रहा है, कैसा मौसम है?
1: अभी तो मौसम बहुत गर्म है, काफी गर्मी पड़ रही है दीदी हमारे इधर तो अभी, और तो एक दो चार दिन पहले बूंदाबांदी हुई थी दीदी, उससे कुछ टेम्परेचर गिर गया है गर्मी का।
0: तो थोड़ी बहुत राहत मिली होगी?
1: जी हाँ दीदी, थोड़ी बहुत राहत मिली है, बाकी 3-4 डिग्री से बहुत फर्क पड़ जाता है टेम्परेचर से गिरने से।
0: हाँ जी बिल्कुल। तो कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनना चाहेंगे आज?
1: गुड बॉय, बैड बॉय और गाने के बोले मेरी मेरी आवारगी मेरी दीवानगी को जरा चैन आए सनम।

0: जो थामले दामन बदल जाएंगे कदम, ये वाला गीत सुनना है दीदी?
1: बिल्कुल, आपका जो गीत है आपको सुनवाई देते हैं हिमेश रेशमिया की आवाज में। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिंह जी।

0: कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है
1: जी। बहन प्रणाम, नमस्कार।
0: नमस्ते
1: जी, मैं राजू यादव, ग्राम प्रेंका, श्रीरामपुर डेरा, सरीला राठ, मुस्करा, हमीरपुर, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश।
0: जी राजू जी, कैसे हैं आप?
1: हम तो बहना जी बढ़िया हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, स्वस्थ हैं, बिंदास हैं, बगीचे में बैठे हुए, बहुत सारे आम लगे हुए हैं।
0: अरे वाह, अरे वाह, तापमान भी कम हो गया है तो बगीचे में बैठने में अलग आनंद आ रहा होगा आपको।
1: तापमान तो

0: खाना जी एकदम ठंडा, क्योंकि बारिश हो चुकी है ना हमारे गांव बुंदेलखंड में।
1: जी जी जी जी जी। तो राजू जी कौन सा गीत सुनना चाहेंगे कार्यक्रम में आज?
0: मूवी का नाम इतिहास।
1: इतिहास फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: जुदा अपने दिलवर से होने लगी है मोहब्बत, मोहब्बत को रोने लगी।
1: अलका याग्निक जी की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं, बस आपके रेडियो सेट्स पर ये गीत आपको सुनाई देगा।
0: मित्रों के नाम ले लें क्या भाई?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारे मित्र हैं बलवान सिंह यादव हैं, अनूप कुमार राजपूत जी हैं, महेश राजपूत हैं, ग्राम उपरेखा थाना मुस्कर तहसील सरीला जिला हमीरपुर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद
0: जी। बहन प्रणाम। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते, अम्बेडकर चौक से अगर वार्ड खोलाई से राम सखी परमानंद।
0: राम सखी परमानंद जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है मैम, बहुत गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना चल रहा है, अंतिम 15-20 दिन तक बरसात आ जाए तो ठीक है।
0: अच्छा, तो अभी आपके वहाँ पर बारिश नहीं हुई है? बहुत सारी जगहों पे थोड़ा तूफान आया, थोड़ी बारिश हो गई तो थोड़ा ठंडक हो गया है।
1: आंधी हवा तो चली है मगर बरसात नहीं हुई है।
0: अच्छा,
1: हम लोग देख रहे हैं अब जब तक हो जाए, तक जाए 20 तारीख तक जहाँ मानसून आने की संभावना है।
0: चलिए बढ़िया है, यही उम्मीद करते हैं कि समय से मानसून आ जाए और थोड़ा राहत मिले, थोड़ी ठंडक मिले। आप कार्यक्रम में कौन सा आज गीत सुनना चाहते हैं बताएं?
1: डंकी का कोई भी गीत सुना दे।
0: तो लीजिए, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर। राम सखी जी, कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैम,
0: किनसे बात हो रही है?
1: बद्री प्रसाद कुशवाहा, ग्राम हथेड़ा, तहसील विजयगढ़, जिला कटनी, मध्य प्रदेश से आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ मैम।
0: बद्री प्रसाद जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैडम।
0: तो कार्यक्रम है फोन करे गीत सुने, कौन सा गीत आज सुनना चाहते हैं कार्यक्रम में?
1: फिल्म का नाम
0: जी
1: राम तेरी गंगा मैली का टाइटल सॉन्ग सुना दीजिए।
0: आपकी पसंद का गीत अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में फोन करने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बद्री प्रसाद जी।
1: थैंक यू मैडम।

0: कार्यक्रम फोन करिए गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, किनसे बात हो रही है?
1: मैं नेपाल पुलिस से, नेपाल पुलिस सागर से तिलक राणा बोल रहा हूँ।
0: तिलक राणा जी, कैसे हैं आप? आपकी बहुत चिट्ठियाँ आती हैं और बहुत अच्छे गीतों की आप फरमाइश करते हैं
1: और आप लोग हमारे पत्नों को प्राथमिकता भी देते हैं।
0: जी जी जी, तिलक राणा जी कैसे हैं आप?
1: ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं?
0: मैं भी बढ़िया हूँ। और क्या चल रहा है?
1: एक्चुअली मैडम, मैं डॉक्टर हरी सिंह को एनडी विश्वविद्यालय में एनडीसी

0: वॉक करते हैं और अभी तो गर्मी का समय चल रहा है तो वैसे भी आलस के रेत बहुत गर्मी पड़ रही है।
1: अच्छा ये तो है, ये तो अभी सभी जगह का है, कुछ जगहों पे थोड़ी बारिश हो गई है तो तापमान कम हुआ है, थोड़ी राहत है। तो कार्यक्रम में आज गीत कौन सा सुनेंगे?
0: मैम आज मुझे लोक परलोक का गाना मिल जाएगा,
1: लोक परलोक फिल्म से कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: लोक परलोक का वो वाला गाना है मैम, बादल कब बरसोगे।
1: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आपको सुनवाई देते हैं लोक परलोक से। कार्यक्रम में आपने फोन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: कार्यक्रम फोन करे गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्ते।
1: फोन करे गीत सुने।
0: जी जी जी, आपका नाम जान सकती हूँ?
1: मेरा नाम मैडम जसराम जाटव है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जिला सीपी से। गांव का नाम जोराई।
0: कैसे हैं जसराम जी?
1: बढ़िया मैडम।
0: तो कार्यक्रम जो है वो फोन करे गीत सुने, इसमें आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: हमको सुनना है मैडम, गाने के बोल रहेंगे मेरा प्रिय घराया हो राम जी। मूवी का नाम तो मैडम मेरे को याद नहीं है।
0: कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में ये गीत है।
1: हाँ,
0: फिल्म याराना से।
1: मैडम मैडम परिवार वालों का नाम लेना चाहिए?
0: बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: हमारे भाई है रघुवीर जाटव, और एक और भाई है हमारे लहरी जाटव, और हमारे भतीजे हैं पिंकी जाटव, संजय जाटव, प्रंश जाटव, सचिन जाटव।
0: ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए। अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, कार्यक्रम फोन करें गीत सुने में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नमस्कार, मैं गुना से बात कर रही हूँ, सरिता शर्मा।
0: सरिता शर्मा जी, गुना से
1: जी।
0: कैसी हैं आप
1: जी? हम और आप कैसी हैं मैम?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं?
1: हाँ बढ़िया है। क्या? और बहुत खुशी हुई कि आज नंबर लगा है, हमारी फरमाइश का गीत हमें सुनने को मिलेगा, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इस नंबर बहुत लगाते रहते हैं, लगता ही नहीं है।
0: कोई बात नहीं, आज लग गया है आपका फोन और आज आपको जरूर हम आपकी फरमाइश का गीत सुनवाएंगे। क्या करती हैं वैसे सरिता जी आप?
1: मैं शिक्षक हूँ, 9 से 12 तक हायर सेकेंडरी विद्यालय में बच्चों को पढ़ाती हूँ।
0: अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं आप, बताएं
1: जी? आप सुनवाएं ये साजन फिल्म का, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: साजन फिल्म से
1: जी,
0: अनुराधा पौडवाल जी की आवाज में ये गीत है, हमारे पास उपलब्ध है
1: जी।
0: बिल्कुल, आपको सुनवा देते हैं ये गीत। कार्यक्रम में आपने फोन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी।
1: जी धन्यवाद,
0: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 11:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
1: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने तथा स्वस्थ और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से छुटकारा मिलता है। वहीं प्रदेश में भी भोपाल और शिवपुरी सहित कई जगह पर संडेज ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने बताया कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत भारत ने 9 करोड़ से अधिक विशिष्ट आभा कार्ड जारी किए हैं और 1 करोड़ से अधिक डिजिटल चिकित्सा विवरण आभा कार्ड से जोड़े गए हैं। और भोपाल के जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की 13वीं वर्षगांठ समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय महुआ महोत्सव के तहत आज निवाड़ी गायन, उत्तराखंड का तांडी नृत्य, कर्मा नृत्य, पनिहारी नृत्य, महाबली छत्रसाल, बुंदेलखंड के जीवन पर नृत्य नाटक की प्रस्तुति भी होगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:00 प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है पटेल नगर मलोड पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, बेबी आजू जाजोरिया, नेपाल पैलेस सागर से तिनक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर और ऋषिका रॉबिन। आप सब ने सुनना चाहा है राम बलराम फिल्म का ये नगमा, जिसे आवाजें दी है मोहम्मद रफी और किशोर कुमार ने। आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल।

और अब सुनिए खुशबू फिल्म का ये गीत। आशा भोसले की आवाज में गुलजार का गीत है और राहुल देववर्मन का संगीत। इस गीत की फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, अस्मा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊ भाई, शाहिद भाई, गांधी पार्क अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर ने।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में सुनिए दयावान फिल्म का ये गीत। अजीज गासी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत। इस गीत को पसंद किया है उपाध्याय नगर देवा से मुरली लाल वर्मा, मनीष वर्मा, शिवम वर्मा, राजाराम नगर देवा से राजू अग्रवाल, मधु महाजन, राकेश अग्रवाल, सुपरमार्केट देवा से प्रकाश चंद्र जसवानी, पंकज जसवानी, रानी जसवानी, गंगेड़ी जिला उज्जैन से गोपाल बागवान, गोविंद सालग्राम, दशरथ बागवान, लोकेन्द्र वर्मा, रूपाखेड़ी देवास से हरिराम माली, विष्णु माली, कपिल, निरंजन माली, जेल रोड देवास से नवीन वर्मा, बबलू वर्मा और कालू भैया। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं

कार्यक्रम का अंतिम नगमा सुनिए। खामोशी फिल्म से आवाज किशोर कुमार की, गुलजार का गीत और संगीत हेमंत कुमार का। इस गीत की फरमाइश भेजी है महेश्वरी मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न, वाल्मीकि धाड़े, निनाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर, जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा, जासमिन और प्रयागराज भट्ट, राजेंद्र नगर गंजबासोदा जिला विदिशा से भाराचंद साहू, राज साहू, करिश्मा साहू, अजय साहू और प्रेमाबाई साहू। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं खामोशी फिल्म का ये नगमा।

इस नगमे के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।

0: गौरवपूर्ण वर्षों की पूर्णता पर हार्दिक बधाई।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। संग्रहालय के अंतर्गत सुनिए धारावाहिक जंग लगी तलवार की दूसरी कड़ी।
2: सुप्रसिद्ध लेखिका और उपन्यासकार इंदिरा गोस्वामी का असमिया साहित्य में विशेष स्थान है। प्रस्तुत है इंदिरा गोस्वामी द्वारा लिखित और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित असमिया उपन्यास ममारे धारो तलोवाल पर आधारित धारावाहिक जंग लगी तलवार। इस धारावाहिक के प्रस्तुतकर्ता और निर्देशक हैं रेडियम वीडियो मैटिक्स दिल्ली के वेद शर्मा। रेडियो रूपांतर किया है राजीव और सुधांशु ने। अब तक आपने सुना रायबरेली की साई नदी पर कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले दो मजदूरों शंभू पासवान और यशवंत दलित मजदूरों की दुर्दशा, उनकी भूख व दूसरी समस्याओं पर चर्चा करते हैं और मजदूर यूनियन के नेताओं की कमियों पर टिप्पणी करते हैं। यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर पर यूनियन के पैसों का गबन करने के कारण उसे यूनियन से हटाए जाने की बात चलती है। यूनियन में अभी तक दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ था, अतः यशवंत को राम बहादुर की जगह प्रतिनिधि के रूप में शामिल करने की कोशिशें तेज होती हैं। नारायणी चारिंग

नर्मदा नदी पर चल रहे प्रोजेक्ट में मजदूरी करके अपना पेट भरती है। उसका ब्याह तो हो चुका है मगर गौना नहीं। साइट के मैनेजर का छोटा भाई चौधरी नारायणी को अपने प्रेम जाल में फंसाता है और उसे गर्भवती बनाकर चला जाता है। अब

0: क्या क्या कह रही है नारायणी? तो उस चौधरी का बीज तेरे पेट में?
1: अरे तेरी मति मानी गई है क्या? अरे तुझे सोचना चाहिए था कि तू शिबू की अमानत है।
0: मुझसे बड़ी भूल हुई काकी, मुझसे बड़ी भूल हुई। जमीन पर रहकर मैं आसमान छूने चली थी, मगर अब तो मैं पाताल में फंस गई हूँ। बस काकी, अब तो मेरे सामने एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता।
1: देख नारायणी, देख, अब ये रोना धोना बंद कर और अपनी बात मुझसे कह।
0: काकी, मेरे लिए सिवाय मौत के दूसरा रास्ता क्या है?
1: नारायणी,
0: मन करता है कि इसी समय नदी में डूब मैं।
1: खबरदार, खबरदार नारायणी, फिर कभी ऐसी बात मुझसे ना निकालना।
0: अरे ये जीवन तो भगवान का दिया है, इसे लेने का अधिकार केवल भगवान को ही है। तो फिर मैं क्या करूं, क्या करूं काकी? आज नहीं तो कल दुनिया को इस बारे में तो पता चलेगा ना। किस तरह दिखा पाऊंगी दुनिया वालों को अपना मुंह?
1: तो चिंता ना कर नारायणी, चिंता ना कर, भगवान इतना निष्ठुर नहीं है, भगवान पर भरोसा रख।
0: काकी, क्या भगवान मेरा अपराध क्षमा कर देंगे? मुझे इस बदनामी से भगवान बचा लेंगे क्या?
1: अरे क्यों नहीं, भगवान की इच्छा के बिना तो एक पत्ता तक नहीं हिलता। देख नारायणी, ये बात हमारे और तुम्हारे बीच है, इसका जिक्र किसी दूसरे से ना करना।
0: लेकिन इससे होगा क्या काकी?
1: तो बहुत ना बोल नारायणी, हमारी बात को ध्यान से सुन। हाँ, क्या नाम है उसका?
0: शिबू।
1: हाँ शिबू, देख हम उससे मिलके तेरे गौना की बात कर लेंगे।
0: काकी, काकी, क्या वो मेरा मेरा गुना क्षमा कर देंगे?
1: अरे क्षमा तो वो जब करेगा ना, जब उसको कुछ पता लगेगा।
0: भगवान मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, अपना अपराध छिपा कर जिंदगी भर उनका सामना किस तरह करूंगी मैं, किस तरह?
1: अरे तू दिमाग पर अधिक जोर ना डाल। देख नारायणी, मेरी बात को ध्यान से सुन। गौना होने के एक महीना बाद शिबू को कहना कि वो बाप बनने वाला है। अरे बच्चा तो सतमासा अठमासा होना कोई नई बात नहीं है ना, इस तरह तेरी इज्जत बच जाएगी और किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ नारायणी, हमारी बात मान ले नारायणी, इसी में तेरा भला है।
0: ठीक है काकी, आप मुझसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपने मुझसे ज्यादा दुनिया देखी है।
1: हाँ बेटा,
0: आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी।
1: हाँ ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक, हम आज ही जाकर शिबू से बात करते हैं। हाँ, घबराना।
2: नारायणी, तुम नहीं जानती नारायणी, तुम्हें पाकर मैं कितना खुश हूँ, कितना खुश हूँ।
0: किस्मत तो मेरी जागी है जी, जो आप जैसा पति मुझे मिला।
2: नारायणी, सच बात तो यह है नारायणी कि भगवान ने हम दोनों का संयोग स्वर्ग में ही लिख दिया था। और हम दोनों ने तो भगवान की इच्छा को पूरा किया है ना?
0: अच्छे स्वामी, आज हमारे मिलन की पहली रात है।
2: नारायणी,
0: अगर आज मैं आपसे कुछ मांगू तो आप इनकार

0: तो नहीं करेंगे ना?
1: अरे नारायणी, कैसी बात करती है तू? अरे तू मेरी अर्धांगिनी है, और अर्धांगिनी का मतलब तो जानती है ना तू?
0: जी, इसका मतलब हुआ कि मैं आपके शरीर का आधा हिस्सा हूँ।
1: अरे वाह, शाबाश, बहुत अच्छा। बस इसी तरह मैं भी तुम्हारे शरीर का आधा हिस्सा हूँ, यानी कि हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए हैं, है ना? इस नाते हम दोनों को एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करना होगा, एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखना होगा, तभी तो हम अपनी गृहस्थी को चला सकते हैं, है ना?
0: जी।
1: क्यों नारायणी, तुम मेरी बात से सहमत हो ना?
0: जी, पति का वचन तो परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। क्या कभी परमेश्वर के आशीर्वाद से असहमत हुआ जा सकता है?
1: नारायणी, तुम कितनी अच्छी हो। अरे हाँ, मैं तो भूल गया, तुम मुझे कुछ कहना चाहती थी ना, कुछ मांगना चाहती थी।
0: हाँ जी।
1: तुम फिर कहती क्यों नहीं? कहो ना।
0: पहले आपको वचन देना होगा।
1: वचन?
0: जी।
1: पहले बताओ तो सही।
0: नहीं नहीं, पहले वचन दीजिए ना।
1: अच्छा बाबा, अच्छा लो, मैंने वचन दिया। आप कहो क्या कहना चाहती हो?
0: मुझसे भारी भूल हो गई है, भारी अपराध हुआ है मुझसे। आपको मेरी इस भूल को क्षमा करना होगा।
1: नारायणी,
0: ये तुम क्या कर रही हो?
1: भला ऐसा तुमसे कौन सा अपराध हो गया जिसके लिए तुम मुझसे क्षमा मांग रही हो?
0: तो बात ये है कि मैं
2: देख नारायणी, इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तेरी जिंदगी नरक बन जाएगी। नरक बन जाएगी जिंदगी, नरक बन जाएगी।
1: ए नारायणी, क्या बात है, अरे तुम ये कहते कहते क्या सोचने लगी? नारायणी
0: कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
1: अरे तुम बताओ ना, अरे तुमसे कौन सा गंभीर अपराध हुआ है, बोलो।
0: ये कि
1: हाँ बोलो ना, बोलो बोलो।
0: नहीं, वो अभी मुझसे कोई गलती तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, इंसान से गलती तो कभी भी हो सकती है ना, इसलिए क्षमा करने का वचन पहले मांग लिया आपसे।
1: कोई बात नहीं, ई नारायणी
0: जी,
1: हमें मिलन की इस रात को यहीं बर्बाद नहीं करना चाहिए। नारायणी, इधर आओ। हाँ

0: हे स्वामी, इस सुख की तो मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज से मेरा नया जीवन शुरू हो रहा है।
1: हाँ, मेरा भी। देखो नारायणी, हम दोनों मिलकर अपनी गृहस्थी रूपी बटिया को प्यार से सींचेंगे। मैं तुम्हें के सारे सुख तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगा। ये नारायणी, मैं तुम्हें

0: यूनियन के तमाम साथियों
1: सुनो सुनो कह रहे हैं कुछ सुनो।
0: आज की ये आम सभा यूनियन के प्रतिनिधि राम बहादुर को यूनियन का धन गबन करने के आरोप में उनके

हटाए जाने के विषय को लेकर बुलाई गई थी। लेकिन राम बहादुर ने अपनी गलती का एहसास कर लिया है, साथ ही यूनियन का धन वापस लौटाने का वादा किया है, अतः उन्हें क्षमादान दिया जाता है। यदि आप में से किसी को कोई भी संदेह हो तो वो प्रश्न कर सकता है। मेरे विचार में हमारे निर्णय के बाद किसी को कोई

0: शायद ही किसी की समझ में आया हो।
1: यशवंत के प्रश्न का अर्थ मैं जानता हूँ अध्यक्ष महोदय।
0: शंभु, तुम इस नादान का समर्थन कर रहे हो।
1: क्षमा करें अध्यक्ष महोदय, नादान कौन है ये तो मैं नहीं जानता। हाँ, इतना अवश्य जानता हूँ कि आप भगवान नहीं हो सकते।
0: क्या मतलब है तुम्हारा शंभु?
1: अध्यक्ष महोदय, मतलब ये कि राम बहादुर ने हो सकता है कि आपके सामने गलती मान ली हो, या ये भी हो सकता है कि आप उससे मिल गए हो।
0: शंभु पासवान, क्या तू जानता है कि तेरे इस आरोप का क्या परिणाम होगा?
2: महोदय, मैं देवटांग का जरूर हूँ, किंतु इतना जरूर जानता हूँ कि शंभु का परिणाम उसकी मौत से अधिक नहीं हो सकता।
0: अरे ओ लिचू, तेरे कहने का मतलब क्या है?
2: लिचू के कहने का क्या मतलब है और शंभु आपको क्या समझाना चाहता है, ये बात आपको पल भर में समझ आ जाएगी।
0: लगता है आप सभी दलित मजदूर आपस में सलाह करके आए हैं कि आज की आम सभा नहीं चलने देंगे।
2: गलत, बिल्कुल गलत। ये सोच तो आपकी है अध्यक्ष महोदय, अन्यथा आप राम बहादुर का पक्ष स्वयं नहीं रखते, बल्कि राम बहादुर अपना पक्ष खुद इस आम सभा में रखता।
3: आखिर आप लोग चाहते क्या है? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं?
2: इसलिए कि तुमने मजदूरों के ब्लड बैंक पर डाका डाला है राम बहादुर, मजदूरों के खून पसीने की कमाई को यूनियन के नाम पर हजम किया है तुमने। यहाँ मौजूद मजदूर इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
4: हम इस अपराध के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।
0: शांत हो जाइए, कृपया शांत रहिए। हो हल्ला मचाने से आप लोगों को कोई फायदा नहीं होगा।
2: अध्यक्ष महोदय, रविकांत जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मजदूर साथियों, अतः आप लोग शांति का दान दीजिए। यदि मजदूर भाइयों की ओर से अनुमति हो तो अध्यक्ष महोदय से आप लोगों की ओर से मैं बातचीत करूं।
1: अध्यक्ष महोदय, आपको कोई एतराज है?
0: नहीं नहीं।
2: तो ठीक है अध्यक्ष महोदय, आप यूनियन के प्रभावशाली जिला अध्यक्ष हैं, आपको जिला स्तर पर निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन आम सभा में आम सदस्यों की सहमति के बिना नहीं।
0: यशवंत, तुम मेरी पावर को ललकार रहे हो।
2: क्षमा करें महोदय, मैं तो सिर्फ अपने मजदूर भाइयों का पक्ष रखना चाहता हूँ। आप बहुमत के बिना अल्पमत में निर्णय लेने का अधिकार नहीं रखते, और यदि आप ऐसा करते हैं तो वो कानून सम्मत नहीं होगा।
0: तो तेरे पर निकल आए हैं।
2: गलत महोदय, गलत। ये मुहावरा चींटियों पर फिर बैठता है, इंसानों पर नहीं। और मैं एक इंसान हूं।
0: चलो चलो, मैं तुम्हारे आगे झुकता हूं। अब तुम बताओगे कि आम सभा का निर्णय क्या होना चाहिए?
2: राम बहादुर की यूनियन से बर्खास्तगी।
0: बिल्कुल ठीक है, मैं आम सभा की राय का सम्मान करते हुए राम बहादुर को यूनियन से निकालने का ऐलान करता हूं, किंतु इस स्थान पर किसी की नियुक्ति तो करनी होगी ना, इसलिए मैं।
1: ठहरिए अध्यक्ष महोदय, अब क्या परेशानी है शंभू?
0: आम सभा की राय से मैं सहमत तो हो चुका हूँ।
1: आज तक यूनियन में दलित मजदूरों का कोई प्रतिनिधि नहीं रखा गया।
5: तो फिर हमारी इच्छा है महोदय कि इस बार होने वाली नियुक्ति में दलित मजदूरों का प्रतिनिधि रखा जाए।
0: अरे वाह वाह, तुम लोग क्या चाहते हो कि हम यूनियन में अनपढ़ गवारों को रखें?
5: साधारण अध्यक्ष महोदय, वो जमाना गुजर गया जब दलित सदियों से सामाजिक अन्याय का शिकार होकर अशिक्षित रह जाया करते थे। अरे बाबा साहब अंबेडकर और गांधी भगवान की कृपा से आज हमें बराबरी का अधिकार मिला हुआ है। आज दलित समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं।
0: हाँ हाँ होंगे, मगर तुम लोगों के बीच ऐसा कौन है जो जो पढ़ा लिखा है?
1: हमारा यशवंत मैट्रिक पास है, हम यूनियन के प्रतिनिधि के रूप में यशवंत के नाम का प्रस्ताव रखते हैं।
0: मजदूर साथियों, अध्यक्ष पद का अधिकारी वही व्यक्ति हो सकता है जो बहुमत का सम्मान करे। इस नाते मैं राम बहादुर को अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए बर्खास्त करता हूँ। उसके स्थान पर आप सबकी भावनाओं का सम्मान करते हुए दलित समाज के नए नेता यशवंत को नियुक्त करता हूँ।

Heiliger Schwanz! Heiliger Schwanz in der Wahl!

0: नारायणी, ओ नारायणी, कहाँ हो तुम?
1: आती हूँ जी।
2: जी कहीं, क्या बात है जी? ये मुंह क्यों लटका रखा है?
3: नारायणी बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी।
2: हाँ क्या हुआ है, मुझे भी तो कुछ पता चले।
3: ब्राह्मण महाराज की मृत्यु हो गई है। नारायणी अब मेरे पास कोई काम नहीं रहा, एक बार फिर मैं बेकार हो गया।
2: अब क्या होगा जी?
3: वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर का खर्चा कैसे चलेगा?
2: उसकी चिंता ना करो जी, मैं तो मजूरी कर ही रही हूँ।
3: सो तो ठीक है, लेकिन लेकिन क्या ही अच्छा लगेगा कि घर बैठे मैं खाट तोड़ूं और तुम मजूरी करने जाओ? क्या एक मर्द को ये शोभा देगा?
2: भगवान पर विश्वास रखिए, वो सब ठीक कर देंगे।
3: देखो तो मैं रही, कौन आया है?
2: हाँ अभी देखती हूँ जी। अरे बसमती काकी, आप
4: नारायणी
2: कहीं कैसे आना हुआ?
4: अरे यहीं से वापस लौटाना चाहती है क्या?
2: माफ करना काकी, अंदर आइए ना।
3: अरे राम राम काकी।
4: जीते रहो बेटा, जीते रहो।
3: काकी सब ठीक ठाक तो है ना?
4: अरे क्या बताऊं बेटा, कल युग है कल युग। ये कंपनी का मैनेजर, अरे ये तो कल युग का रावण है, है? हम गरीब मजदूरों को मजदूरी से हटाकर दूसरी जगह भेजा जा रहा है।
2: काकी ये क्या कह रहे हो?
4: तुम्हारी कसम नारायणी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं।
3: लेकिन काकी मजदूरों को अब कहाँ भेजा जा रहा है?
4: साई नदी पर शिबू। अरे यहाँ से 50 मजदूरों को साई नदी पर भेजा जा रहा है।
2: मतलब ये कि यहाँ से हम लोगों का दाना पानी उठ गया है?
4: अरे कुछ न कह नारायणी, सामान वामान बांधिए, संध्या तक यहाँ से निकल पड़ना होगा।
2: ठीक है ठीक है काकी,
4: जल्दी कर।
3: नारायणी
4: नारायणी तुम्हें क्यों हो गया?
2: अरे क्या हुआ
3: नारायणी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
4: हट तो जरा शिबू, हमें देखने चाहिए।
3: हाँ काकी देखो ना, तुम्हें देखो मेरी नारायणी को क्या हो गया है, देखो ना।
4: देखने तो
3: देखो देखो राम।
4: अरे अरे लड्डू खिलाओ शिबू, लड्डू खिलाओ।
3: तू
4: अरे बाप बनने वाला है तू?
3: अरे सच काकी, अरे सच काकी,

0: क्यों भैया?
1: अरे कैसे चहल कदमी कर रहा है?
0: पर टूटू कौन भाई?
1: अरे भाई मैं लिची हूँ, यही तो सफाई कर्मचारी हूँ।
0: ठीक है तो मुझसे क्या काम है?
1: अरे कुछ नहीं कुछ नहीं।
0: तो भैया फिर मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहा है?
1: अरे बर्बाद नहीं कर रहा भैया, मैं तो समय पास कर रहा हूँ।
0: समय पास क्या मतलब?
1: मतलब साफ है भैया। अरे तू भी अकेला घूम रहा है, मैं भी अकेला घूम रहा हूँ। अरे भैया क्यों ना थोड़ी देर यही सही किनारे बैठते हैं, एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, तो समय भी आराम से कट जाएगा।
0: अरे लगता तो तू दिलचस्प है, तेरे साथ दोस्ती अच्छी निभेगी।
1: ये हुई ना बात,
0: आओ बैठते
1: बैठते
0: चल।
1: तूने भाई मेरा नाम तो जान लिया लेकिन अपना नाम नहीं बताया।
0: मेरा नाम मेरा नाम है शिबू धासला।
1: शिबू धासला, अरे अच्छा नाम है शिबू। बुरा नाम आने तो एक बात पूछू शिबू?
0: हाँ हाँ पूछना। अरे दोस्त की बात का बुरा नहीं माना जाता शिबू।
1: जो कहना है मुझे अपना समझ कर कह। अच्छा अच्छा एक बात बता शिबू, तू इतना परेशान क्यों है? अरे मुझे बता, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। हाँ
0: लीची भैया अब क्या बताऊं, साई की साइट पर आए हुए 7 महीने हो गए,
1: मगर देखो ना अभी तक कोई काम ही नहीं मिला। अरे शिवू भैया हम लोग तो भगवान भरोसे हैं, काम मिला तो ठीक

0: नहीं मिला तो ठीक।
1: अरे लीची भैया तुम कितने अच्छे हो, कितने भले हो।
0: लीची भैया तुमसे दिल खोलकर बात करने की इच्छा हो रही है।
1: अरे तो कर दो शिवू, कर।
0: दिल की बात कहने से मन का बोझ उतर जाता है और इंसान स्वयं को हल्का फुल्का महसूस करता है। कर शिवू।
1: वो क्या है देख लीजिए भाई, बात ये कि मेरी घर वाली नारायणी को तो काम पर रख लिया है।
0: हाँ?
1: मगर मुझे नहीं रखा।
0: अरे
1: अब देखो घर वाली कम है और मर्द कम है, ये क्या मुझे शोभा देता है।
0: कहते हैं तो तू ठीक है शिवू, लेकिन ये भी सच है कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता शिवू। हाँ
1: लेकिन लीचू मुझे खाली नहीं बैठा जाता रे।
0: लीचू भैया देव भाई, वादा तो नहीं करता पर हाँ कोशिश जरूर करूंगा।
1: अच्छा कोशिश करने।
0: शिवू शराब पीते हैं क्या?
1: नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीता।
0: अरे तो आज पी ले।
1: अरे
0: दोस्ती के नाम पर।
1: अरे नहीं लीचू नहीं, मुझे माफ कर।
0: अरे
1: मुझे चल कर लीचू।
0: शिवू शिवू
1: अरे देख नहीं यार, अगर कहीं नशे में बह गया तो
0: अरे
1: गजब हो जाएगा।
0: अरे शिवू अरे मैं हूं ना तेरे साथ, तुझे कुछ नहीं दूंगा।
1: नहीं मैं देख
0: अरे
1: सोच ले, देख बाद में तू मुझे कुछ मत कहना।
0: अरे शिवू शिवू चिंता मत कर, चल मेरे साथ।
1: चल ठीक ठीक। कहां?
0: अरे खलासी लंगर पर, यहाँ पास में है। वहां की शराब की मस्ती का तो बस क्या कहना है। आजा
1: देख ले फिर सोचे तू।
0: अरे चल शिव चल चल
1: चल ठीक है चल।
2: तुम्हारा इनाम यशवंत है?
3: हाँ मगर तुम कौन हो?
2: यूनियन में तुम ही दलितों के नए नेता के रूप में शामिल हुए हो।
3: हाँ लेकिन ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो?
2: अभी समझ जाओगे। एक काम करो, लो बीड़ी पियो। साथ में ये माचिस भी दे रहा हूं तुम्हें, ये बीड़ी भी जलाती है और आग भी लगाती है।
3: देखो मैं बीड़ी नहीं पीता।
2: सुना है, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। तुम सच्चे और ईमानदार इंसान हो। रात को ड्यूटी के वक्त तुम अड्डेबाजी में भी अपना वक्त बर्बाद नहीं करते।
3: मैं जा रहा हूँ, अजनबी लोगों से बात करने का मुझे कोई शौक नहीं है।
2: ठहरो यशवंत, मैं भेटा गांव के लोकल लीडर शास्त्री जी का सहायक हूँ। सहायक माने एजेंट। अब तुम समझ सकते हो कि मुझसे बात करने पर तुम्हारा ही फायदा होगा, नुकसान नहीं।
3: शास्त्री जी का बहुत नाम सुना है मैंने, उनकी बहुत इज्जत भी करता हूं मैं। लेकिन तुम मेरे पास किस प्रयोजन से आए हो?
2: मुझे शास्त्री जी ने खुद तुम्हारे पास भेजा है।
3: किस लिए?
2: तुम्हें समझाने के लिए।
3: क्या मैं ना समझूं?
2: हो तो तुम समझदार, लेकिन राजनीति की सारी बातें नहीं जानते, इसीलिए मुझे शास्त्री जी की ओर से तुम्हारे पास आना पड़ा।
3: लेकिन तुम या शास्त्री जी मुझसे क्या चाहते हो?
2: देखो तुम शास्त्री जी की सलाह के बिना अपनी ओर से कोई कदम मत उठाना। जैसा शास्त्री जी कहे वैसा ही तुम करना, हमेशा फायदे में रहोगे।
3: फायदा? कैसा फायदा?
2: अरे क्या तुम नहीं जानते, यहाँ का ओवरसीयर से लेकर भद्दे में वाला इंजीनियर सबको जानते हैं हम। इंजीनियर कंपनी से हर महीना 2000 लेकर चुपचाप बैठ जाता है और एसडीओ हर महीने 1500 रुपए लेकर संतुष्ट रहता है। और तो और वो ओवरसीयर हर महीने सिर्फ 50 रुपए लेकर ही, मतलब तुम समझ रहे हो ना?
3: जी हाँ बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूं मैं आपका मतलब।
2: लोकल लीडर शास्त्री जी यही चाहते हैं कि मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय को तुरंत रोका जाए, सभी मजदूरों को परमानेंट किया जाए, और इसके लिए वो मजदूरों की हड़ताल पर विचार कर रहे हैं।
3: क्या?

0: रहे थे धारावाहिक जंग लगी तलवार। भाग लेने वाले कलाकार थे वीना होरा, दीपा रॉय, गीता वर्मा, श्याम अरोड़ा, केदारनाथ, मोहनलाल, दिनेश वर्मा, रजनीश शर्मा, कमल साथी, राजेश आहूजा, वीपी कालरा, उमेश श्रीवास्तव, सुरेंद्र सागर, बनवारी झोल, मंगत राम और संदीप। ध्वनि मुद्रण किया था रविंदर सिंह राजावत, एसपी राठौर और भगत सिंह ने। प्रस्तुति सहायक थे समीर झा।
1: ये प्रसारण आकाशवाणी मध्य प्रदेश से किया जा रहा था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 12:58 हुए हैं। वक्त है इस घंटे की खास खबरों का।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर पर 29 रूपये की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रूपये से बढ़कर 942 रूपये हो जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल प्रदेश के बीजमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। राज्य शिक्षा केंद्र ने कक्षा 5वीं और 8वीं की पूर्व परीक्षा सत्र 2025-26 को संशोधित समय सारणी जारी कर दी है। अब परीक्षाएं 16 जून से 23 जून के बीच आयोजित की जाएंगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रशासनिक एवं स्वैच्छिक स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी है। स्थानांतरण प्रक्रिया कल 8 जून से शुरू होकर 15 जुलाई तक चलेगी। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली, छत्रसाल, बुंदेल, केसरी के जीवन पर नृत्य नाट्य की प्रस्तुति होगी। और मौसम विभाग ने आज गुना, अशोकनगर सहित 7 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, उज्जैन संभागों के कई जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला सभा। आज का यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज हम आपसे बहुत सी चर्चाएं करेंगे, साथ ही सुनवाएंगे गीत संगीत। सबसे पहले हम आपसे बात करने जा रहे हैं भूखे को अन्न प्रत्येक को रोटी के विषय में। बहनों, यह विषय केवल भारतीय संस्कृति की महानता का परिचायक ही नहीं है, बल्कि मानवता, सेवा, करुणा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी व्यक्त करता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर यह विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि आज विश्व के सामने खाद्य सुरक्षा, कुपोषण और भूख जैसी गंभीर चुनौतियां मौजूद हैं। भारत एक ऐसी भूमि है जहां संस्कृति का आधार केवल भौतिक प्रगति नहीं बल्कि मानवीय संवेदनाएं हैं। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि संसार में सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा है। जब कोई व्यक्ति भूखा होता है तब उसके लिए भोजन ही सबसे बड़ा उपहार होता है। इसी कारण भारतीय संस्कृति में अन्नदान को महादान कहा गया है। हमारे शास्त्रों में स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि जो व्यक्ति भूखे को भोजन कराता है वह सबसे बड़ा पुण्य अर्जित करता है। भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है कि पूरा विश्व एक परिवार है। जब हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं तब किसी भी व्यक्ति का भूखा रहना हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए। यही भावना भूखे को अन्न सभी को रोटी के विचार में निहित है। यह केवल एक नारा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का सार है। हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न को देवता के समान सम्मान दिया गया है। भोजन केवल शरीर को

ऊर्जा देने का साधन नहीं बल्कि जीवन का आधार है। इसलिए भोजन का सम्मान करना और जरूरतमंदों तक पहुंचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है। बहनों, हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के महत्व के प्रति जागरूक करना है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल भोजन की उपलब्धता नहीं है बल्कि ऐसा भोजन उपलब्ध होना है जो स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित हो, पोषण से भरपूर हो और सभी लोगों तक समान रूप से पहुंच सके। बहनों, आज विज्ञान और तकनीक के इस युग में भी दुनिया के करोड़ों लोग भूख और कुपोषण का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार आज भी लाखों बच्चे पर्याप्त भोजन और कुपोषण के अभाव में अपना शारीरिक और मानसिक विकास नहीं कर पाते। दूसरी ओर बड़ी मात्रा में भोजन प्रतिदिन बर्बाद भी हो जाता है। यह स्थिति हमें सोचने पर मजबूर करती है कि यदि भोजन का सही प्रबंधन किया जाए तो कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। हमारे गाँव में पहले अतिथि, निर्धन और जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती थी। कोरोना महामारी के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार हजारों स्वयंसेवकों और संस्थाओं ने जरूरतमंदों की मदद की। यह भारतीय संस्कृति में निहित सेवा और करुणा की भावना का उदाहरण है। बहनों, आज आवश्यकता इस बात की है कि हम भोजन की बर्बादी को रोकें। हमें अपनी थाली में उतना ही भोजन लेना चाहिए जितनी आवश्यकता हो। यह न केवल संसाधनों की बचत करेगा बल्कि भोजन के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करेगा।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं राष्ट्र की तीन दिशाओं में सुरक्षा के कवच महासागर के विषय में। बहनों, यह तो आप सभी जानती ही हैं कि भारत एक महान समुद्री राष्ट्र है। हमारे देश की लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा है और तीन दिशाओं से महासागर हमें घेरते हैं। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये महासागर केवल जलराशि नहीं है बल्कि हमारे राष्ट्र के प्राकृतिक कवच हैं। महासागर हमारी सुरक्षा, व्यापार, जलवायु और अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देश के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का बड़ा हिस्सा समुद्री मार्गों से होता है। हमारे मछुआरों की आजीविका, समुद्री जैव विविधता और पर्यटन उद्योग भी महासागरों पर निर्भर है। महासागर पृथ्वी के पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए महासागर मानव जीवन के

0: मूल्य है, लेकिन आज महासागर, प्लास्टिक प्रदूषण, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। यदि हम इन्हें सुरक्षित नहीं रखेंगे तो भविष्य में मानव जीवन भी संकट में पड़ सकता है। विश्व महासागर दिवस हमें यह संकल्प लेने का अवसर देता है कि हम समुद्रों को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का कम उपयोग करेंगे और समुद्र पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देंगे, क्योंकि राष्ट्र की तीन दिशाओं के ये कवच हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों की सुरक्षा करते हैं। बहनों, पानी को सुरक्षित रखने के लिए आइए सुनवाते हैं आपको यह वार्ता, जिसका विषय है रहमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही हैं श्रीमती नम्रता पांडे।
1: पानी है अनमोल, इसका नहीं है कोई तौल। पृथ्वी के सभी जीवों के लिए जल एक बहुमूल्य संपदा है। इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, या यूं कहें कि सभी सजीवों के जीने का आधार है जल। धरती का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है, किंतु इसमें से 97% पानी खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। पीने योग्य पानी की मात्रा सिर्फ 3% है। इसमें भी 2% पानी ग्लेशियर और बर्फ के रूप में है। इस प्रकार सही मायने में मात्र 1% पानी ही मानव के उपयोग हेतु उपलब्ध है। ताजे और स्वच्छ पानी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए विभिन्न माध्यमों से जल बचाना जल संरक्षण है। यह अभियान बेहद महत्वपूर्ण है, ताकि दुनिया भर के लोगों के साथ साथ भावी पीढ़ियों के लिए भी ताजा और स्वच्छ पानी उपलब्ध हो सके। स्वच्छ जल प्रत्येक प्राणी के लिए बहुत मूल्यवान है और इसका संरक्षण अति आवश्यक है, क्योंकि जल है तो कल है। बावजूद इसके जल बेवजह बर्बाद किया जाता है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जल संकट का समाधान जल के संरक्षण से ही है। बहनों, हम हमेशा से ही सुनते आए हैं कि जल है तो जीवन है, जल के बिना सुनहरे कल की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि हम अपने आने वाले कल को सुरक्षित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आने वाले समय में पानी की एक एक बूंद के लिए हमें ना तरसना पड़े, तो उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। नगरीकरण और औद्योगिकीकरण की तीव्र गति और बढ़ता प्रदूषण और जनसंख्या में लगातार वृद्धि के साथ प्रत्येक व्यक्ति के लिए पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है, देश के कई हिस्सों में पानी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। प्रतिवर्ष यह समस्या पहले के मुकाबले और बढ़ती जाती है, लेकिन हम हमेशा यही सोचते हैं कि बस जैसे तैसे गर्मी का सीजन निकल जाए, बारिश के आते ही पानी की समस्या दूर हो जाएगी, और यह सोचकर जल संरक्षण के प्रति बेरुखी अपनाए रहते हैं। आगामी वर्षों में जल संकट की समस्या और अधिक विकराल हो जाएगी। दुनिया भर में 75% से ज्यादा लोग पानी की कमी के संकटों से जूझ रहे हैं। शुद्ध पेयजल की अनुपलब्धता और इससे संबंधित बहुत सी समस्याओं को जानने के बावजूद हम अभी भी जल संरक्षण के प्रति सचेत नहीं हैं। आज भी शहरों में फर्श चमकाने, गाड़ी धोने और गैर जरूरी कार्यों में पानी को बेतहाशा बहाया जाता है। जहां लोगों को मुश्किल से पानी मिलता है, वहां लोग जल की महत्वता को समझ रहे हैं, लेकिन जहां बिना किसी परेशानी के जल मिल रहा है, वहां लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं। प्रदूषित जल में आर्सेनिक, लोहा आदि की मात्रा अधिक होती है, जिसे पीने से तमाम तरह की स्वास्थ्य संबंधी व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में 86% से अधिक बीमारियों का कारण असुरक्षित और दूषित पेयजल है। दुनिया भर में हर साल लगभग 3.4 मिलियन लोग पानी से संबंधित बीमारियों के कारण मर जाते हैं। विश्व में पानी से पैदा होने वाली बीमारी से हर 15 सेकंड में एक बच्चे की मौत हो जाती है। वर्तमान में करीब 1600 जलीय प्रजातियां लुप्त होने की कगार पर हैं। विश्व में करीब 1 अरब लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं और साफ पानी के बगैर अपना गुजारा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति सभी के लिए बहुत चिंताजनक है। इस दिशा में अगर त्वरित कदम उठाते हुए सार्थक पहल की जाए, तो स्थिति बहुत हद तक नियंत्रण में रखी जा सकती है।

है, अन्यथा अगले कुछ वर्ष हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण साबित होंगे। पृथ्वी पर भयंकर सूखे जैसे जल संकट को टालने के लिए हम सबको जल को कम से कम और सही तरीके से उपयोग करना होगा। अगर हम चाहें तो अपने छोटे छोटे कार्यों द्वारा सैकड़ों गैलन पानी बचा सकते हैं। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में अपना सकते हैं। हमें अपनी दैनिक गतिविधियों जैसे हाथ धोते मंजन करते समय पानी के नल को बंद रखना चाहिए। स्नान के दौरान पानी बचाने के लिए प्रवाह प्रतिबंधित शॉवर हेड्स लगाना। घरों में किसी भी तरह की पानी की लीकेज को तुरंत ठीक कराना चाहिए ताकि इससे होने वाली पानी की बर्बादी को रोका जा सके। शावर के स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। कार धोने के लिए पाइप के इस्तेमाल से काफी मात्रा में पानी नष्ट हो जाता है, इसलिए हमें इसके स्थान पर बाल्टी मग का प्रयोग करना चाहिए। सब्जी और फलों को खुले नल के नीचे धोने की बजाय पानी से भरे हुए बर्तन में धोना चाहिए। बहनों, घर में जो हम रोज पीने का पानी भरते हैं तो बर्तनों का बासा पानी यूं ही व्यर्थ में ना फेंके। उस पानी को हम पेड़ पौधों में दें या उस पानी को दूसरे बर्तनों में भरकर नहाने धोने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। जब हम बर्तन साफ करते हैं या कपड़े धोते हैं तो जो पानी बचता है उसे भी हम अपने दूसरे दैनिक जीवन के कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। हम आमतौर पर यह देखते हैं कि अधिकांश वर्षा जल बर्बाद हो जाता है, हालांकि यह सबसे कीमती प्राकृतिक संसाधनों में से एक है। इस वर्षा जल का उपयोग वर्षा जल संचयन द्वारा भूजल स्तर को रिचार्ज करने के लिए किया जा सकता है। घरों में छत से इस तरह से पाइपलाइन फिट करवाएं जिससे घर की छत से सीधे वर्षा जल पाइपलाइन द्वारा सोखते गड्ढे में जाए। सोखते गड्ढे से पानी सीधे धरती में जाकर भूमिगत हो जाता है जिससे जल का स्तर बढ़ता है और हमें जल की प्राप्ति होती है। कुएं तालाब बनाकर भी बहते हुए पानी को रोका जा सकता है। वर्षा जल संचयन भू जल स्तर को कम होने के बजाय और अधिक बनाए रखने में सक्षम बनाता है और सूखे के प्रभाव को भी कम करता है। किसान ड्रिप सिंचाई के रूप में जानी जाने वाली इस सिंचाई विधि का उपयोग करके जल प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस तकनीक में पौधों को संकीर्ण ट्यूबों का उपयोग करके पानी पिलाया जाता है और यह पानी सीधा पौधों के आधार तक पहुंचाया जाता है। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं क्योंकि वृक्ष बादलों को आकर्षित कर वर्षा कराने में सहायक होती हैं। हम बारिश की बूंदों को सहेजें और पानी बचाएं। तो क्यों ना पर्यावरण की खातिर वर्षा जल संचयन के संधारणीय पर्यावरण अनुकूल और जैविक तरीके अपनाएं, जैसे वर्षा उद्यान। इसमें गीली घास के साथ साथ देशी पौधों का उपयोग करके पानी के दूषित पदार्थों को हटाया जाता है। यह वर्षा जल को जमीन में और अधिक रिसने देता है जिससे भूजल को रिचार्ज किया जा सकता है। बारिश के पानी को इकट्ठा करने का एक और आसान और सरल तरीका है वर्षा तस्तरी बनाना। यह एक अनबाउंड रेन वाटर कलेक्शन स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऊपरी हिस्सा होता है जो उल्टे छतरी जैसा दिखता है, जिसमें एक फनल होता है जो बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और इसे नीचे से जुड़े बैरल में स्टोर करता है। वर्षा बैरल स्थापित करना। रेन बैरल कुछ भी हो सकता है जो वर्षा जल भंडारण कंटेनर के रूप में काम करता है, जैसे खाली ड्रम। छत से पानी को इसमें स्थानांतरित करने के लिए यूनिट को एक पाइप से जोड़ना होगा। कंटेनर को मच्छरों और कीड़ों के प्रजनन स्थल बनने से रोकने के लिए बैरल की ओर जाने वाले डाउन स्पॉट्स के सिरों को स्क्रीन करते हुए इसे एक टाइट फिटिंग टॉप से ढकना सुनिश्चित करना है। वर्षा श्रृंखला बनाना। घर की साज सज्जा को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ के साथ रेन चेन मजेदार और फैशनेबल एक्सेसरीज है जो एकत्रित पाइपों से वर्षा जल को स्टोरेज कंटेनर या नाली में स्थानांतरित करके अपवाह से बचने में मदद करती है। मानो ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम वर्षा जल को बचा सकते हैं। यह हर समुदाय के लिए बेहतरीन लाभ प्रदान करता है और उन क्षेत्रों में अविश्वसनीय समाधान प्रदान करता है जहां पर्याप्त वर्षा होती है लेकिन भूजल की आपूर्ति नहीं होती है। पानी की बर्बादी को कम करने के लिए कई तकनीक उपकरण विकसित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर हर व्यक्ति
अपने दैनिक कार्यों के लिए भू जल के इस्तेमाल को मितव्ययता से करें तो इसका प्रभाव और भी अधिक होगा। हर साल हमारी जल आपूर्ति कम होती जा रही है। हम कृत्रिम जल का उत्पादन

नहीं कर सकते हैं और हमें अपने ग्रह पृथ्वी पर उपलब्ध जल स्रोतों पर निर्भर रहना है। जनसंख्या वृद्धि और हमारी लगातार बढ़ती आधुनिक जीवन शैली के अनुरूप पानी की असंतुलित आवश्यकता के कारण दुनिया भर में पानी की कमी महसूस की जाती है। इसने जल संरक्षण के बारे में पर्याप्त चिंताओं को जन्म दिया है। आज हमें जरूरत है संसाधन प्रबंधन की, दक्षता में सुधार की और ऊर्जा को संरक्षित और सुरक्षित रखने की। तूफानी पानी और अपशिष्ट जल का पुनः चक्र और गैर पारंपरिक जल स्रोतों को स्थापित करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी में निवेश की खोज की जानी चाहिए। साथ ही बेहतर जल भंडारण के अवसर भी तलाशने चाहिए। बोला हम सभी ने ये पंक्ति तो सुनी ही है कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। जीवन का प्रारंभ लगभग 300 करोड़ साल पहले पानी से हुआ था। पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जल से व्याप्त है। वजन के हिसाब से सजीवों के शरीर में 65-70% जल ही होता है। जल के बिना ना प्राणी जगत जीवित रह पाएगा और ना ही वनस्पति जगत। इस रंग बिरंगी दुनिया का अस्तित्व पानी पर ही टिका हुआ है, इसलिए अनायास ही यह कहना पड़ता है कि बिन पानी सब सून। रविदास जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिन पानी के सब कुछ सूना है। रहमन पानी राखिए, हर जतन से पानी रखिए। पानी चले जाने पर फिर उबरने की कोई आशा नहीं रहती, इसलिए बहनों पानी को बचा कर रखिए, क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। बहनों अभी आपने सुनी वार्ता जिसका विषय था रहमन पानी राखिए। इस विषय पर जानकारी दे रही थी श्रीमती नम्रता पांडे। आगे बहनों अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महान जननायक, स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासी समाज के गौरव भगवान बिरसा मुंडा और हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में, जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बहनों भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं था, बल्कि देश के दूर दराज जंगलों, पहाड़ों और गांवों में भी स्वतंत्रता की ज्योति प्रज्वलित थी। आदिवासी समाज ने भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस संघर्ष के सबसे चमकदार नक्षत्र थे भगवान बिरसा मुंडा। इनका जन्म 15 नवम्बर 1875 को उलीहातू में हुआ था, जो आज झारखंड में स्थित है। उनका जन्म एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ, लेकिन उनके विचार असाधारण थे। बचपन से ही उन्होंने अपने समाज की पीड़ा, शोषण और अन्याय को देखा। अंग्रेजी शासन, जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का लगातार शोषण किया जा रहा था। उनकी भूमि छीनी जा रही थी, उन पर अत्यधिक कर लगाए जा रहे थे और उन्हें अपने ही जंगलों से वंचित किया जा रहा था। बिरसा मुंडा ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया। उन्होंने सामाजिक सुधारों पर भी बल दिया। वे चाहते थे कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और कुरीतियों से मुक्त होकर शिक्षा और एकता के मार्ग पर आगे बढ़े। अपने महान व्यक्तित्व और जन सेवा के कारण लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे और उन्हें धरती आभा अर्थात धरती पिता कहा जाने लगा। बहनों बिरसा मुंडा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था अंग्रेजों के विरुद्ध चलाया गया उल गुलान अर्थात महान विद्रोह। यह आंदोलन 1899 से 1900 के दौरान हुआ। इस आंदोलन का उद्देश्य केवल अंग्रेजों को चुनौती देना ही नहीं, बल्कि आदिवासियों को उनकी भूमि, संस्कृति और अधिकार वापस दिलाना भी था। बिरसा मुंडा ने नारा दिया अबुआ दिशुम अबुआ राज अर्थात अपना देश अपना राज। यह नारा स्वतंत्रता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। उनके नेतृत्व में हजारों आदिवासी अंग्रेजी शासन के खिलाफ एकजुट हुए। इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार को हिलाकर रख दिया। यद्यपि अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए कठोर कदम उठाए, लेकिन बिरसा मुंडा और उनके साथियों के साहस ने सिद्ध कर दिया कि भारत का हर वर्ग स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में बिरसा मुंडा का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने उस समय अंग्रेजी शासन को चुनौती दी जब राष्ट्रीय स्तर पर स्वतंत्रता आंदोलन अभी प्रारंभिक अवस्था

0: दिशा में था। बहनों, उनका संघर्ष केवल आदिवासी अधिकारों का संघर्ष नहीं था, बल्कि विदेशी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता की लड़ाई का भी हिस्सा था। उन्होंने भारतीयों को आत्मसम्मान, स्वराज और अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। दुर्भाग्यवश अंग्रेज सरकार ने 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। जेल में रहते हुए 9 जून 1900 को मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। बहनों, उनका जीवन भले ही छोटा रहा, लेकिन उनके विचार और संघर्ष आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बहनों, आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तब हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें स्वतंत्रता दिलाई। बिरसा मुंडा ने हमें सिखाया कि अन्याय के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। उन्होंने एकता, साहस, स्वाभिमान और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने का संदेश दिया। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। यह दिन हमें उनके महान योगदान और आदिवासी समाज के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। बहनों, भगवान बिरसा मुंडा केवल आदिवासी समाज के नायक नहीं थे, बल्कि पूरे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका जीवन हमें राष्ट्र प्रेम, संघर्ष और न्याय के लिए समर्पित रहने की प्रेरणा देता है। हमें उनके आदर्शों को अपनाकर एक सशक्त और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को उनकी पुण्यतिथि पर शत शत नमन है। बहनों, गर्मियों के मौसम में हम सभी का मन करता है कुछ हल्का फुल्का खाने का, और शाम को बच्चे जब खेलने जा रहे होते हैं या सोकर उठते हैं, तब भी उनका मन करता है कि कुछ उन्हें हल्का फुल्का खाने के लिए दिया जाए। तो चलिए, खाना खजाना में बनाते हैं झालपुरी और भेलपुरी। बहनों, झालपुरी उड़ीसा, बिहार और कोलकाता की मशहूर है, जबकि भेलपुरी मुंबई का सबसे लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसमें मीठी और तीखी चटनियों का स्वाद होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम दो अलग बड़े बर्तन ले लेंगे जिनमें हमें यह सामग्री मिलानी है। बस कुछ चीजों को यदि हम अलग हटा दें तो दोनों में ही काफी कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं, जैसे कि दोनों में ही मुरमुरे डलते हैं, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये सब चीजें दोनों में डाली जाती हैं, नमकीन आप जिस भी तरह का डालना चाहें। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दो बड़े बर्तन ले लिए हैं जिनके अंदर हम 3-3 कप मुरमुरे डाल देंगे। एक बर्तन में हम बना रहे हैं झालपुरी और दूसरे में हम बना रहे हैं भेलपुरी। इसी के साथ दोनों में ही हम डाल देंगे मूंगफली भुनी हुई, आधा छोटा चम्मच नमक, चौथाई चम्मच काला नमक, ये सभी सामग्री हम दोनों भगोने में डालते जाएंगे, आधा चम्मच चाट मसाला, एक एक नींबू का रस, सभी तरह की नमकीन जो भी आपके घर में अवेलेबल हो या जो आप डालना चाहें। झालपुरी में यहाँ पर जो चना जोर गरम में हम इस्तेमाल करते हैं वह नमकीन भी डाला जाता है, तो यहाँ पर हमने वो भी आधा कटोरी डाला है। बारीक कटा हरा धनिया दोनों में डालेंगे। जिस बर्तन में बहनों आप झालपुरी का मिक्सर बना रहे हैं उसमें आधा कटोरी उबले मटर, जो आप बटरा वाली मटर होती है, इसको आप रात भर भिगो दे पानी में और सुबह आप हल्का सा नमक डालकर इसे बॉईल कर ले, तो ये और आधा कटोरी काले चने यहाँ पर हमने लिए हैं, ये हम झालपुरी वाले भगोने में डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल भी झालपुरी वाले मिक्सर में डालेंगे और 1-2 चम्मच आम के अचार का तेल भी हम इसमें डालेंगे, जिसमें कि आप यदि उसका मसाला भी डालना चाहें तो डाल दें। साथ ही हम यहाँ पर एक मसाला तैयार करेंगे झालपुरी में डालने के लिए, जिसमें हमने लिया है भुना जीरा, साबुत धनिया, अमचूर पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। इस सभी को हम मिक्सी में अच्छे से क्रश कर लेंगे और फिर इसे भी डाल देंगे। तैयार है आपकी कलकत्ता की मशहूर झालपुरी। अब जिस बर्तन में हम भेलपुरी डाल रहे थे उसमें हमें बॉयल पोटैटो भी डालने हैं और हरी चटनी और इमली की चटनियां मिलाएं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे खीरे और अनार के दाने भी डाल सकती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। वक्त है अंतराल का।
2: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
3: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।

महावीर सिंह भदौरिया के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी का योगदान था। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्र कुमार ओझा के गाए भजन और गजल। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: स्वतंत्र कुमार ओझा के गाय स्निग्ध के साथ ही सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में थैलेसीमिया, हीमोफीलिया और एप्लासी एनीमिया जैसे रोगों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के द्वारा इलाज उपलब्ध है। आयुष्मान कार्ड से निशुल्क इलाज की सुविधा भी है।
2: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में सुनिए शहनाई फिल्म का ये गीत, राजेंद्र कृष्ण का संगीत और गीत रवि का।
1: न झटको जुल्फ से पा

0: की रफ्तार हो। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने तक, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी

0: कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात जन जन की बात। 1936 से आकाशवाणी आपके साथ।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता करते हुए ये प्रारंभिक टिप्पणी की।
1: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने आज कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि हुई है, जबकि निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और अल्जीरिया सहित अन्य देशों से भी आपूर्ति की गई। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पूर्ण मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर आज राजधानी भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुए संडे ऑन साइकिल अभियान में हजारों युवाओं, खिलाड़ियों, महिलाओं और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। साइकिलों की लंबी कतारों ने शहरवासियों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने हरी झंडी दिखाकर किया। राजधानी भोपाल के लालघाटी इलाके में आज सुबह एक 3 मंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग में 6 छोटे बड़े रेस्टोरेंट संचालित होते हैं, जो आग की चपेट में आ गए। इमारत से उठता काला धुआं करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दिया। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 8 दमकलों और 3 वाटर टैंकर मौके पर पहुंच गए और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। प्रदेश में मानसून के तय समय से पहले पहुंचने की संभावना बन रही है। केरल से देश में प्रवेश करने वाला मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और शनिवार तक कर्नाटक, तमिलनाडु होते हुए गोवा पहुंच

0: हुआ है। इसके बाद जल्द ही महाराष्ट्र में इसकी एंट्री होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। नर्मदापुरम, सिवनी, सीहोर, खरगोन समेत कई इलाकों में बारिश दर्ज की गई, जबकि तेज हवाओं के कारण पेड़ और टीनशेड गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जाजपुर हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर विज्ञान भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित करने के संबंध में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को सशर्त अनुमति दे दी है। सिंगरौली में एनटीपीसी विंध्याचल ने जून 2026 की प्रतिभागी बालिकाओं के लिए विशेष साइकिल वितरण समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर 150 बालिकाओं को साइकिलें प्रदान की गई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगले बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:15 होने को ही थोड़ी ही देर में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और यह मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
3: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
4: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रूपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रूपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रूपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम

0: तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के दो विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल दो दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देशभर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर

0: बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में छठे ओवर में एक विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम बाल सभा। जय हिंद बाल साथियों। जब तक आप एक महान छात्र हैं, ज्ञान का स्रोत कभी नहीं सूखेगा। जी हाँ बाल साथियों, एक काबिल विद्यार्थी वही है जिसके ज्ञान प्राप्त करने की लालसा कभी समाप्त नहीं होती है। इसी प्रेरक विचार के साथ एक बार फिर स्वागत करती हूँ मैं आपकी अर्चना दीदी आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बाल सभा में। बाल साथियों, आज है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जिसको मनाने का उद्देश्य दूषित भोजन से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि सभी को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिले। इस दिन को मनाने की घोषणा वर्ष 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी और 7 जून वर्ष 2019 में से पहली बार मनाया गया था। इस दिन का आयोजन WHO एवं FAO द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। प्रत्येक वर्ष एक थीम का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2026 की थीम है बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। बाल साथियों, प्रतिवर्ष 6 करोड़ खाद्य जनित रोगों के मामले सामने आने के साथ इस दिन को मनाने का खास उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण में खेत से लेकर मेज तक सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। बाल साथियों, इस दिन विद्यालयों में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है। पोस्टरों के माध्यम से संदेश जारी किए जाते हैं। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है। बाल साथियों, खाद्य जनित बीमारियां मानव स्वास्थ्य के लिए अदृश्य खतरे हैं। असुरक्षित भोजन का सबसे अधिक प्रभाव संवेदनशील समूहों पर पड़ता है, जिनमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, प्रवासी एवं संघर्षग्रस्त आबादी शामिल है। दूषित भोजन के कारण प्रतिवर्ष 5 वर्ष से कम आयु के 1,25,000 बच्चों की मृत्यु के साथ ये दिवस वैश्विक स्तर पर सुरक्षित खाद्य प्रथाओं की महत्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करता है। इसलिए खाद्य की सुरक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि यदि आज भोजन सुरक्षित है तो कल हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो सुरक्षित भोजन पद्धतियों से एवं खाद्य की सुरक्षा कर अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा करें, तभी सार्थक होगा इस दिन को मनाना। और बाल साथियों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुक करते हैं अगली चर्चा की ओर। बाल साथियों, आगामी 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, जिसको मनाने का उद्देश्य महासागरों द्वारा हमारे जीवन में निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को समुद्री संसाधनों के स्थायी प्रबंधन के लिए एकजुट करना है। बाल साथियों, महासागर हमारी पृथ्वी के लगभग 70% भाग पर मौजूद हैं और हमारे द्वारा ली जाने वाली सांस यानी कि ऑक्सीजन कम से कम 50% का उत्पादन ये महासागर करते हैं। इसके अलावा लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करते हैं। बाल साथियों, महासागर

0: दुनिया की अर्थव्यवस्था जिसे पर्यटन, मत्स्य पालन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की रीढ़ है। बाल साथियों, इस दिन को मनाने की घोषणा की अवधारणा पहली बार वर्ष 1992 में ब्राजील में रियो डी जेनेरियो में हुए अर्थ समिट के दौरान कनाडा द्वारा प्रस्तावित की गई थी। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने 5 दिसंबर वर्ष 2008 को एक प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक वर्ष 8 जून को इसे मनाने की घोषणा की। पहली बार ये दिवस 8 जून वर्ष 2009 में मनाया गया था। भारतीय महासागर मानव के लिए भोजन, पोषक तत्वों और जीवन रक्षक दवाइयों का एक बड़ा स्रोत है। इसीलिए आज 100 से भी अधिक देशों में सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों द्वारा मनाया जाता है ये दिन। बाल साथियों, प्रत्येक वर्ष एक थीम का विषय निर्धारित किया जाता है। वर्ष 2026 का विषय है सतत मत्स्य पालन का अर्थ और भी अधिक। बाल साथियों, ये विषय स्वस्थ मत्स्य आबादी को बनाए रखने, समुद्री जैव विविधता का समर्थन करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सतत मत्स्य पालन प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालता है। और बाल साथियों, अब इस चर्चा को देते हैं विराम और गुलदस्ता के अंतर्गत सुनवाते हैं उमा पाराशर से उनका काव्य पाठ।
1: एक कविता सुना रही हूँ। अम्मा की बगिया में देखो कितने सुंदर फूल खिले, अम्मा की बगिया में देखो, अम्मा की बगिया में देखो कितने फूल खिले हैं, अम्मा की बगिया में देखो कितने फूल खिले हैं, लाल हरे और रंग गुलाबी कुछ नीले पीले हैं, लाल हरे और रंग गुलाबी कुछ नीले पीले हैं, दादा दादी तो बगिया हैं, अम्मा बाबू माली, दादा दादी तो बगिया हैं, अम्मा बाबू माली, तुम बगिया के फूल निराले सदा रहो खुशहाली, तुम बगिया के फूल निराले सदा रहो खुशहाली, अम्मा की बगिया में देखो कितने फूल खिले हैं। अब मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ। घर में रहना लू चलती है, बाहर धरती तो जलती है, घर में रहना लू चलती है, बाहर तो धरती जलती है, ऊपर आसमान तपता है फिर जाकर संध्या जलती है, ऊपर आसमान जलता है फिर जाकर संध्या ढलती है, खेल चुनो अब इस घर में तुम खेलो, खेल चुनो तुम बैठ घर खेलो, चिड़िया अष्टा चंगा, बाहर गर्म हवाएं चलती जो बनती मुश्किल का फंदा, बाहर गर्म हवाएं चलती जो बनती मुश्किल का फंदा, मीठी मीठी ठंडी ठंडी नींबू की फिर बनी शिकंजी, मीठी मीठी ठंडी ठंडी नींबू की फिर बनी शिकंजी, मिश्री घोलो हरा पुदीना सबको देना तुम भी पीना, मीठी मीठी हरा पुदीना सबको देना तुम भी पीना, आई तलावट उड़ा पसीना जीतेगा मई जून महीना, आई तलावट उड़ा पसीना जीतेगा फिर मई जून महीना। मैं अब एक कविता बिल्ली की सुनाने चाहती हूँ। बिल्ली मौसी छत से नीचे आओ, बिल्ली मौसी छत से नीचे आओ, माने आज बनाए व्यंजन छक्कर उनको खाओ, माने आज बनाए व्यंजन छक्कर उनको खाओ, लड्डू पेड़ा और इमरती खीर रसोई घर में, लड्डू पेड़ा और इमरती खीर रसोई घर में, मैं आऊं कहती खड़ी हो तुम आंगन में, मैं आऊं कहती खड़ी हो तुम आंगन में, धमा चौकड़ी करते चूहे कपड़े खूब कुतरते, धमा चौकड़ी करते चूहे कपड़े खूब कुतरते, सर पर दौड़ लगाते बे बिल्ली मौसी के डर, बड़ी मुलायम काया तेरी रंग है भूरा काला, बड़ी मुलायम काया तेरी रंग है भूरा काला, फिरती हो आजादी से ओले नरम दुसाला, फिरती हो आजादी से ओले नरम दुसाला, एक पलक ही झपके, एक पलक ही झपके तो भोजनशाला में जाती, दूध मलाई चुपके चुपके बड़े मजे से खाती, एक पलक ही झपके तो भोजनशाला में जाती, दूध मलाई चुपके चुपके बड़े मजे से खाती, खाके पीके मोटी होके बाड़े में छुप जाती, खाके पीके मोटी होके बाड़े में छुप जाती, तुमको दोष न देती अम्मा हमको चपत लगाती, तुमको दोष न देती अम्मा हमको चपत लगाती, द्वारे नित्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है, द्वारे नित्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है, अम्मा भूसा और खली मिला के उसे दे आती है, अम्मा भूसा और खली मिला उसे दे आती है, हाट बाजारी अम्मा ने कुंतल खली खरीदी है, हाट बाजारी अम्मा ने कुंतल खली खरीदी है, मैया जब द्वारे आए उसको खाने

0: रख दी है। मैया जब द्वारे आए उसको खाने रख दी है। हमने पूछा है मैया जाने किसकी गैया है, हमने पूछा है मैया जाने किसकी गैया है। बोली कृष्ण कन्हैया है नाना रूप धरैया है, बोली कृष्ण कन्हैया है नाना रूप रचैया है। मब के पार करैया है भंवर की गेंद खिलैया है, मब के पार करैया है भंवर की गेंद खिलैया है। बेजोहे नाग नथैया है बंसी बजैया है, जग के धीर धरैया है द्रौपदी चीर बढ़ैया है। जग के धीर धरैया है द्रौपदी चीर बढ़ैया है। रण के चक्र चलैया है ये सब उनकी गैया है, रण के चक्र चलैया है ये सब उनकी गैया है। कहती मेरी मैया है कोई किसी की गैया है, कहती मेरी मैया है कोई किसी की गैया है। गैया तो बस गैया है, गैया विश्व की मैया है, गैया तो बस गैया है। मैं एक कविता सुनाना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है गैया। द्वारे नित्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है, द्वारे नित्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है। अम्मा भूसा और खली मिला के उसको दे आती है, अम्मा भूसा और खली मिला के उसको दे आती है। द्वारे नित्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है। हाट बाजारी अम्मा ने कुंतल खली खरीदी है, हाट बाजारी अम्मा ने कुंतल खली खरीदी है। गैया जब द्वारे आए उसको खाने रख दी है, गैया जब द्वारे आए उसको खाने रख दी है। हाट बाजारी अम्मा ने कुंतल भर खरी खरीदी है, गैया जब द्वारे आए उसको खाने रख दी है। हमने पूछा है मैया जाने किसकी गैया है, हमने पूछा है मैया जाने किसकी गैया है। बोली कृष्ण कन्हैया है नाना रूप रचैया है, बोली कृष्ण कन्हैया है नाना रूप रचैया है। भबके पार करैया है, भबके पार करैया है भंवर की गेंद खिलैया है, भबके पार लगैया है भंवर की गेंद खिलैया है। बेतो नाग नथैया है मधुवन बंसी बजैया है, बेतो नाग नथैया है मधुवन बंसी बजैया है। जक्के धीर धरैया है, जक्के धीर धरैया है द्रौपदी चीर बढ़ैया है, जक्के धीर धरैया है द्रौपदी चीर बढ़ैया है। रण के चक्र चलैया है, रण के चक्र चलैया है ये सब उनकी गैया है, रण के चक्र चलैया है ये सब उनकी गैया है। बोली कृष्ण कन्हैया है नाना रूप रचैया है, नाना रूप रचैया है भबके पार करैया है भंवर की गेंद खिलैया है। बेतो नाग नथैया है बंसी मधुर बजैया है, जक्के धीर धरैया है द्रौपदी चीर बढ़ैया है, रण के चक्र चलैया है ये सब उनकी गैया है। कहती मेरी मैया है कोई किसी की गैया है, कहती मेरी मैया है कोई किसी की गैया है। गैया तो बस गैया है विश्व की गैया मैया है, गैया विश्व की मैया है गैया तो बस गैया है, गैया विश्व की मैया है गैया तो बस गैया है। द्वारे नृत्य बुलाती है उमा उमा रंभाती है।
1: बाल साथियों अभी आप गुलदस्ता के अंतर्गत सुन रहे थे उमा पाराशर से उनका काव्य पाठ। बाल साथियों आगामी 9 जून को है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहीदी दिवस। ये दिवस बिरसा मुंडा के सर्वोच्च बलिदान और उनकी स्मृति को समर्पित है। बाल साथियों इस महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्म 15 नवंबर वर्ष 1875 को झारखंड के खूंटी जिले के उलिहातू गांव में एक अत्यंत साधारण आदिवासी मुंडा परिवार में हुआ था। पिता सुगना मुंडा व माता कर्मी हाटू के इस पुत्र के बचपन का नाम था दाऊद। बचपन घोर आर्थिक संघर्ष और अभावों में बीता, लेकिन कहते हैं ना जो रहा संघर्ष के चलता है वही संसार बदलता है, और ऐसा ही कुछ किया बिरसा मुंडा ने। इन्होंने चाईबासा के जर्मन मिशन स्कूल से कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। बल साथ ही वो ईसाई मिशनरियों के धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को देखते हुए इन्होंने आदिवासी संस्कृति और धर्म बचाने का बीड़ा उठाया। इन्होंने बिरसाइत नामक एक नए धर्म की स्थापना की जो एक ईश्वर की उपासना पर बल देता है। इसके अलावा आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास जादू टोने तंत्र मंत्र और शराब की लत को दूर करने के लिए बड़ा सामाजिक अभियान चलाया। बाल साथियों इन्होंने अंग्रेजी जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका। उनके नेतृत्व में हुए एक ऐतिहासिक विद्रोह को उलगुलान कहा जाता है। उन्होंने आदिवासियों को अपनी पारंपरिक जमीनों और सांस्कृतिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उनके बढ़ते प्रभाव को देखकर ब्रिटिश सरकार ने 31 मार्च वर्ष 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर रांची जेल में भेज दिया, जहां उन्हें कई प्रकार

की यातनाएं दी गईं। 25 वर्ष की अल्पायु में रहस्यमयी परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। बाल साथियों, अल्पायु में किए गए उनके अदम्य साहस और बलिदान के कारण आदिवासी समाज उन्हें भगवान का दर्जा देता है। उनके प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके योगदान को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर वर्ष उनके जन्मदिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे महान बिरसा मुंडा जी को उनके शहादत दिवस पर हमारा कोटि कोटि नमन। और बाल साथियों, अब रुख करते हैं

गरीबी के कारण परिवारों में बच्चों को आय का स्रोत माना जाता है। जितने अधिक बच्चे होंगे उतनी अधिक कमाई। जहां बच्चे 7-8 वर्ष के हुए नहीं, उन्हें किसी किराने की दुकान पर, कहीं घरों में, किसी होटल में, नहीं तो अपने माता पिता के साथ काम करने को मजबूर होना पड़ता है। बच्चों के शोषण और बाल श्रम को रोकने के लिए प्रयासों को तेज करने का दिन है बाल श्रम निषेध दिवस, जो कि आगामी 12 जून को मनाया जाएगा। बाल साथियों, बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक आर्थिक समस्या है जो बच्चों के विकास को बाधित करती है। इस समस्या के 10 प्रमुख कारण है। पहला कारण गरीबी, दूसरा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव। बाल साथियों, स्कूलों की कमी, महंगी शिक्षा और खराब गुणवत्ता के कारण बच्चे पढ़ाई छोड़ मजदूरी करने लग जाते हैं और कभी कभी माता पिता शिक्षा का महत्व न समझकर बच्चों को स्कूल न भेजकर काम पर लगा देते हैं। इसके अलावा कारखानों व उद्योगों के मालिक कम मजदूरी पर अधिक घंटे काम कराने के लिए बच्चों को प्राथमिकता देते हैं। कई बच्चे पारिवारिक काम को बचपन से संभालते हैं। इसके अलावा बाल श्रम निषेध कानूनों में ढिलाई और दोषियों को कड़ी सजा न मिलने के कारण भी ये प्रथा आसानी से चलती रहती है। बाल साथियों, जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव के कारण भी कई हाशिए के समुदायों के बच्चों को शिक्षा और अवसरों से वंचित कर बाल श्रम में धकेल दिया जाता है। कई बार घर के मुखिया की मृत्यु हो जाने पर, बीमारी या विकलांगता की स्थिति में कई बच्चे जिम्मेदारी के चलते परिवार का बोझ अपने कंधों पर ले लेते हैं। इसके अलावा आपदा, युद्ध आदि पर विस्थापन के दौरान अपनों से बिछड़े ये मासूम आजीविका के लिए मजदूरी करने को मजबूर हो जाते हैं। बाल श्रम के खिलाफ यूनिसेफ और ILO जैसे संस्थान कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, जिससे हम इन नौनिहालों की आंखों में देखे हुए सपनों को पूरा कर सकें। बाल साथियों, ये मेहनतकश बाल श्रमिक जब अपनी मजबूरी के कारण काम करने को निकलते हैं और इनसे पूछा जाता है कि इनकी नन्ही नन्ही मुट्ठियों में क्या है, तो इनका जवाब होता है कुछ इस प्रकार का।

साथियों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म बूट पॉलिश से। गायक सुर थे मोहम्मद रफी, आशा भोसले एवं साथियों के। शैलेंद्र की शब्द रचना को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। साथियों, यदि आप किसी भी काम को सीखना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि आप उसमें कितनी रुचि रखते हैं। जब तक आपको उसमें रुचि नहीं होगी, आप उसे सही तरीके से सीख नहीं सकते। कई बच्चों की ये शिकायत होती है, मुझे पढ़ने का मन ही नहीं करता, या फिर किसी विशेष विषय में उनकी रुचि ही नहीं है, तो पढ़ाई में रुचि कैसे बढ़ाएं? आइए जानते हैं कुछ खास तरीके इस चर्चा के माध्यम से। साथियों, पढ़ाई में रुचि पैदा करने के लिए सबसे पहले जरूरी है विषय को रटने की बजाय समझें। दूसरी बात, सीखने के माध्यम को समझदार बनाएं, जैसे व्यावहारिक ज्ञान के द्वारा विषय को समझने का प्रयास करें। गणित एक ऐसा विषय है जिसको सीखने के लिए आप घर में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स का उपयोग कर सकते हैं, और विज्ञान तो प्रायोगिक है, तो विज्ञान के लिए आप छोटे छोटे प्रयोग घर पर ही करके समझ सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि पढ़ाई को केवल किताबों तक सीमित ना रखें और अपनी खोज करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएं। बल साथियों, हिंदी, इतिहास, अंग्रेजी जैसे विषयों को रटे ना, बल्कि कहानी के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि कहानियां हम सभी को बेहद पसंद होती हैं और इस तरह से इन विषयों को पढ़ने में बोरियत नहीं होती, बल्कि वे रुचिकर लगते हैं। बल साथियों, इन सबके अलावा पढ़ाई के लिए प्रत्येक विषय में छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, जैसे आज मुझे 2 लेसन तैयार करने हैं, या मुझे आज हिंदी विषय को ही कंप्लीट करना है, या फिर पूरा अध्याय न पढ़कर सिर्फ एक ही पेज पढ़ने का लक्ष्य बनाएं। इससे आपको बोरियत भी नहीं होगी और सब्जेक्ट रुचिकर लगेगा। इसके अलावा जब भी पढ़ने बैठें, घर में अपने स्टडी रूम में शांत माहौल में बैठकर पढ़ें, जहां किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो। आप आधे घंटे भी पढ़ें तो सिर्फ अपने विषय पर ही ध्यान दें, मन को इधर उधर भटकने ना दें। बस साथियों, पढ़ाई को कभी भी बोझ ना समझें, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य समझकर अपने उज्जवल भविष्य के लिए रुचि के साथ करें और सीखने के नए नए प्रयोगों के साथ अध्ययन करें। फिर देखिए, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता और कठिन से कठिन विषय भी आपको रुचिकर लगेगा। और बाल साथियों, इस चर्चा को देते हैं विराम और रुख करते हैं अगली चर्चा की ओर, जिसका विषय है बच्चों के जीवन में अभिभावकों का व्यवहार और प्रभाव। बाल साथियों, बच्चों के व्यक्तित्व और भविष्य के निर्माण में माता पिता का व्यवहार और दृष्टिकोण सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चों का मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास काफी हद तक घर के माहौल और अभिभावकों की परवरिश के तरीकों पर निर्भर करता है। बाल साथियों, जिन बच्चों के अभिभावक सकारात्मक या प्यार भरे और सहायक तरीके से अपने बच्चों के साथ पेश आते हैं, उन बच्चों में आत्मविश्वास मजबूत होता है और ऐसे बच्चे चुनौतियों का सामना करने से डरते नहीं हैं। इसके अलावा यदि अभिभावक बच्चों की भावनाओं को समझते हैं, उन्हें अपनी बात कहने की आजादी देते हैं, तो बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत होते हैं। वहीं अगर माता पिता का व्यवहार कठोर होता है तो बच्चे या तो डरपोक हो जाते हैं या विद्रोही बन जाते हैं। बाल साथियों, बच्चों के लिए उनके माता पिता उनके आदर्श और नायक होते हैं। वे बड़ों के आपसी संवाद, सहयोग और व्यवहार को देखकर दूसरों के साथ सम्मान पूर्वक बात करना और रिश्ते निभाना सीखते हैं। इसके अलावा जिन घरों में पढ़ाई और सीखने के लिए सकारात्मक माहौल होता है, वहाँ बच्चों की शैक्षणिक प्रगति बेहतर होती है। बाल साथियों, प्यार, प्रोत्साहन और सुरक्षित घरेलू माहौल बच्चों को चिंता या अवसाद जैसी समस्याओं से बचाता है। घर में यदि माता पिता आपस में लड़ते हैं तो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाल साथियों, बच्चे के चरित्र निर्माण में माता पिता की भूमिका अमूल्य है। उनके द्वारा किया गया व्यवहार, उनकी सकारात्मक विचारधारा संतान के भविष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बाल साथियों, माता पिता बच्चे

बच्चों के जन्मदाता पालन पोषण करने वाले मार्गदर्शक होते हैं। आइए बाल साथियों, अब आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है फिल्म कालीचरण से। गायक सुर हैं अनुराधा कंचन एवं साथियों के। इंद्रजीत सिंह तुलसी के शब्द रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

बाल मित्रों, अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया था फिल्म कालीचरण से। और बाल साथियों, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, यानी कि रोचक जानकारी की ओर। बाल साथियों, म्यूजियम अर्थात पुरानी चीजों को एकत्र करके रखने का स्थान, ये हमें इतिहास, संस्कृति और ज्ञान से जोड़ते हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एनिमल म्यूजियम के बारे में, जो खास तौर पर जानवरों पर आधारित होते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ खास एनिमल म्यूजियम के बारे में रोचक तथ्य, रोचक जानकारी के माध्यम से। बाल साथियों, इस पहली जानकारी में बात करेंगे तारापुर वाला एक्वेरियम के बारे में। इस एक्वेरियम की स्थापना वर्ष 1951 में मरीन ड्राइव मुंबई में हुई थी। यहाँ खारे पानी और मीठे पानी की मछलियों की सैकड़ों प्रजातियां हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर शार्क, कोरल फिश, कछुए और जेली फिश की कई प्रजातियां देखी जा सकती हैं। बाल साथियों, यहाँ का मुख्य आकर्षण है 12 फीट लंबी 180 डिग्री एक्रिलिक ग्लास टनल, जिससे पानी के अंदर होने जैसा अनुभव मिलता है। इस दूसरी जानकारी में बता रहे हैं विशाखापट्टनम में स्थित मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम के बारे में। बाल साथियों, यहाँ विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी मछलियां व शंख आदि का संग्रह है। ये एक्वेरियम खास तौर पर स्टूडेंट्स और बच्चों को मरीन डाइवर्सिटी समझाने के लिए बनाया गया है। और इस अंतिम जानकारी में बात करेंगे बंगाल नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम के बारे में। इसकी स्थापना वर्ष 1903 में हुई थी। ये म्यूजियम हिमालयी और बंगाल क्षेत्र के जीवों के नमूनों के बड़े संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। ये पद्मजा जूलॉजिकल पार्क में स्थित है। यहाँ करीब 400 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां और तितलियों का

0: विशाल संग्रह देखने को मिलता है। तो बाल साथियों, ये तो थी रोचक जानकारी एनिमल म्यूजियम के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य पसंद आएगी। और बाल साथियों, आज आपका और मेरा साथ बस इतना ही। चलने का समय हो रहा है, तो अनुमति दीजिए अपनी अर्चना दीदी को। जय हिंद बाल साथियों। अभी बच्चे अपना कार्यक्रम बाल सभा सुन रहे थे। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती और मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में अगला प्रसारण आकाशवाणी के मध्य प्रदेश केंद्र से।
1: साथी DTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर सभा संपन्न करने से पहले शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। शाम 5:02 पर युवा श्रोता सुनेंगे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे शाम 5:33 पर 6:30 और रात 8:35 पर। पीएम मोदी के 12 वर्ष मध्य प्रदेश बना चीतों का घर, ये कार्यक्रम आप शाम 6:30 सुन सकेंगे। 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम में 7:30 से सजीव फोन कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय विशेषज्ञ डॉक्टर दीनानाथ खोटे। रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम रात 9:30 हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। और 10:00 सुनिएगा अखिल भारतीय आदिवासीय कार्यक्रम संगीत सभा में कलाकार विद्वान MSN मूर्ति का वायलिन वादन, ये कार्यक्रम भी आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किया जाएगा। ये थे हमारे केंद्र से शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। मीडियम वेव 88.32 साथ ही GTH के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन पर यह आकाशवाणी भोपाल है। मीडियम वेव पर अब हमारी यह सभा यहीं संपन्न होती है। शाम 5:00 से मीडियम वेव पर आप हमारा प्रसारण पुनः सुन सकेंगे। इस बीच प्रसारण DTH पर जारी रहेगा।

0: मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्स पर और आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। न्यूज हेडलाइंस कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: पेशेवर गंड की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 8 जून को प्रदेश के पीथमपुर स्थित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क में भारत की पहली मैन्युफैक्चरिंग इकाई का भूमि पूजन करेंगे। यहां उत्पादित सामग्री घरेलू बाजार की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ एशिया प्रशांत, मध्य पूर्व और अफ्रीका क्षेत्र के अनेक देशों में निर्यात भी की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद भागवत कथा के समापन समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस

मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सेफ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। यह सफलता खेल जगत में प्रेरणा का नया अध्याय लिखेगी। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है। पिछले एक सप्ताह में से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा वाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की प्रस्तुति है।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूँ आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हमारा चर्चा का विषय रहेगा अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें। साथ ही हमारी चर्चा का विषय है पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल सकती हैं। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे तपती धरती कट्टे वन भारत को बनाना है उपवन विषय पर वार्ता। वार्ताकार है अवनी जैन। साथियों, साथ ही क्रम जीवन आलोक में हम चर्चा करेंगे मोबाइल एडिक्शन से बचे विषय पर और आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं अपने कौशल एवं रुचि का मूल्यांकन करें एवं उसके अनुरूप ही करियर का चुनाव करें विषय पर। साथियों, आज के प्रतिस्पर्धा भरे युग में करियर का सही चुनाव जीवन की सफलता का महत्वपूर्ण आधार है। अनेक विद्यार्थी केवल दूसरों की देखा देखी या दबाव के चलते किसी क्षेत्र का चयन कर लेते हैं, जिसके कारण आगे चलकर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आवश्यक है प्रत्येक व्यक्ति अपने कौशल एवं रुचि का सही मूल्यांकन करे और उसी के अनुरूप करियर का चयन करे। दोस्तों, कौशल का अर्थ है किसी कार्य को दक्षता और कुशलता के साथ करने की क्षमता। यह क्षमता जन्मजात भी हो सकती है और अभ्यास तथा शिक्षा के माध्यम से विकसित भी की जा सकती है। वही रुचि का संबंध उस कार्य से है जिसे करने में व्यक्ति को आनंद और संतुष्टि प्राप्त होती है। जब किसी व्यक्ति का कौशल और रुचि एक ही दिशा में होते हैं, तब वह उस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाता है। साथियों, करियर चुनने से पहले व्यक्ति को स्वयं का आत्मविश्लेषण करना चाहिए। उसे यह समझना चाहिए कि उसकी शक्तियाँ और कमजोरियाँ क्या हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यार्थी की गणित और विज्ञान में अच्छी पकड़ है तथा उसे तकनीकी विषयों में रुचि है, तो वह इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी या अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अपना भविष्य बना सकता है। उसी प्रकार, यदि किसी व्यक्ति को लेखन, साहित्य और भाषा में रुचि है, तो वह पत्रकारिता, अध्यापक, लेखन या अनुवाद के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आज अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षण और करियर परामर्श सेवाएं उपलब्ध हैं, जो विद्यार्थियों को उनकी योग्यता और रुचि के अनुसार उचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही रुचि के अनुसार चुना गया करियर व्यक्ति को कार्य के प्रति समर्पित बनाता है। जब व्यक्ति अपनी पसंद का कार्य करता है, तो उसमें उत्साह, आत्मविश्वास और रचनात्मकता बढ़ती है। वह चुनौतियों का सामना बेहतर ढंग से कर पाता है और अपने क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर पाता है। इसके विपरीत, यदि व्यक्ति अपनी रुचि के विरुद्ध किसी कार्य क्षेत्र में काम करे, तो उसे मानसिक तनाव, निराशा और असफलता का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, वर्तमान समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले जहाँ केवल डॉक्टर, इंजीनियर या सरकारी नौकरी को ही अच्छा करियर माना जाता था, वहीं आज खेल, संगीत, कला, फैशन डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, पर्यटन, उद्यमिता आदि ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें अच्छा क्षेत्र माना जाता है और उनमें उज्जवल भविष्य की संभावनाएं हैं। इसलिए विद्यार्थियों को अपनी विशेषताओं को पहचान कर सही क्षेत्र का चयन करना

चाहिए। साथियों, करियर चयन केवल आर्थिक लाभ को ध्यान में रखकर नहीं किया जाना चाहिए। धन जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, किंतु कार्य में संतुष्टि और आत्मविश्वास भी उतने ही आवश्यक है। जिस कार्य में व्यक्ति की रुचि होती है, उसमें वह अधिक मेहनत कर पाता है और अंततः उसे सफलता, आर्थिक समृद्धि दोनों प्राप्त होती है। दोस्तों, करियर का चुनाव जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इसे जल्दबाजी या दूसरों के प्रभाव में आकर नहीं लेना चाहिए। अपने कौशल, रुचि, योग्यता और व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन करके ही करियर का चुनाव करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह स्वयं को पहचाने, अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही अपने भविष्य की दिशा निर्धारित करे। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे दूसरे विषय पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकती हैं पर चर्चा करने का। साथियों पुस्तकें मनुष्य की सबसे अच्छी मित्र मानी जाती हैं। वे न केवल ज्ञान का भंडार होती है बल्कि हमारे विचारों व्यक्तित्व और जीवन दृष्टि को भी प्रभावित करती है। कहा जाता है एक अच्छी पुस्तक जीवन को नई दिशा दे सकती है। वास्तव में पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने की क्षमता रखती हैं। वे हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर, निराशा से आशा की ओर और असफलता से सफलता की ओर ले जाती हैं। दोस्तों पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सबसे सशक्त माध्यम है। इनमें विभिन्न विषयों का विस्तृत और उपयोगी ज्ञान संचित रहता है। विज्ञान, इतिहास, साहित्य, दर्शन, राजनीति, कला, संस्कृति जैसे अनेक क्षेत्रों की जानकारी हमें पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होती है। पुस्तकें हमें केवल तथ्यों से परिचित नहीं कराती बल्कि सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता भी विकसित करती हैं। इस प्रकार वे हमारे बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। दोस्तों पुस्तकें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महान व्यक्तियों की जीवनी पढ़कर हमें उनके संघर्ष, परिश्रम, त्याग और सफलता से प्रेरणा मिलती है। उनके जीवन से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। अनेक बार एक प्रेरणादायक पुस्तक किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा ही बदल देती है और उसे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करती है। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी विकसित करती हैं। साहित्यिक पुस्तकें, कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं हमें नई दुनियाओं से परिचित कराती हैं। इन्हें पढ़कर हमारी भाषा समृद्ध होती है और अभिव्यक्ति की क्षमता बढ़ती है। साथ ही हम विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और जीवन मूल्यों को भी समझने लगते हैं। इससे हमारे विचार व्यापक और उदार बनते हैं। दोस्तों आज के आधुनिक युग में तकनीकी साधनों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। मोबाइल फोन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण लोगों को पढ़ने की आदत कम होती जा रही है। लोग अधिकांश समय डिजिटल माध्यमों पर बिताते हैं। हालांकि इंटरनेट से भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है लेकिन पुस्तकों के माध्यम से जो गहराई, एकाग्रता और चिंतन शक्ति विकसित होती है वह अन्य माध्यमों से प्राप्त नहीं हो पाती। पुस्तकें हमें धैर्यपूर्वक सोचने और विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा देती है। साथ ही पुस्तकें केवल शिक्षा का साधन नहीं बल्कि वे मानसिक शांति और आत्मिक संतोष प्रदान करती हैं। जब हम अच्छी पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। वे हमें जीवन की समस्याओं का सामना करने की प्रेरणा देती हैं और कठिन समय में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। इस प्रकार पुस्तकें हमारे सच्ची मित्र की तरह हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाती हैं। साथियों पुस्तकें हमारे जीवन की दशा और दिशा बदलने की अद्भुत क्षमता रखती हैं। वे ज्ञान, प्रेरणा, संस्कार और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। एक अच्छी पुस्तक व्यक्ति को सफल, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बना सकती है। इसलिए हमें पुस्तकों को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाना चाहिए और नियमित रूप से अध्ययन की आदत विकसित करनी चाहिए। वास्तव में पुस्तकें ही वह प्रकाश है जो हमारे जीवन को सही मार्ग दिखाकर उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकती है। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय तपती धरती कटते वन भारत को बनाना है उपवन पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है अवनी जैन।
1: तपती धरती कटते वन

भारत को बनाना है उपवन, धरती तपती धूप से कटते वन चहोर, नहीं किसी को सुध यहाँ बनते हृदय कठोर, बनते हृदय कठोर नहीं सुध कोई लेते, काटे वृक्ष अपार इसे बंजर कर देते, कहे विनायक राज धरा सबकी दुख हरती, वृक्ष लगाकर आज बचा लो तपती धरती। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समाज की प्रगति के रूप में पृथ्वी के पर्यावरण की गुणवत्ता को बहुत नुकसान हुआ है। जलवायु परिवर्तन पृथ्वी ग्रह के स्वास्थ्य के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। अपर्याप्त शोध और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग इसके बिगड़ने के दो प्रमुख कारण हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि का प्रमुख कारण है, जो जीवन के लिए खतरा पैदा कर रही है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे पर्यावरण पर एक खतरनाक प्रभाव है, जिससे हम तीव्र औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और प्रदूषण सभी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग शब्द पिछली शताब्दी में पृथ्वी की सतह के औसत तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ग्लोबल वार्मिंग के खतरनाक होने का कारण यह है कि यह ग्रह की समग्र पारिस्थितिकी को बाधित करता है। यह बाढ़, अकाल, चक्रवात और अन्य समस्याओं का कारण बनता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु परिवर्तन पर गठित अंतर सरकारी समिति IPCC यानी इन्वायरमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में योकोहामा जापान में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन के भयानक खतरों से एक बार फिर आगाह किया है। IPCC ने आसन्न खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है कि अगर आज हम नहीं संभले तो जलवायु परिवर्तन की मार से कोई अछूता नहीं रह पाएगा, सभी को यह संकट झेलना पड़ेगा। भारत और चीन के लिए तो यह बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि विश्व की एक तिहाई आबादी यहाँ रहती है। वैश्विक तपन से ग्लेशियर पिघलेंगे और नदियों में बाढ़ आएंगी, फिर ग्लेशियरों के सिकुड़ने से नदियाँ सूखने लगेंगी, जल स्रोतों के सूखने से पानी के लिए त्राही त्राही मच जाएगी। आइए श्रोताओं, अब हम ग्लोबल वार्मिंग के नकारात्मक प्रभावों पर जोर डालते हैं, जैसे सिंचाई के अभाव और अल्पवृष्टि के कारण खाद्य उत्पादन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, फसलें उगाना मुश्किल हो जाएंगी, इस कारण अनाज की कीमतें बढ़ती जाएंगी और व्यापक रूप से भुखमरी फैल सकती है, कुपोषण से लाखों लोग प्रभावित होंगे। IPCC ने एक और हालिया रिपोर्ट में कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से बचने का एक ही रास्ता है, वह यह कि विश्व के सभी देश बिना समय बर्बाद किए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर अंकुश लगाएं। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव हर क्षेत्र में आपातकालीन समस्याएं दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वे मानव स्वास्थ्य पर असर हो या फिर पशु पक्षियों व वनस्पतियों पर असर हो। जैसे जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर मनुष्य पर ही पड़ेगा और कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। गर्मी बढ़ने से कई तरह के संक्रामक रोगों के फैलने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं। वह समय भी जल्द ही आ सकता है जिसमें से हम में से अधिकांश को पीने के लिए स्वच्छ जल, खाने के लिए ताजा भोजन और सांस लेने के लिए शुद्ध हवा भी नसीब नहीं हो पाएगी। पशु पक्षियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा। गर्मी बढ़ने के कारण यह जीव धीरे धीरे उत्तरी और पहाड़ी इलाकों की ओर प्रस्थान करेंगे एवं इनमें से कुछ अपना अस्तित्व ही खो देंगे। बढ़ती जनसंख्या और आधुनिकीकरण का सीधा प्रभाव हमारे वनों पर पड़ रहा है, जिसके चलते वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। भारत में अब सिर्फ 20% ही वन बचे हैं। वनों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रतिवर्ष वन महोत्सव देश में मनाया जाता है। वन महोत्सव को एक राष्ट्रीय त्योहार घोषित किया गया है। वन वह महत्वपूर्ण इकाई है जो प्रकृति द्वारा हमें प्रदान की गई है। इतनी कीमती चीज पाने के बाद हमें धन्य

महसूस करना चाहिए। वन हमें लगातार भोजन, लकड़ी, सांस लेने के लिए हवा और अन्य जरूरी चीजें प्रदान करते रहते हैं। वे तमाम तरह के जीवों के लिए एक घर की तरह है। वन के बिना हम अपने जीवन और अन्य क्रियाकलापों की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन वनों की कटाई और छटाई के प्रति बढ़ता कदम एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। जंगल प्रकृति द्वारा इंसानों को दिया गया सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह कई जीवित प्राणियों के लिए रहने की जगह देता है। इसके अलावा हम वनों से हर तरह के फायदे लेते रहते हैं। वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ आदि होते हैं। उनमें से कई औषधियाँ मूल्य प्रदान करते हैं, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं, हवा, भोजन, फल, लकड़ी, पानी और दवा प्रदान करते हैं। मित्रों, वनों की कटाई से हमारे पर्यावरण में कई तरह के नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। विकास की ये दौड़ में मनुष्य निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। इस तरह से शहरीकरण को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। उद्योग तथा रहने के लिए घर आदि के निर्माण उद्देश्य से वन भूमि की कटाई की जा रही है। मानव का यह कार्य जो पूरी तरह से विकास के उद्देश्य के लिए केंद्रित है, वन भूमि के विनाश और गिरावट की तरफ बढ़ रहा है। भविष्य या प्रकृति की चिंता किए बिना मनुष्य पूरी तरह से एक स्वार्थी इंसान में बदल गया है। इस प्रकार पेड़ों की संख्या में दैनिक आधार पर कटौती की जा रही है। इसलिए हमारा मुख्य ध्यान वन इकाई के संरक्षण की आवश्यकता पर होना चाहिए। यह हमारी भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना हमारी स्थिरता को बनाए रखेगा और हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। मनुष्य पर्यावरण से लाभ प्राप्त करने के लिए निरंतर सक्रिय रहा है, लेकिन इस समय अंतराल में पर्यावरण से जिस तरह लिया गया है उसी प्रकार से लौटाना भूल गया है। इससे प्राकृतिक चक्र में असंतुलन पैदा होता है। इसलिए दोस्तों, पेड़ लगाओ, वातावरण को स्वच्छ बनाओ। प्राचीन काल से ही वन मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व रखते थे। यह मानव जीवन के लिए प्रकृति के अनुपम उपहार है। हमारे वन पेड़ पौधे ही नहीं अपितु अनेकों उपयोगी जीव जंतुओं व औषधियों का भंडार है। प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वजों, ऋषि मुनियों व संतों के लिए वन तपोभूमि का प्रमुख स्थान रहा है। इन्हीं वनों में महान ऋषियों के आश्रम रहे हैं, जहाँ पर संत एवं उनके शिष्य रहते थे। समाज में इनका विशेष स्थान था, जिन्हें लोग पूर्ण श्रद्धा एवं विश्वास से देखते थे। वन मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं। वन आवरण हटाने से उस क्षेत्र में बाढ़ और अकाल की स्थिति निर्मित हो जाती है। वनों की कटाई से जलवायु परिवर्तन होगा और वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। मनुष्य ने अपनी धन लोलुपता के कारण वनों की अंधाधुंध कटाई की और धीरे धीरे जंगल कम होते गए। फलस्वरूप धरती तपने लगी, अर्थात तापमान बढ़ने लगा। आज आवश्यकता है कि जितने वृक्ष कटने चाहिए उतने वृक्ष लगने भी चाहिए, तभी हम धरती को हरा भरा बना सकते हैं और तभी हम कह सकते हैं भारत बनेगा उपवन। दोस्तों, तपती हुई धरती को बचाने के उपाय एवं भारत भूमि को वापस हरा भरा बनाने व सजाने के लिए हमें निरंतर प्रयास करने पड़ेंगे। सरकार के साथ साथ हम मनुष्यों को भी ये जिम्मेदारी सम्मिलित में लेके चलनी पड़ेगी। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, हम सभी को भी पेट्रोल, डीजल और बिजली का उपयोग कम से कम करना पड़ेगा, जिससे हानिकारक गैसों का उत्सर्जन कम से कम हो सके। जंगलों की कटाई को रोकना होगा। हम सभी अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, इससे भी ग्लोबल वार्मिंग का असर कम किया जा सकता है। टेक्निकल डेवलपमेंट से भी इससे निपटा जा सकता है। हम ऐसे रेफ्रिजरेटर बनाएं जिनमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल ना होता हो और ऐसे वाहन बनाएं जिनसे कम धुआं निकलता हो।
सरकार द्वारा भी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जोर

0: दिया जा रहा है। श्रोताओं, अपनी बात को इन शब्दों के साथ समाप्त करना चाहती हूँ। सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाकर करो श्रृंगार।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय तपती धरती कटते वन, भारत को बनाना है उपवन पर। वार्ताकार थी अवनी जैन। साथियों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय मोबाइल एडिक्शन से बचे पर चर्चा करने का। साथियों, वर्तमान युग विज्ञान और तकनीक का युग है। विज्ञान ने मानव जीवन को अत्यंत सरल और सुविधाजनक बना दिया है। मोबाइल फोन इस तकनीकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण उपहार है। आज मोबाइल केवल बातचीत का साधन नहीं रह गया, बल्कि शिक्षा, मनोरंजन, बैंकिंग, व्यापार और संचार का प्रमुख माध्यम बन चुका है। किंतु इसका अत्यधिक उपयोग एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आया है, जिसे मोबाइल एडिक्शन या फिर मोबाइल की लत कह सकते हैं। यह समस्या विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में तेजी से बढ़ रही है, इसलिए मोबाइल एडिक्शन से बचना समय की आवश्यकता बन गया है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का अर्थ है मोबाइल फोन का आवश्यकता से अधिक उपयोग करना और इसके बिना असहज महसूस करना। जब कोई व्यक्ति घंटों तक सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वीडियो या अन्य मोबाइल गतिविधियों में व्यस्त रहता है और अपने आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करने लगता है, तब यह स्थिति मोबाइल की लत के रूप में उत्पन्न होती है। धीरे धीरे व्यक्ति का अधिकांश समय मोबाइल पर ही बीतने लगता है। दोस्तों, मोबाइल की लत के अनेक कारण हैं। इंटरनेट की आसानी से उपलब्धता, सोशल मीडिया का आकर्षण, ऑनलाइन गेम, मनोरंजन के असीमित साधन और दोस्तों से लगातार जुड़ने की इच्छा इसके प्रमुख कारण हैं। आज अधिकांश लोग खाली समय में पुस्तकें पढ़ने, खेलने या परिवार के साथ समय बिताने की बजाय मोबाइल का उपयोग करना पसंद करते हैं। यही आदत धीरे धीरे उनकी लत में बदल जाती है। दोस्तों, मोबाइल एडिक्शन का प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। लंबे समय तक मोबाइल स्क्रीन देखने से आंखों में दर्द, सिर दर्द और नींद की समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा मोबाइल का अत्यधिक उपयोग मानसिक तनाव, चिंता और अवसाद का कारण भी बन सकता है। कई बार व्यक्ति वास्तविक दुनिया से कटकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं, जिससे सामाजिक संबंध भी कमजोर पड़ जाते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों पर मोबाइल एडिक्शन का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पढ़ाई के समय मोबाइल का उपयोग उनकी एकाग्रता को भंग कर देता है और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट लाता है। मोबाइल एडिक्शन से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय अपनाए जा सकते हैं। सबसे पहले, मोबाइल का उपयोग केवल आवश्यक कार्यों के लिए करना चाहिए। प्रतिदिन मोबाइल उपयोग की एक समय सीमा निर्धारित करनी चाहिए और उसका पालन करें। पढ़ाई, भोजन और सोने के समय मोबाइल को अपने से दूर रखें। इसके अलावा खेल कूद, योग, व्यायाम, पुस्तक पठन और रचनात्मक गतिविधियों में समय बिताने की आदत भी विकसित करें। साथ ही परिवार और मित्रों के साथ प्रत्यक्ष संवाद भी मोबाइल पर निर्भरता को कम करने में सहायक होता है। दोस्तों, माता पिता और शिक्षकों की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें बच्चों को मोबाइल के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करना चाहिए और उनके मोबाइल उपयोग पर उचित निगरानी रखनी चाहिए। बच्चों को प्रेरणादायक गतिविधियों और स्वस्थ मनोरंजन के साधनों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि उनका ध्यान मोबाइल से हट सके। दोस्तों, मोबाइल फोन आधुनिक जीवन की एक उपयोगी आवश्यकता है, लेकिन इसका अत्यधिक उपयोग हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इसलिए हमें तकनीक का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना चाहिए। यदि हम समय का सही प्रबंधन करें और मोबाइल पर अपनी निर्भरता को नियंत्रित रखें, तो हम एडिक्शन से बच सकते हैं। दोस्तों, अब समय हुआ है आपसे विदा लेने का। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम ये वाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र की थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। अब समय है अंतराल का।

ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: रेडी। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे तुलसी कुमार और केके की आवाज में। गीत नीलेश मिश्रा का था और संगीत प्रीतम का।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

यमला पगला दीवाना। इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे उमर नदीम और श्रेया घोषाल की आवाज में। गीत इरशाद कामिल का था और संगीत संदेश सांडिल्य का। लीजिए आप सुनते हैं थैंक यू फिल्म का गीत मीका सिंह की आवाज में। गीत अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत प्रीतम का।

কামড়ে দিব যায় কত তো প্যার তো প্যার লো আর বেচেন দিল।

फिल्म संगीत के अंत में लीजिए, सुनिए। हंटेड 3D फिल्म का यह गीत, आवाज है के और सुजैन की, गीत शकील आजमी का है और संगीत चिरंतन भट्ट का।

हंटेड 3D इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे के और सुजैन की आवाज में। गीत शकील आजमी का था और संगीत चिरंतन भट्ट का। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। यह प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से कुछ देर बाद शाम 6 बजे भजन संध्या में आज हमारी कलाकार होंगी लता मंगेशकर। शाम 6:30 पर बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा में आज हमारे कलाकार होंगे धन सिंह आदिवासी। शाम 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुनेंगे धारावाहिक अटकन चटकन। साथ ही होगी काव्य पाठ बंधु सिंह लोधी से और साथ ही होगी आज की सीख। रात्रि 8 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:35 पर। रात्रि 9:30 पर होगा रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे और रात्रि 10 बजे होगा अखिल भारतीय संगीत रविवासरीय संगीत सभा। इस कार्यक्रम को भी आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। कल प्रातःकालीन सभा में सुबह 7:20 पर होगा हिंदी महक कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में कल आप सुनेंगे वार्ता महोबा के वीर उदल के ब्याह की लड़ाई। वार्ताकार होंगे डॉक्टर LC अनुरागी। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर होगा धारावाहिक गीत गीता। शीर्षक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:47 पर। बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकरंग में कल हमारे कलाकार होंगे लीलाधर राजपूत। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे कल सुबह 9 बजे। 9:30 पर होगा एक ही संगीतकार। इस कार्यक्रम में कल हमारे कलाकार होंगे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सुबह 10:05 पर होगा मिश्रित संगीत का कार्यक्रम सबरंग। सुबह 10:30 पर होगा श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कल दोपहर 11 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने और 12 बजे होगी आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम को

0: आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित किया जाएगा। सांधिकालीन सभा में शाम 5 बजे युवाणी कार्यक्रम में युवा साथी सुनेंगे सवाल हमारे जवाब आपके, साथ ही होगी वार्ता, युवाओं में मोबाइल की लत, समस्या और समाधान। वार्ताकार होंगे पवन पटेल, साथ ही होगी रोजगार सूचना। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:40 पर। शाम 6 बजे आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे एनसीईआरटी। शाम 6:30 पर होगा बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में कल हमारे कलाकार होंगे बैजनाथ राजपूत। सांध्यकालीन सभा में शाम 7:20 पर ग्राम सभा में ग्रामीण भाई सुनेंगे श्रोताओं के फोन कॉल्स, ईमेल और पत्रों पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम रद्दूला। साथ ही होगी भेंटवार्ता, मछली पालन विषय पर श्री राम रेकवार से बिरजू भैया की बातचीत। और रात्रि 10 बजे कल आप सुनेंगे श्रोताओं के पत्रों एवं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनभावन। ये तो थे हमारे केंद्र से आज और कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, कुछ ही पलों में आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश, सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: पेश इस घंटे की खास खबरें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है, यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता और हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन मिलने में है। प्राकृतिक खेती अपनाने से इसमें महत्वपूर्ण योगदान होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आज उज्जैन जिले के ग्राम टंकारिया पंथ में श्रीमद भागवत कथा के समापन समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सहभागिता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में ऐसे धार्मिक आयोजन का विशेष महत्व है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत में सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम भी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में नागरिकों से स्वस्थ खानपान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में महुआ महोत्सव के तहत आज कई लोक नृत्यों के साथ ही महाबली छत्रसाल बुंदेल केसरी के जीवन पर नृत्य नाटिका की प्रस्तुति होगी। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सिर्फ चैंपियनशिप 2026 जीतने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बधाई देते हुए कहा कि चैंपियनशिप जीतकर टीम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। और प्रदेश में मौसम का मिजाज लगातार बदला हुआ है, पिछले एक सप्ताह से कई जिलों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है। अब सुनिए इस घंटे की खास खबरें।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं लता मंगेशकर।

भजन संध्या में आज हमारी कलाकार हैं लता मंगेशकर। आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए सुनते हैं लता मंगेशकर से ये भजन।

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन उपलब्ध है। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा

0: अब कैंसर इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं,
1: क्योंकि अब ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में पेट सीटी स्कैन, लीनियर एक्सेलरेटर जैसे एडवांस मशीन्स उपलब्ध हैं। कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, मंदिर की माता।

इसी भजन के साथ भजन संध्या का कार्यक्रम समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आज हमारी कलाकार थी लता मंगेशकर। आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार हैं धन सिंह आदिवासी। लीजिए सुनते हैं धन सिंह आदिवासी से ये बुंदेली धुनी भजन।

0: ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियोथेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, ग्वालियर।
2: बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा में लीजिए, अब सुनते हैं ये बुंदेली कछे आई।

0: इंस्टीट्यूट में डॉक्टर बी आर श्रीवास्तव के नेतृत्व में शुरू हुआ है एडवांस्ड एआई बेस्ड रेडियो थेरेपी सेंटर। सरकारी योजनाओं के तहत निःशुल्क इलाज भी उपलब्ध है।
1: कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैंसर हिल्स, गोला।
2: बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा में लीजिए, आप सुनिए धन सिंह आदिवासी से बुंदेली कहरवा।

0: तीनों कॉलेज में।
1: डोंट वरी,
0: फीस तो देखो।
2: क्या हाल है, क्या हुआ?
1: हाँ, फीस की टेंशन।
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
3: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा, और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
1: वो कहाँ है?
3: मिठाई।
4: RBI कहता है,
5: करो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।

0: बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा में अभी आप सुन रहे थे धन सिंह आदिवासी से ये बुंदेली लोक शैलीबद्ध लोकगीत।
1: दस लाख की लॉटरी मुझे
2: फर्जी ऑफर से सावधान।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

और कास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

इसी के साथ बुंदेली लोकगीतों कार्यक्रम लोकधारा समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम में आज हमारे कलाकार थे धन सिंह आदिवासी। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ पर और आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है गुमशुदा सूचना। गुमशुदा महिला का नाम है नीलम, पति शिवदत्त दोहरे, निवासी भगवानपुरा थाना माधवगढ़ जालौन। नीलम की उम्र करीब 28 वर्ष है। इनकी ऊंचाई 5 फुट 2 इंच है। एक हरा बदन, रंग गोरा, सलवार कुर्ता लाल रंग का पहने हुए हैं। नीलम नौ मई 2026 सुबह 10 बजे बाजार का कहके कहीं चले गए हैं। तब से उनके बारे में कोई खबर नहीं है। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर कृपया संपर्क करें। मोबाइल नंबर है 8707774939। सूचना एक बार पुनः सुन लें। नीलम देवी, जिनकी उम्र करीब 28 वर्ष

वर्ष है। पति का नाम शिव पूजन, पिता का नाम सोबरन सिंह, निवासी ग्राम चांदनपुरा, थाना रामपुरा, जिला जालौन उत्तर प्रदेश से। नीलम 5 मई 2026 से सुबह 9 बजे से घर से कहीं चली गई हैं। इनके बारे में किसी प्रकार का जानकारी होने पर कृपया संपर्क करें 87077 74 939। लीजिए सुनिए एक और गुमशुदा सूचना। सीमा, जिनकी उम्र 27 वर्ष है और इनके पति का नाम नीरज कुमार है,

सीमा जो ग्राम महमूद नगर थाना करौंदा जनपद जालौन से है और इनकी उम्र 30 वर्ष है। ये महमूद नगर थाना करौंद से बच्चों को स्कूल देखने जाने की बात कह के कहीं चली गई हैं। इनकी लंबाई लगभग 5 वर्ष है। शारीरिक बनावट है, एकहरा मजबूत शरीर, आंख नाक कान कद औसत, रंग गोरा है। इनका पहचान चिन्ह है गर्दन में बाई ओर तिल का बड़ा निशान है। सीमा ग्रीन कलर की साड़ी, ब्लाउज पेटीकोट नीले रंग का और पैर में ब्लैक कलर की सैंडल पहने हुए। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर संपर्क करें 7822-94-90-84 पर। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 7822-94-90-84। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई। मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है।

गुमशुदा एक बार पुनः सुन लें। गुमशुदा महिला का नाम है सीमा, जिनकी उम्र लगभग 27 वर्ष है। पति का नाम है नीरज कुमार, निवासी हैं ग्राम महमूद नगर की, थाना कदौरा, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। सीमा की लंबाई लगभग 8 फीट है, रंग गेहुआ है, आंख नाक कान कद औसत है। सीमा दिनांक 30 मार्च 2026 को सुबह 9 बजे घर से करौंदा से कहीं गई और उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर संपर्क करें 7822949084। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 7822949084। एक और मोबाइल नंबर है 97940701148। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 9794070।

नीलम देवी, जिनकी उम्र 28 वर्ष है, पति का नाम है शिव पूजन, ग्राम चंदनपुरा, थाना रामपुर, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से हैं। नीलम देवी का चेहरा गोल है, आंख नाक कान औसत कद की हैं, लंबाई लगभग 5 फुट 2 इंच है और नीलम लाल रंग का सलवार सूट पहने हैं। नीलम भगवानपुरा, थाना माधवगढ़, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से, दिनांक 9 मई 2026 को सुबह 9 बजे कहीं चले गए हैं। इनके बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने पर संपर्क करें 8707774939। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8707774939। गुमशुदा सूचना समाप्त हुई।

मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलो हर्ट्ज पर, आकाशवाणी का ऑफिशियल ऐप न्यूज ऑन AIR पर, यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
4: बन गया बजट?
3: हाँ,
4: 5,000 बच गए।
3: तो नई साड़ी ले ले?
4: ना,
3: पिछले महीने तो ली थी।
4: एक और
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
4: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
5: RBI कहता है,
6: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
7: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ में रतनीश सिंह। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद देश में मिल रही है सस्ती गैस। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नशे के खिलाफ एक सामाजिक जागरण करने पर दिया जोर। और प्रदेश में 20 जून से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों में खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेश है आकाशवाणी से एक विशेष रिपोर्ट।
1: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है।

0: है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसमें समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है।
0: चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि खाद्य सुरक्षा आज के दौर की बड़ी जरूरत है क्योंकि यह हम सबके उदर पोषण से जुड़ा विषय है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस की सार्थकता हर नागरिक को शुद्ध, स्वच्छ, सुरक्षित और पौष्टिक

खिलौना लाए फिन्ने। अरे तो भुवन माई के जाने माने कैयक खोंदे माल खजाने, कैयक खोंदे माल खजाने, कैयक खोंदे माल खजाने, भुवन माई के जाने माने ओ कैयक खोंदे माल खजाने।

0: देखो किस भैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: अबे पंच भैया सुन रहे थे जो काव्य पाठ बंधु सिंह लोधी की आवाज में।
1: बिल्कुल रघु भैया। और देखो, अगर अपन खां अपने जीवन में सुख चाहने, अपनी देह को सुख चाहने, तो कछु चार चीजें हैं जिनसे अपन परहेज करने।
0: जो भैया जो सुख चाहो देह को, चीजें तजदो चार,
1: बिल्कुल
0: चोरी चुगली जामनी और पराई नार।
1: बिल्कुल रघु भैया, कितनी उम्दा बात है कि देखो, चोरी से अपन बचने, चुगलखोरी से बचने, और जमीन जायदाद पे आजकल अपन देखा थे तन तन सी एक एक इंच पे हो लड़ाई झगड़ा होते है, और संगे संगे पराई नार से जरूर बचने।
0: तो भैया इन चीजों से पंच भैया जरूर बचें। इनको अगर पंच भैया इन चीजन में पड़े
1: बिल्कुल
0: तो सामाजिक प्रतिष्ठा भी खराब हो,
1: बिल्कुल,
0: और संगे भैया जैसे चुगली करे वाली को इज्जत नहीं रहा,
1: बिल्कुल नहीं रहा। और देखो क्या हुए तनक से झगड़ा में, और देखो अपन एक प्रकार से कहो जाए तो लुट से आ जाता।
0: और भैया जो है कि आज पंच भैया जमीन के पीछे भाई भाई लड़ जाते,
1: बिल्कुल,
0: और पता चलो जमीन है तई डरी रात है, और भाई भाई पता चलो के
1: लड़ झगड़ के मर मिटे हैं। तो अपन पंचन से जो ही कह वो है कि अपन है इन चार चीजन से जो है बचने हैं।
0: सु भैया जाहती आज की सीख,
1: बिल्कुल, तो कहे ना अब मनोरंजन को ले चले पंचन। हाँ,
0: और सुनाओ थे बलीराम पटेल की आवाज में जो देशभक्ति की, तो अपन सुने पंच।
1: बिल्कुल रघु भैया।

0: देखो किशु भैया,
1: हाँ रघु भैया,
0: अब अपन सुन रहे थे जो देशभक्ति गीत गायक हते बलिराम पटेल।
1: बिल्कुल। और देखो अब घड़ी टुक टुक आ रही है, वो कह रही है भैया अपना पंचन से विदा लेने।
0: तो
1: तो
0: पंचन का
1: काल
0: बता दें कल के
1: बिल्कुल,
0: कार्यक्रम।
1: तो काल हमारे पंच सुन है रमतुला कार्यक्रम, श्रोताओं के पत्रों और फोन कॉल्स पर आधारित बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम, प्रस्तुति हुए रविन्द्र कुमार प्रजापति जी की।
0: भैया पंच सुन एक भेंट वार्ता मछली पालन विषय पर श्री राम रेकवार से बिरजू भैया की बातचीत।
1: बिल्कुल। और आज की सीख को विषय हुए जहां खाई दो उतई रहे सो।
0: और अब पंचन से ले जाए बेदा,
1: बिल्कुल,
0: तो
1: पंचो
0: पंचो
1: राम
0: राम
1: राम।

0: ग्रामीण भाइयों के लिए भी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। अगला कार्यक्रम शीघ्र आकाशवाणी के मध्य प्रदेश चैनल से अनुप्रसारित करेंगे।
1: प्रतीक्षा करें। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता।
2: This is Akashvani. In the special series, 12 years of the Modi government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashvani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
3: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
4: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
4: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर

0: नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है और मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है कैंसर है ब्लड प्रेशर है इसकी हम जांच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं पौष्टिक खाएं संतुलित खाएं तेल चीनी नमक इन सब का सेवन कम करें तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम है। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक सेकेंडरी और टर्शरी ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो इसकी चिंता हमने की है और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
1: अंग्रेजी में एक कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है पहली बात और दूसरी बात हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
0: देखिए। भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता जाता है, बहुत सारे मेडिकल के कागजात का बंडल बन जाता है और जीवन में जब भी हमें आवश्यकता पड़ती है तो एक आम नागरिक क्या करता है कि एक जगह से दूसरी जगह उस बड़े से फोल्डर को लेकर घूमता रहता है हर डॉक्टर के पास।
1: कागज खो भी जाते हैं, हाँ, मिलते नहीं
0: और डॉक्टर्स के लिए बड़ी कठिनाई होती है, मरीज के लिए भी कठिनाई होती है। जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया, अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो देश के किसी भी कोने में किसी भी अस्पताल में किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा, डॉक्टर उसके अकाउंट

0: उनसे उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा, उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहां तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
2: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है
1: जी।
0: और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहां पहुंचने में बहुत कठिनाई है, जहां शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया, उसका लाभ हमें यह हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो एआई सपोर्टेड, एआई ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से, हर एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी।

0: डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं, एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को यह तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद है, जमीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए। तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है
1: जी,
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास है जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से,

0: जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है। तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज्यादा है, सघन है। ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है, लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर टीबी की जांच से लेकर टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक है उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की जरूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की जरूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक जरूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रूपये की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है, उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरी दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहां तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की जरूरत है। यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने यह तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे। और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हमने किया है, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके जिले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो। इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया, और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो, ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम

0: काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सके और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है। और यहां तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है। और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन जो है वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। यूएस हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयां पहुंचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग्स से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़े ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, टीबी मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है उससे कहीं ज्यादा तेज गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेजी से चल रही है। और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता

0: आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है और इसके लिए जरूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगी?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है, न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक जबरदस्त क्रेज है और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूंगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो जरूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में है उनसे हमें मुक्त रखता है और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है, तो अधिक से अधिक लोग योग करें और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी जरूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app News on AIR. This program is also available on our YouTube channel News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: अभी आप सुन रहे थे समाचार सेवा प्रभार आकाशवाणी द्वारा विशेष श्रृंखला सरकार के 12 वर्ष वंचितों को वरीयता। ये आकाशवाणी।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है, प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

राजहाथ, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गीत शैलेंद्र का था और संगीत शंकर जयकिशन का।

0: नौशेरवान आदिल। इस फिल्म का अभी गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत परवेज शमसी का था और संगीत श्री रामचंद्र का। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। हिंदी में समाचार समाचार संध्या कुछ ही पलों में आकाशवाणी के दिल्ली।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का
2: पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
4: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री

0: मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा

एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष

0: हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के दो ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है एक

0: 9289 व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलानबटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम VC प्रमोद विद द न्यूज एट 9। The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: दौर की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों?
2: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
3: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
4: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार, लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह के पहले चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
5: ये आकाशवाणी अब रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
4: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या, इन तीन मेजर हिंदी और तीन मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
6: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रमाणिकता पर कोई सवाल न उठे। इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी।

0: यह सूची बना करके रखी गई है और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है। हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
1: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुमित टंडन। आइए सुनते हैं उनके सफर की कुछ अनसुनी यादें।
2: As far as the news is concerned, the people who were in the great
3: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मणिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे। एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे और जब लाइन पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे। एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
4: Gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
1: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
5: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं।
6: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज। लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था। बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी में। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में होने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब

0: और थे और सबका अपना अलग अलग रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहे तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
1: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद जादू और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
2: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपने साथी कमेंटेटर डॉक्टर ऋतु राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हसी खाब की ताबीर हसीन अपने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
3: दो मिनट के मौन के बाद राउंड के ध्वज अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
4: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
5: और अब योग फाउंडेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
1: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हम दर्द की भी रही है।
2: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थे, तब आकाशवाणी ने वहाँ एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियाँ हर पीड़ित तक पहुँचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
6: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरि से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशन का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी। मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे ही पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीख चिल्लाते, अरे मणिकांत झा आयिल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार से मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण

0: जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो उसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
1: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों के रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की ताक है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: रिकॉर्डिंग एट 90।
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर। आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी, बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी। और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ।
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया, बिना तस्वीरों के, सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना। ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक, ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के कुआलालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
3: और ये फ्री हिट 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के तफार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के टीम में बाईं तरफ जहां पे चौकर ने वहां पे अब्बास, अब्बास भारतीय टीम है और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी पाएं फ्लैंक में। और ये खेल खत्म, भारत को एक से जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। और ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
2: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत कर

0: मुश्किल काम था। अर्थात जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए, या फिर विकेट को मध्य विकेट कहिए, या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान है उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआत ही क्रांति की शुरुआत मैं समझता हूँ आकाशवाणी के कारण हुई। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है, उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
1: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुंचाया ही नहीं बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
2: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
3: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हो, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में सकरन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवर ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के मैदान से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
2: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, पोस्ट स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
1: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरज अपना अनुभव कुछ ये साझा करते हैं।
4: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सेन, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट टॉमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और

0: नरोत्तम पुरी का जमाना आया, डिकी रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कॉमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
1: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
2: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
3: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और ये कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
2: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट, पल पल के अपडेट और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
1: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खेला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा, केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटक स्टाइल बाय विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति।
0: श्री एम वी सुब्बारायडू और श्रीमती एम जलजाक्षी के पुत्र श्री एम एस एन मूर्ति संगीत के परिवेश में पले बढ़े हैं। आपकी माता श्रीमती एम जलजाक्षी स्वयं एक संगीत कलाकार रही हैं। आपने संगीत की शिक्षा संगीत साहित्य कला निधि गुरु श्री एम सी एच कृष्णमाचार्य के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एम एस एन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एम एस एन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एम एस एन मूर्ति's exposure to music began early. His mother, श्रीमती एम जलजाक्षी, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, श्री एम एस एन मूर्ति trained under the guidance of संगीत साहित्य कलानिधि श्री एम सी एच कृष्णमाचार्यलु. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri M. S. N. Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri M. S. N. Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense, and for the artist's total command over the instrument. He has performed Jugalbandi concerts in collaboration with Hindustani classical musicians and has accompanied almost all veteran Vidwans of yesteryears and most of the leading contemporary artists. An empaneled artist of Indian Council for Cultural Relations, Sri M. S. N. Murthy has performed extensively in the country and abroad, in various prestigious centers of art and culture and many reputed organizations and universities across the globe. He has been the recipient of several prestigious awards for his contribution in the field of music. In tonight's performance, Vidwan Sri M. S. N. Murthy is accompanied by Vidwan Dr. Vankayala Venkata Ramana Murthy on the mridangam, Vidwan Sri M. Haribabu on the ghatam, and supporting violin is being provided by Sri Saket Pantula.
0: विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति आज के कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं अठाना राग में पुरंदर दास की रचना सकल ग्रह बल नीने से, जो कि खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: श्री एम एस एन मूर्ति बिगिन्स दिस इवनिंग्स कॉन्सर्ट विद अ कृति ऑफ पुरंदर दास। इट इज एन अठाना

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमो, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। वायलिन सपोर्ट इज बीन प्रोवाइडेड by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Rajamargamu. It is in Tharhara Priya Ragam Adi Talam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था संन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Tanyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई।

0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉ. जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्चस्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने यह बात कही। गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृहमंत्री मेघालय के डाबकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।